मीडी वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 47 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।

0: श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट लिए नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एलानी तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियातेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 241.5 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में आइए सुने सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, आज हम सामयिक कृषि कार्य की चर्चा करेंगे। जो किसान भाई समय से धान की बेहन डाले हैं, उनकी पौध अब तैयार हो रही है, इसलिए अब रुपाई करनी चाहिए। जिस खेत में रुपाई करनी हो, उस खेत में रुपाई के 10 दिन पहले यदि पानी ना हो तो पानी भर देना चाहिए, जिससे खेत में बचे हुए ठूंठ व घास मिट्टी में भली भांति सड़ जाएं। फिर जब रोपाई करना हो तो खेत में पानी भरकर 2-3 बार पडलर या देसी हल से जोत कर फिर प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाकर समतल बना देना चाहिए। अगर पानी से भरे खेत में पाटा चलाने पर मिट्टी इकट्ठा हो जाती है तो फिर पाटा नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि पाटा चलाने पर जहां मिट्टी नहीं रहती है वहां पर धान रोपने में कठिनाई हो सकती है। खेत की तैयारी करते समय उर्वरक देना चाहिए। अंतिम जुताई के समय 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला देते हैं। इसके बाद फिर तैयार बेहन की रोपाई करते हैं। बेहन 20 से 25 दिन की होनी चाहिए और एक स्थान पर 2-3 पौधा लगाना चाहिए। ध्यान रहे पौधे 3-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरे न लगाए जाएँ। अगर पौधे ज़्यादा गहरे लगाए जाते हैं तो पौधों में किल्ले बनने में कठिनाई हो सकती है। 20 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की दूरी और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए, यानी प्रति वर्ग मीटर स्थान में लगभग 50 पौधे होने चाहिए। बहुत से किसान भाई मूँगफली की भी खेती करते हैं। मूँगफली की बुआई वैसे तो 15 जून से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इसे आप अभी भी बुआई कर सकते हैं।

0: टाइप 64, टाइप 28, चंद्रा, चित्रा इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसकी तैयारी के लिए ज़्यादा गहरा खेत जोतने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गहरी जुताई कर देने पर इसकी फलियां काफ़ी नीचे बनती हैं, जिससे बाद में मूंगफली की खुदाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है। मूंगफली का खेत तैयार करते समय अंतिम जुताई के समय लगभग 6 किलोग्राम नत्रजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 18 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति एकड़ की दर से, कहने का मतलब है कि 13 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 28 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में मिला देते हैं। बोने से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से भी शोधित करना चाहिए। चंद्रा और चित्रा का 28 किलोग्राम, टाइप 64 और कौशल का 38 किलोग्राम बीज लगता है। जो किसान भाई ज्वार की खेती करना चाहते हैं तो इस समय बुआई कर सकते हैं। वर्षा, CSH5, CSH9 इसकी उन्नतशील किस्में हैं। एक हेक्टेयर की बुआई के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज लगता है। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक एकड़ खेत में बुआई हेतु 17 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलोग्राम म्यूरेटा पोटाश की आवश्यकता होती है। इसे अंतिम जुताई के समय यानी बेसल ड्रेसिंग के रूप में खेत में मिला देते हैं और फिर जब खेत तैयार हो जाता है तो बुआई करते हैं। अरहर की अगर बुआई करना चाहते हैं तो इसकी जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनको लेकर के समय बुआई करनी चाहिए। चारे की अगर बुआई करना चाहते हैं तो लोबिया चरी, एमपी चरी, पूसा चरी, मक्का, बाजरा की खेती इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर सामयिक कृषि कार्य करना चाहिए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सामयिक कृषि कार्य विषय पर दिनेश कुमार सिंह की ये जानकारी। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सूरज की पहली किरणों के साथ सियाराम नाम का एक ऐसा वैद्य जप लिया है जो हरले मन के पीर, इस नाम की महिमा गा गए कितने संत कबीर।

मैली चादर ओढ़ कर कैसे द्वार पर आऊं प्रभु। तन को तो मैंने मलमल कर धो लिया है, लेकिन मन को नहीं धो पाई हूं।

हे प्रभु, जिस तरह पानी में चंदन के घिसे जाने पर पानी सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके सानिध्य को पाकर चेतना हो गई हूँ।

कोई कहता है हारे का सहारा है तू, दुनिया वाले क्या जाने, हे श्रीहरि मेरे लिए तो तू जीने का सहारा है।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार थे हरिहरन, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा और कंचन चटर्जी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: ईश्वर ने अपने समर्थ हाथों में
2: ईश्वर ने
1: एक
2: अपने
1: प्रकाश पुंज लिया और
2: एक
1: कहा,
2: प्रकाश पुंज लिया
1: जा
2: और कहा,
1: तू सितारा बन जा।
2: तू
1: वो
2: सितारा
1: आकाश
2: बन
1: में
2: जा,
1: जाकर एक देदीप्यमान नक्षत्र
2: आकाश में
1: बन
2: जाकर
1: गया।
2: एक देदीप्यमान नक्षत्र बन गया।
1: मनुष्य ने अपने छोटे छोटे हाथों में
2: मनुष्य ने अपने
1: मिट्टी
2: छोटे
1: का एक
2: छोटे
1: लूंदा
2: हाथों में
1: लिया और
2: मिट्टी
1: उससे
2: का
1: एक
2: एक
1: छोटा
2: लूंदा
1: सा दीपक बनाया।
2: लिया
1: संतान में पैतृक विशेषताएं होती ही हैं, उनमें भी थीं। सितारा अपने प्रणेता के समान विशाल, तेजस्वी और अमर था। दीपक अपने निर्माता के समान क्षुद्र, अल्प सामर्थ्य और नश्वर था। आश्चर्य की बात, एक दिन वो सितारा अपने ऊंचे निवास स्थान से उतरकर एक छोटी सी कुटिया में आया। उस छोटी सी कुटिया में, जहां वो नन्हा सा दिया टिमटिमाता हुआ सच्ची लगन से अंधकार हरने का प्रयत्न कर रहा था, सितारा दीपक के पास भूमि पर ही बैठ गया और उसने डरते डरते दीपक से पूछा, क्या तुम मेरा स्थान लेना चाहोगे? दीपक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि वह स्वप्न देख रहा था। सितारे ने उसे विश्वास दिलाया कि न तो वह स्वप्न था और ना ही कोई छल प्रपंच। वो सच्चे हृदय से परस्पर स्थानांतर कर लेने की प्रार्थना कर रहा था। ईश्वर अंतर्यामी हैं। उन्होंने सितारे के मन की बात जान ली और उसे अपने सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया। ये क्या नादानी है? उन्होंने पूछा, तुम स्वर्ग लोक के अपने चिरस्थायी उच्च पद को छोड़कर मृत्यु लोक का कष्टपूर्ण

0: अब अंगूर जीवन क्यों ग्रहण करना चाहते हो? भगवान, सितारे ने अति नम्र स्वर में कहा, मैं बहुत दुखी हूं। न तो मैं सूर्य देवता के समान अखिल विश्व को प्रकाशित कर सकता हूं और न ही उस छोटे से दीपक के समान किसी छोटी सी कुटिया का अंधकार हर सकता हूं। फिर अनंत काल तक टिमटिमाते रहने का क्या प्रयोजन? ईश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा तेज सूर्य से किसी भी प्रकार कम नहीं? प्रभु, यदि सूर्य से 1000 गुना तेजस्वी हो जाऊं तो भी मैं सुखी नहीं हो सकता। मेरा जीवन एकांगी है, अपूर्ण है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। दीपक की उस क्षणिक ज्योति पर प्राण ने उछावर करने के इच्छुक उसके प्रेम में बावरे असंख्य पतंगे हैं। प्रेम की प्यास ने उस सितारे का संयम और विवेक नष्ट कर दिया। उसे अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। उसने धृष्टतापूर्वक पूछा, क्या आपके हृदय में कभी प्रेम की तड़प नहीं उठती? ईश्वर ने कहा, मैं पूर्ण हूं, मैं स्वयं ही प्रेम हूं, क्या तुम नहीं जानते? सितारे ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, किंतु आप भी प्रेम के लिए समय समय पर पृथ्वी पर आते रहे हैं। आपने स्वयं अनेक बार मनुष्य अवतार धारण किया है, वो क्यों? मैं तुम्हें प्रेम की इस चाह के लिए दोष नहीं दे सकता, ईश्वर ने कहा, तुम्हें प्रेम मिलना ही चाहिए। उसी क्षण वो तारा टूट कर गिरा, एक दीपक बन गया। असंख्य छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़े और अपने जलते हुए पंखों से उसे बुझा दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुने डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह की ये जानकारी।
2: मैं डॉक्टर विवेक सिंह, जनरल फिजिशियन। आज हम लोग डायरिया के लक्षण के बारे में बात करेंगे। डायरिया के लक्षण को मैं आप लोगों के बीच तीन भाग में बांट के बताना चाहता हूँ। पहला होता है कि सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण डायरिया का, जैसे कि पेट में ऐठन होना या तेज दर्द होना, बार बार शौच लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, मिचली जैसा लगना, खाना खाने की इच्छा न करना और शरीर में कमजोरी लगना और थकान महसूस होना, पेट फूलना और भारीपन महसूस होना, ये डायरिया के सामान्य लक्षण में आते हैं। जैसा लगने पे हमें समझना चाहिए कि डायरिया हमें हो रहा है या होने का सिम्टम है। दूसरा बांटा जाता है डिहाइड्रेशन के लक्षण। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी के लक्षण। शरीर में पानी की कमी का कारण ये होता है, हमें जब भी दस्त होता है ज़्यादा, तो शरीर से पानी और लवण यानी नमक हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है? डिहाइड्रेशन में अत्यधिक प्यास लगना, गला सूखना, बार बार पानी पीने की इच्छा करना, पेशाब में भारी कमी होना। सामान्य जो स्थिति में हम लोग पेशाब करते हैं उससे पेशाब की मात्रा में बहुत कम होना, और जो पेशाब का हमारे रंग होगा वो गाढ़ा हो जाता है, गहरा पीला हो जाता है। गहरा पीला इसलिए हो जाता है कि नॉर्मल हमारा जो पानी है शरीर से वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकल जा रहा है, जिसके कारण से कि पेशाब की किडनी में पेशाब बहुत कम बन रहा है क्योंकि पानी बहुत कम पहुंच रहा है। तीसरा होता है चक्कर आना। चक्कर आना में जैसे उठने बैठने में सर का हल्का फुल्का सिर चकराने लगना, हमें गस्ती जैसा लगने लगता है, जैसे लगता है कि हम गिर जाएंगे। और डिहाइड्रेशन के लक्षण में होता है त्वचा का सूखना। त्वचा का सूखना मतलब त्वचा में रूखापन आना, जिसके कारण से कि हम लोग जब डायरिया होता है तो शरीर से जो नमक की मात्रा और पानी की मात्रा बाहर निकल जाती है, उसके कारण से शरीर सूखने लगता है। तो ये सब हमारे दूसरे जो था बांटे हुए थे हम डिहाइड्रेशन के लक्षण। पहला था सामान्य लक्षण, दूसरा डिहाइड्रेशन के लक्षण। अब हम तीसरा बताने जा रहे हैं आपको, गंभीर लक्षण। गंभीर लक्षण मल मूत्र में जो हम लैट्रिन या बाथरूम करते हैं उसमें खून या मवाज आ जाना, तेज बुखार आ जाना, लगातार उल्टी होना, जैसे कि बार बार उल्टी जैसा लगना, बार बार लैट्रिन होना।

0: और ऐसे कंडीशन में जब हम ओआरएस का सेवन करते, वो भी नहीं पचना, अचानक वजन तेजी से गिरना, खड़े होने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, लेटने में भी दिक्कत, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं गंभीर लक्षण में आता है। गंभीर लक्षण 2 दिन, जब किसी को अगर डायरिया हो रहा है, 2 दिन का ऊपर हो गया, लेटिन बंद नहीं हो रही और ऐसे लक्षण आने लगा, तो इसको हम लोग गंभीर लक्षण मानते हैं। गंभीर लक्षण अगर 2 दिन से अधिक हो गया तो उस समय हमें तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये गंभीर लक्षण अगर बच्चों में आता है तो 24 घंटे, यानी 1 दिन के भीतर, आज हमें डायरिया शुरू हुआ तो कल ही हमें जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो हमारे किडनी पर असर आ सकता है। और जब भी हम डायरिया का, किसी किसी प्रकार का डायरिया जब भी हमें होता है, कि अभी तो आपको तो पता नहीं है कि किस प्रकार का आपको डायरिया है, जब भी डायरिया का लक्षण आना शुरू हो, जैसे कि लेटिन जब होना, लेटिन में सीधे पानी आना, मवाज आना, या लेटिन में म्यूकस आने लगता है, झाग बनने लगता है लेटिन में, इसका मतलब ये है कि हमें डायरिया हो गया है और उसकी इलाज की मुझे ज़रूरत है। और हम लक्षण के आपको बताएं सिंपल भाषा में, तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि पेशाब कम हो जाता है। जब भी हमें डायरिया होता है तो पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि शरीर में से हमारे जब पानी निकलने लगता है तो किडनी से जो पेशाब बन के पानी निकलता है वो निकलना बंद हो जाता है।
1: डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विवेक सिंह की जानकारी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। चिता में जाएगी राख बन जाएगी, कब्र में जाएगी खाक बन जाएगी, कर दो अपनी आंखों का दान, किसी की जिंदगी संवर जाएगी। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को करे नेत्रदान, नेत्रदान करेंगे दुनिया फिर से देखेंगे। नेत्रदान महादान, जो आपको बनाता है महान। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से स्वयं मिलता है परमात्मा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री राम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से इस अवसर की शिक्षा विशेष देने के लिए श्री राम के महल में जाने का अनुरोध किया। मुनिवर को अपने महल में आया देखकर श्री राम ने विनीत भाव से उनके चरण छुए और कहा, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल कार्य है, तथापि उचित तो यह था कि गुरुदेव ने दास को ही अपने पास बुला लिया होता। श्री राम के गुण, शील तथा स्वभाव से पुलकित होकर मुनिराज ने उन्हें शुभ संवाद सुनाया कि अवध नरेश ने उनके राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुलगुरु ने उन्हें इस अवसर विशेष के विधि विधान तथा नियम संयम बताए, लेकिन श्री राम के मन में खेद इस बात का हुआ कि सभी भाई एक साथ जन्मे, खाया खेला, सबके यज्ञोपवीत, विवाह आदि एक साथ संपन्न हुए, किंतु अब अन्य भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक ज्येष्ठ पुत्र यानी केवल उनका हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी अपने ननिहाल से भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि अग्रज के राज्याभिषेक के उत्सव में वो भी भाग ले सकें। उधर कुचक्री देवता इस शुभ कार्य में विघ्न डालने की योजनाएं बना रहे हैं। सरस्वती से देवताओं ने विनती की कि वे कुछ ऐसा करें जिससे श्री राम राज त्याग कर वन को चले जाएं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मानस पाठ की इस कड़ी के कलाकार थे सुरेश वाडेकर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में। मीडिया वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए एक नजर डालते हैं आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों पर। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण सुनेगा शाम 7:30 से मैच की समाप्ति तक। सामयिक चर्चा, ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर, जिसे रिले किया जाएगा हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित चन्नूलाल मिश्र का गायन सुनेगा सुबह 7:31 पर। रोजाना की तरह किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम शाम 6:30 पर। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा इस मौसम के आहार विहार विषय पर डॉक्टर बी राम के साथ सुनेगा सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। साथ ही साथ छाया मिश्रा का सुनेगा लोकगीत। इनके गाए लोकगीतों को आप सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुन सकेंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। कार्यक्रम में आज की बात होगी जल जीवन मिशन और समग्र शिक्षा अभियान पर। साथ ही साथ सुनेगा युवाणी गांव से यूथ डायरी, विश्व घटना चक्र, रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल होगा शाम 5:00 से। कार्यक्रम में चर्चा के अलावा होगी वार्ता और सुनेगा बाल गीत। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग सुनेगा दिन में 1:35 पर।

0: आपके पत्रों के उत्तर देंगे अरुण पांडे के साथ सना सलीम। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में दिन में 1:15 से। स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम सुनिएगा दिन में 11:30 पर। गर्भाशय में सिस्ट की समस्या और इलाज विषय पर सुनिएगा डॉक्टर सुनीता सुमन की बातचीत। एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11:30 से। बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ होगा दिन में 11 से। उड़िया सामुदायिक गान शिक्षा पाठ सुनेगा सुबह 10:10 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:10 पर और सुबह 10:30 पर। एक ही फिल्म से सुनेगा दिन में 2:30 से। फोन कॉल्स पर आधारित हेलो फोन इन फरमाइश सुनेगा दिन में 12 से। आज की प्रस्तुति होगी अरुण पांडे की और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा सुनेगा सुबह 8:45 पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7 से सुनेगा आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज केंद्र से प्रसारित प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं, सुनेंगे संस्कृत में समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्द क्षेत्रे सीजी सेमी संस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट सेमीकंडक्टर संयंत्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्द क्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 परिमितस्य लक्ष्य निर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीय मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन घोषितं यत् 26,000+ वर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकंडक्टर संयंत्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21 शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः चतुःपञ्चाशत्सहस्र युव

गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो बनारस, आखिरकार हफ्ते का वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सोमवार को सुबह से ही शुरू हो जाता है ना। इट्स संडे बॉयज एंड गर्ल्स, शुभ रात्रि नहीं, ये तो शुभ मॉर्निंग है संडे की, जहां सिर्फ फंडे ही होगा। ऑफिशियली आलस फैलाने का दिन, बिना अलार्म के जागने का दिन, और डाइट को भूलकर सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी खाने का, उस पे टूट पड़ने का दिन। आज कोई बॉस का फोन नहीं होगा, कोई असाइनमेंट की टेंशन नहीं होगी, चैन होगा, अड़ी पर दोस्तों के साथ ठहाके होंगे, हाथ में कड़क चाय की कुल्हड़ होगी। क्यों, क्या बोलती है बनारस की जनता? हाँ, एकदम सही कहा ना मैंने बनारस। ये तो बात हो गई संडे यानी फंडे की, लेकिन अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखिए बनारस, कभी सोचा है कि हम लोग भी कितने अजीब है ना? क्रिकेट मैच चल रहा हो तो हम टीवी के सामने बैठकर ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कोहली हमारे चिल्लाने से ही सेंचुरी मार देगा। दोस्त नई गाड़ी हो या किसी का प्रमोशन, हम तालियां बजा बजा कर उसके लिए चीयर लीडर बन जाते हैं, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो हम खुद के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। क्यों भाई, खुद के लिए तालियां बजाने में कोई टैक्स लगता है क्या? हम हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कोई बाहर से आएगा, हमारी पीठ थपथपाएगा और कहेगा, वाह यार, तूने तो क्या कमाल कर दिया, क्या काम किया है तूने। और अगर कोई नहीं कहता तो हम उदास होकर बैठ जाते हैं कि यार, मेरी तो कोई कद्र ही नहीं है, कोई मेरी अप्रिशिएशन करता ही नहीं है, किसी को मेरे काम के अच्छे होने ना होने का फर्क ही नहीं पड़ता ना। कितनी बातें सोचते हैं हम। पर सच बताऊं, इस दुनिया में हर कोई अपनी रेस दौड़ने में बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है आपके लिए तालियां बजाने का। इसीलिए आज से, अभी से आपको खुद का चीफ चीयर लीडर बनना पड़ेगा।

जी हाँ, खुद का चीयर लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी हो जाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि जब सुबह उठकर मन न होने के बावजूद आप जिम चले जाते हो ना, तो शीशे में देखकर खुद को बोलो, शाबाश बेटा, आज तूने आलस को हरा दिया, है ना? जब ऑफिस में कोई मुश्किल प्रेजेंटेशन खत्म करना हो, या आपने खत्म किया हो और घर का कोई पेंडिंग काम निपटाया हो, तो किसी और के थैंक यू का वेट मत करिए। खुद को एक बढ़िया सी कॉफी ट्रीट दीजिए और कहिए, आई एम प्राउड ऑफ यू। अपने आप की ही पीठ थपथपा लीजिए कि क्या काम कर दिया मैंने, अकेले ही कर लिया, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे दोस्तों, खुद की पीठ नहीं थपथपाएंगे, तो दुनिया को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप में दम है? तो चलिए आज से 3 सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। पहला, सेल्फ क्रिटिसिज्म बंद, सेल्फ टॉक शुरू। जब भी दिमाग में आए कि मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत खुद को याद दिलाइए कि पास्ट में आपने कितनी मुश्किलों को हंस कर झेला है। दूसरा, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करिए, बड़ी कामयाबी का इंतजार क्यों करना, आज का दिन अच्छे से जी लीजिए, ये भी तो एक जीत ही है ना। कहते हैं कि जो अभी है, जो प्रेजेंट में है, उसको जीना बहुत बड़ी बात है। कल किसने देखा है, और कल की चिंता में अगर हम अपना आज खराब करते हैं, उसको टेंशन में डालते हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन ही होगा। आजकल तो अगले पल का ठिकाना नहीं रहता है, तो इतना आगे का सोचने का कोई मतलब नहीं है। जो अभी है, एट द मोमेंट है, उसको एंजॉय करिए, उसको खुल करके जी लीजिए। और तीसरा सबसे है कि अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट करिए, बड़ी कामयाबी का इंतजार क्यों करना, आज का दिन अच्छे से जी लीजिए, ये भी तो एक जीत ही हो गई। शीशे को अपना फैन बनाइए, फैन। सुबह तैयार होते वक्त खुद को देखकर एक बार मुस्कुराइए और बोलिए, आज का दिन अपना है बॉस, सब ठीक होगा, सब चकाचक होगा और हमारे हिसाब से होगा। इतना पॉजिटिव होकर के अगर आप कोई काम करेंगे, तो कैसे कोई निगेटिविटी आपके आसपास आ पाएगी? बनारस, याद रखिए, दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जिस नजर से आप खुद को देखते हो। तो उठिए, पम पम्प्स उठाइए और अपनी जिंदगी के मैच में खुद के लिए सबसे तेज हूटिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। चलिए इसी हाई एनर्जी वाइब के साथ सुनते हैं एक ऐसा सॉन्ग जो हमें इस प्यारी सी सुबह का एहसास दिलाता है, कॉफी की याद दिलाता है और बताता है कि हम एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए सुनते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी पूजा के साथ। आज दिन है रविवार का यानी संडे फंडे और तारीख है 5 जुलाई। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज।

पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विरासत का केंद्र बिंदु है अपना शहर बनारस, जिसने हमेशा ही पूरे देश को अपने दिव्य आलोक से प्रकाशित किया है। इसी क्रम में काशी के प्रसिद्ध योगाचार्य योगी प्रकाश नाथ योगेश्वर ने श्रीनगर के खूबसूरत वातावरण में चिनार के पेड़ों के नीचे 21 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को योग का प्रशिक्षण देते हुए उन्हें मुद्रा रहस्य और योग के विशेष आसनों का अभ्यास कराया और काशी का मान एक बार फिर स्थापित किया। बटालियन के कमांडेंट श्री अनिल कुमार वृक्ष के दिशा निर्देश में इस शिविर का आयोजन 4 जुलाई 2026 को प्रातः 7 बजे किया गया था। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ जवानों को पवन मुक्तासन, मंडुकासन, अनुलोम विलोम, कपाल भाती जैसे प्राणायामों का अभ्यास भी कराया गया। बनारस अगली खबर ये है कि अनुरक्षण मरम्मत और लाइन शिफ्टिंग कार्य के चलते रविवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 33 केवी कंचनपुर लाइन पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शटडाउन रहेगा। इससे मड़ुआडी, नाथुपुर कैंट, मड़ौली, सेंट जॉन्स, महेशपुर तथा आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क चौड़ीकरण के तहत बिजली लाइनों को भूमिगत किए जाने के कार्य के कारण सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लेढ़ूपुर, पांडेपुर और दौलतपुर उपकेंद्रों से जुड़े आशापुर, पहड़िया, कुंती विहार, प्रेमचंद्र नगर, पांडेपुर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। अगली खबर यह है, बनारस की शहर की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में 2 नए 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि एक उपकेंद्र पर अतिरिक्त 10 एवीएम क्षमता का पावर परिवर्तक भी स्थापित किया गया है। होलापुर में हो रही क्षमता वृद्धि और शिवपुर में बन रहे नए विद्युत उपकेंद्र से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इससे कम से कम 50,000 से अधिक आबादी को फायदा होगा। क्षमता वृद्धि के बाद इस क्षेत्र के लोगों को ओवरलोडिंग, ट्रिपिंग, लो वोल्टेज आदि जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। दोनों कार्यों में करीब 4 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। बनारस शिक्षकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देते हुए योगी सरकार काशी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करने जा रही है। आयुष्मान भारत की तर्ज पर संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वाराणसी के 1,145 बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के 12,407 पात्र शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक तथा अन्य शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। योजना के तहत 5 लाख रूपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 जुलाई प्रदेश भर में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। बनारस सावन मास की शुरुआत से पहले कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। अपर पुलिस आयुक्त शिव हरि मीणा ने शनिवार को वाराणसी भदोही सीमा, राजा तालाब और मिर्जा मुराद क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रयागराज से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िये NH-19 के रास्ते काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए इस बार भी हाईवे की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित रखने की तैयारी है। अधिकारियों ने सबसे पहले गुड़िया बॉर्डर पर रूट डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद मिर्जा मुराद स्थित बंगला चट्टी के राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों के विश्राम स्थल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रखौना रिंग रोड और राजा तालाब क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान यातायात विभाग को कांवड़ मार्ग पर समय रहते भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने तथा वैकल्पिक मार्गों के स्पष्ट संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। बनारस वाराणसी के 68 केंद्रों पर UPTET यानी उप शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई। 2 जुलाई से शुरू हुई परीक्षा का शनिवार को अंतिम दिन रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षाएं संपन्न कराई गयी। गुरुवार और शुक्रवार को तो 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित हुई, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण अंतिम दिन महज एक ही पाली में परीक्षा हुई। शनिवार को 27,821 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इसमें 4,168 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। बनारस रोपवे की शुरुआत सितंबर माह में होने की प्रबल संभावना के बीच रेलवे ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं बढ़ानी शुरू कर दी है। यात्रियों के ठहराव के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम की व्यवस्था दी गई है। रेलवे की रणनीति है कि ट्रेन से उतरने के बाद थके हारे यात्री थोड़ा रुककर रोपवे से सफर करना चाहेंगे तो उस कॉरिडोर में स्थित प्रतीक्षालय में आराम करना ज्यादा पसंद करेंगे, जिससे होकर उन्हें आगे का सफर तय करना है। क्लॉक रूम की सुविधा भी उनके लिए जरूरत के लिहाज से ज्यादा मुफीद होगी। रोपवे से सफर करने की संभावना है, इसलिए

0: कॉरिडोर का रास्ता वन वे होगा। रोपवे से किसी वजह से न जाने का यात्री ने अंतिम समय में निर्णय लिया तो उसे आगे सीढ़ी से फर्स्ट नीचे प्लेटफॉर्म नंबर एक पर उतार दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि एक ही कॉरिडोर में यात्रियों का आना जाना होने पर भगदड़ मच सकती है। सो बनारस रेडी हो जाइए रोपवे पर तैयारी करने के लिए, क्योंकि अपनी काशी बदल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो भी हो रहा है विकास कार्य उसमें प्रगति दिख रही है। सो बनारस, ये तो बात हो गई क्या खास हो रहा है अपने शहर बनारस में आज, और अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं आज के दिन के इतिहास को। ...1947 में आज ही के दिन भारत के नामी जीव वैज्ञानिक लालजी सिंह का जन्म हुआ था। 1956 में समकालीन कवि एवं लेखक ज्योति खरे का जन्म हुआ था, और 1901 में प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और न्यू थिएटर्स कलकत्ता के संस्थापक बीएन सरकार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सो बनारस, ये तो बात हो गई इतिहास की, और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका रहता है आप सबको इंतजार।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: बनारस, जब भी हम काशी की बात करते हैं तो हमारे जहन में यहाँ के घाट, यहाँ की सुबह और यहाँ की अड़ीबाजी तो आती ही है, लेकिन इस माटी की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है यहाँ का ज्ञान और यहाँ का साहित्य। इस शहर ने दुनिया को ऐसे ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जिन्होंने न सिर्फ इतिहास लिखा बल्कि समाज को जीना सिखाया। आज हमारे काशी रत्न के इस सेगमेंट में मैं आपको ले चलूंगी इतिहास के एक ऐसे ही सुनहरे पन्ने की तरफ, और बात करेंगे एक ऐसी महान शख्सियत की जिनका काशी से बहुत गहरा और अटूट नाता रहा, आचार्य छिति मोहन सेन। शायद आज की पीढ़ी में बहुत से लोग इस नाम से वाकिफ न हो, लेकिन आपको बता दूं कि छिति मोहन सेन जी वो महान विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित और लेखक थे जिन्होंने भारत के मध्यकालीन संतों और विशेषकर कबीरदास जी के दर्शन को पूरी दुनिया के सामने रखा। उनका जन्म हमारी इसी पावन काशी की गोद में हुआ था। उन्होंने क्वींस कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। वो ज्ञान की ऐसी जीती जागती मिसाल थे कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर उन्हें अपने साथ शांति निकेतन ले गए थे। सोचिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के वो बेहद करीबी सहयोगी बने और बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। छिति मोहन जी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वो कहते थे कि कबीर को समझना है तो किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर आम जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने घूम घूम कर गाँव गाँव जाकर कबीर के पदों को इकट्ठा किया। आज जो हम कबीर के ढाई आखर प्रेम के पढ़ते और गाते हैं ना, उसे सहेजने में आचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी लिखी किताबें आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ हैं। तभी तो मैं कहती हूँ, हमारा बनारस सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ की हवाओं में भी ज्ञान बहता है। आज काशी रत्न के माध्यम से हम आचार्य छिति मोहन सेन जी की विद्वता और उनकी विरासत को दिल से नमन करते हैं। काशी रत्न के आज के इस अंक में बस इतना ही।
1: काशी रत्न, द जेम्स ऑफ वाराणसी।
0: सो बनारस, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब समय हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन जाते जाते एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम खुश होंगे तभी हम औरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश रख पाएंगे। सो डू वेरी वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे बनारस, फन डे, गुड मॉर्निंग।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जन भवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता।
2: श्री नवीन कल अपने लखनऊ प्रवास के दौरान हनुमान सेतु मंदिर गए। वहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में शीश नवाकर देश और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे में आज विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व

0: संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाजपा भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय के लिए उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 व 3 जुलाई को 2-2 पाली और कल 1 पाली में आयोजित हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और SDF के प्रति आभार व्यक्त किया है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कल लखनऊ के जनभवन में मैंगो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के बीच अनुबंध भी हुए। महोत्सव में उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
3: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच गई हैं और जब से हमारे यहाँ केवल एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ

तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफार्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफार्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कल अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार यह बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित है। इस बीच लखनऊ सहित राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। कल कानपुर और टुंडला में हुई भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTAT 2026 कल हुई संपन्न। 3 दिवसीय परीक्षा में शामिल हुए 88% अभ्यर्थी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ के जनभवन में आयोजित हुई मैंगो बायर सेलर मीट। आम निर्यातकों और उत्पादकों के बीच हुए अनुबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित छन्नूलाल मिश्र का शास्त्रीय गायन। राग है अलहिया बिलावल। आपके साथ तबले पर संगत की है नंद किशोर मिश्र ने और हारमोनियम पर संगत की है मेहताब खान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित चन्नूलाल मिश्र का शास्त्रीय गायन राग अलैया बिलावल। आपके साथ संगत कलाकार थे तबले पर नंद किशोर मिश्र और हारमोनियम पर मेहताब खां। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 8 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे के वहाँ पे बिजनेस पे विद्यार्थियों पे हर हर क्षेत्र के वर्ग को हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का

0: किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने

0: कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
2: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश

0: और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की

0: जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: new direction for cleaner, more modern future. Sunday Times informs City Court cites Supreme Court order denies bail to Sharjeel Umar. Telegram told to act against piracy or face action, writes the Economic Times. And finally, Indeed, love knows no bounds. The Sunday Express writes about one Zeeshan Ahmed who crossed the LOC to meet his love, Iram Majeed. The two had fallen in love over Snapchat a month after he crossed LOC for love. 22-year-old POK man sent back. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Pramod. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi launches next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udaan, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में फिजाई सफर को फरोग देने के लिए इलाकाई फिजाई राबता स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी कीमत में 13% का इजाफा करते हुए इसे 2,125 रुपए फी कुंटल कर दिया है ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। भारतीय महकमे मौसमियात आईएमडी ने अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से कबल भारत को अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। और फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों और दूर दराज के इलाकों को हवाई सफर से जोड़ने के मकसद से कल राजस्थान के जोधपुर में इलाकाई फिजाई कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान के अगले मरहले का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ान स्कीम के नए मरहले के तहत छोटे शहरों और दूर दराज के खितों को फिजाई कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाएगा।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया जिससे भारत के शहरी हवाबाजी के बुनियादी ढांचे और इलाकाई कनेक्टिविटी को बड़े पैमाने पर फरोग हासिल होगा। जनाब मोदी ने इस बात को नुमाया किया कि नई टर्मिनल इमारत का आर्किटेक्चर और इंटीरियर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।
3: जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
2: इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान स्कीम का आगाज इलाकाई कनेक्टिविटी के भारत के सफर में नए बाब की शुरुआत होगी। जनाब नायडू ने कहा कि वजीर आजम के जरिए 28,840 करोड़ रुपए की तखमीना लागत वाली स्कीम के आगाज से 100 से ज्यादा नए और 200 हेलीपैड्स की तरक्की में आसानी होगी जिससे किफायती हवाई सफर का लाखों लोगों का ख्वाब पूरा होगा और उभरते भारत की उमंगों की तकमील होगी।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे के वहाँ पे बिजनेस पे

0: विद्यार्थियों पे, हर हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है, उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सनात में सीजी सेमी के बाहर से मंगाए गए सेमीकंडक्टर की तरतीब और तजुर्बे के जदीद तरीन प्लांट OSAT का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और टेक्नोलॉजी शोबे के कई आलमी कायदीन भी मौजूद थे। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी से कायम इस जदीद फैक्ट्री की सालाना पैदावारी सलाहियत 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। एक बड़ी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि सनान में कायम सीजी सेमी OSAT मरकज न सिर्फ मुल्क में चिप तैयार करने के इको निजाम को मजबूत करेगा बल्कि टेक्नोलॉजी के शोबे में खुद किफालत को फरोग देगा और आलमी सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन में भारत के मकाम को मजीद मुस्तहकम करेगा।
2: भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है।

0: के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि सनानंद का ये प्लांट इब्तदाई मरहले में सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने सीजी सेमी को मुस्तकबिल में पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर करने पर मुबारकबाद भी दी।
0: यहाँ से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: इससे कबल सनानंद पहुंचने पर वजीर आजम ने आला टेक्नोलॉजी के हामिल प्लांट का दौरा किया, पैदावारी अमल का मुआयना किया और वहां काम करने वाले इंजीनियरों और ऑपरेटरों से मुलाकात करके उनसे तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने प्याज का वाफर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी की कीमत में 13% इजाफा कर दिया है। प्याज की खरीदारी कीमत 1875 रुपए फी क्विंटल से बढ़ाकर 2125 रुपए फी क्विंटल कर दी गई है। सारिफिन के उमूर खुराक और सरकारी निजाम तकसीम की वजारत के मुताबिक नजरसानी शुदा खरीदारी कीमत से प्याज के काश्तकारों को बेहतर मुनाफा मिलेगा, जबकि कीमतों के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के खरीदारी अमल को भी तकवीत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत सरकार की जानिब से प्याज का वाफिर जखीरा रखने और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए प्याज की खरीदारी नैफेड और कौमी कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया NCCF के जरिए जारी है। ज़राअत और किसानों की महबूद के महकमे 2025-26 के दूसरे पेश की तखमीने के मुताबिक मुल्क में प्याज की पैदावार 307 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा होने का इम्कान है। वजारत ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में प्याज की मौजूदा जखीरा काफी है और इस वक्त जखीरा शुदा प्याज की किल्लत के कोई आसार नहीं है। इस वक्त मुल्की सतह पर प्याज की औसत खुर्दा कीमत 31 रुपए फी किलोग्राम है। जून 2026 के दौरान तकरीबन 1.5 लाख मेट्रिक टन प्याज बरामद की गई और प्याज की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद उम्मार।
1: पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मुत्तला किया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की जानिब से 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तरब करने की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल उमूर पर बामाने बहस, तफसीली तबादले ख्याल और अहम फैसलों पर तवज्जो दी जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नया तस्वीर नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज्यादा अरसे से हो रहा है। राजस्थान में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हयातियाती ईंधन की आमेजिश के प्रोग्राम पर होने वाली मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है और जहां जरूरत होगी मौसूल होने वाली तजावीज को अपने काम में शामिल करते हुए इस्लाहात भी करेगी। जनाब हरदीप सिंह पुरी ने मजीद कहा कि भारत में एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का तसव्वुर सबसे पहले साबिका कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि जब वो 2006 से 2008

0: के दरमियान ब्राजील में भारत के सफीर थे। उस वक्त मुल्क की 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पेट्रोल में 5% मिलाने का हदफ मुकरर किया गया था, लेकिन उस वक्त सिर्फ 1.4% एथेनॉल मिलाने का हदफ हासिल किया गया था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: आकाशवाणी खबरों का शोभा अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के तहत आज शजरकारी और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए काम कर रहे देवेंद्र सूरा से की गई बातचीत नशर की जाएगी।
2: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला, ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये बातचीत आज सुबह 10:30 100.1 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुनी जा सकती है। इस बातचीत को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के मुजव्वज़ा दौरे से कबल भारत को ऑस्ट्रेलिया का एक अहम इक्तिसादी शराकत दार करार दिया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दुनिया की चौथी बड़ी और तेजी से तरक्की पजीर मईशत होने के नाते भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए नहायत अहम इक्तिसादी शराकत दार है। जनाब एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी है जो मजबूत इक्तिसादी और सकाफती रवाबित की बुनियादों पर कायम है। उन्होंने मजीद कहा कि तिजारत, दिफा, सलामती और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तआवुन दोनों ममालिक के लिए मुस्बत और बाहमी फायदे का बाइस बन रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरेन, कुवैत और उमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर इन मुल्कों के अपने हम मनसबों और आला क्यादत से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ओमान के दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क जाएंगे जहां वो अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल UNSC की 2028-29 की मुद्दत कार के लिए भारत की बाजाबता मुहिम का आगाज करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले कुछ दिन के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद बारिश जारी रहेगी। IMD ने कहा है कि खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में हवा के कम दबाव का हल्का बना है जिससे अगले 4 से 5 रोज के दौरान मुल्क के वसती इलाकों में मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। पूरे मशरकी अमरीका में जारी शदीद गर्म लू की वजह से बिजली की ग्रिड्स पर दबाव पड़ रहा है जिससे फीफा आलमी कप मैचों की तैयारियों में रखना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ दर्ज हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाने का खदशा है, वहीं अमेरिका के सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क को गैर मुतवक्का दर्जे हरारत का सामना है। फुटबॉल में फ्रांस और मराकश ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस ने फिलाडेल्फिया में खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में पेरागुआ को सख्त मुकाबले में 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम के कप्तान कल्याण एम्बापे ने मैच का वाहिद गोल 70वें मिनट में पेनाल्टी किक के साथ किया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर।
4: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में जारी आलमी तवानाई बहरान के बावजूद भारत ने न सिर्फ ईंधन की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया बल्कि मौसर सिफारतकारी बरवक्त फैसलों और गुज़िश्ता एक दहाई की दूरंदेश पॉलिसियों की बदौलत इस मुश्किल सूरतेहाल पर कामयाबी से काबू पाया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज 20 जुलाई से होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। कौमी अहमियत के हामिल कई मौजूदात पर इस दौरान बामानी बहस

0: मीडियावेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। सुनेंगे मधुरिमा, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें
6: 0542227658,
7: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. मधुरिमा प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चित्रा का नमस्कार। श्रोताओं, आज संडे है, यानी टोटली रिलैक्सिंग डे। आज कुछ बातें होंगी सुकून और आराम के पल बिताते हुए, कुछ बेहद प्यारी जो आपके सोल को छुएगी, और ऐसे मिलते जुलते कुछ सोलफुल गीत हम आपको सुनवाएंगे अपने प्लेलिस्ट से। कहते हैं धीमे हो जाओ, आज रविवार है, अपनी आत्मा को अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने दो, यानी एक शांत शयन कक्ष में जहां सुबह की रोशनी में पारदर्शी पर्दे लहरा रहे हों, एक साइड टेबल पर कॉफी की भाप निकल रही हो और आरामदायक तटस्थ रंग शांत और सुकून भरा एहसास कराता हो।

कुछ न करने में भी एक अलग ही खूबसूरती है, और रविवार रविवार इस बात को साबित करता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि शांत रहना भी उत्पादक होता है। ये धीमी गति से जीवन जीने, सेहतमंद रहने या भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर रहने के विचारों के लिए बहुत अच्छा है।

आराम कोई आलस्य नहीं, बल्कि ये खुद को फिर से तरोताजा करने और आने वाले सप्ताह के लिए ऊर्जा बचाने का एक आसान तरीका है। सप्ताह सोमवार से शुरू हो सकता है, लेकिन असली जिंदगी रविवार से शुरू होती है। सिर्फ चिल करें और कोई काम नहीं और कोई टेंशन नहीं।

रविवार की सुबह शांत विचारों और कड़क कॉफी के लिए होती है। एक दिन को छू ये दिल को छू लेने वाला और सुकून देने वाला होता है। जीवन शैली, खान पान या आत्म देखभाल से संबंधित ये सारी सामग्री अपने साथ आप जरूर इस्तेमाल करें। इस रविवार को खुद को थोड़ा सा आराम की अनुमति दें। रविवार एक शांत शक्ति प्रदान करता है, वो शक्ति जो नए विचारों, स्पष्टता और ठोस महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देती है। ये प्रेरणादायक बातें हैं रविवार को आपको, ये आपकी जो भी काम करने की शैली होती है, जो भी आपकी कर्मठता होती है, उसको बढ़ाती है, आपके मनोबल को बढ़ाती है, आपके शरीर को रिलैक्स करती है, और जिसके बाद आप अगले दिन या पूरा सप्ताह आराम से काम कर सकते हैं।

आज के दिन यानी रविवार को अपनी आत्मा को फिर से ऊर्जावान बनाएं, अपनी ऊर्जा को पुनः स्थापित करें और आने वाले सप्ताह में आगे बढ़ें। बिना किसी तामझाम के प्रभावशाली कॉल टू एक्शन लें। रविवार को मार्ग साफ करने का दिन बनाएं, न कि कार्यक्रम भरने का। मतलब इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारा काम पेंडिंग जो है वो करने लग जाएंगे तो फिर थकान तो अपने आप ही लग जाएगी।

बेशक जहां आप हैं वहीं से शुरुआत करें, आपके पास जो कुछ है उसका उपयोग करें, आप जो कर सकते हैं वो करें। आज के दिन रविवार का दिन अच्छे से बिताने से पूरा सप्ताह संतुष्टिदायक होता है।

हर रविवार अपने साथ शांति, सुकून और एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आता है। सांस लें और कृतज्ञता महसूस करें। रविवार का को फोन ज्यादातर रखें साइलेंट और इस दिन

ये दिन जादुई है जो आपको यकीनन एक सुकून भरा रविवार आपके पूरे सप्ताह की थकान मिटा देता है। तो आज की मधुरिमा बस इतनी ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के लागू होने के बाद ग्रामीण विकास, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार है शैलेंद्र शर्मा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 सालों में ग्रामीण विकास, कृषि और कृषि उत्पादन के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब मनरेगा की जगह विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें 125 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ ही 300 रुपए की न्यूनतम मजदूरी भी तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि गांव में सिर्फ मजदूरी आधारित रोजगार नहीं बल्कि स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, कृषि उत्पादकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जाए। सरकार के इस विजन को बीवी रामजी अधिनियम कैसे पूरा करेगा, क्या खास बातें हैं इस अधिनियम में, मनरेगा की खामियों को इसमें कैसे दूर किया गया है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी
2: सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम को ग्रामीण विकास और आर्थिक दृष्टि से आप कैसे देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मॉडल में ये किस तरह का परिवर्तन ला सकता है, खास तौर पे तब जब इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और मौसमी घटनाओं से जुड़े कामों पर फोकस किया गया है।
3: विगत 12 वर्षों में लगातार मोदी सरकार ने खेती और खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं को आगे बढ़ाया, जैसे वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसके विकास पर जोर दिया गया। मेरा मानना है कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जो कोशिश की गई है हाल ही में, भारत देश का विकास तभी होगा जब गांव का तेजी के साथ विकास होगा, लेकिन इसकी एक अहम कड़ी है कि गांव में ही लोगों को काम मिले, खासतौर पर वह जो अकुशल लोग हैं, अकुशल श्रमिक हैं, उन्हें गांव स्तर पर ही काम मिले। इसलिए ये है जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम एक नए अवतार में कह सकते हैं लाई गई है। ये एक गारंटी है रोजगार की, जो पात्र श्रमिक होंगे उनको वर्ष में 125 दिनों का काम मिलेगा, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक संपत्तियों का सृजन है, इसको बल मिलेगा। जो कौशल विकास, बाजार और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेती का काम है, जल सुरक्षा है, इन सबको जोड़कर गांव का समग्र विकास हो, इसकी कोशिश इस स्कीम के माध्यम से किए जाने का संकल्प लिया गया है।
2: बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने ग्रामीण विकास की बात की, मनरेगा की बात करें सर, तो मनरेगा को रोजगार की गारंटी के तौर पर लाया गया था, लेकिन जो ये नया अधिनियम है रोजगार के साथ साथ विकास की भी बात करता है, जैसा आपने चर्चा में कहा भी, तो ये नया अधिनियम सर इन दोनों के बीच, यानी कि रोजगार और विकास, इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बना रहा है?
3: देखिए, जब हम गांव के विकास की बात करते हैं तो एक उसका महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि गांव में ही गांव वालों को रोजगार मिले, क्योंकि इसका परिणाम ये होगा कि गांव के जो लोग हैं उनकी आर्थिक तरक्की होगी, उनकी आजीविका सुगम होगी या उनके आजीविका के स्रोतों में गांव स्तर पर ही बढ़ोतरी होगी। तो जब ऐसा होगा तो उनका पलायन भी गांव से जो नगरों की तरफ होता है वो थमेगा। इससे जो कई तरह की आर्थिक और सामाजिक दुश्वारियां मजदूरों को झेलनी पड़ती हैं उससे भी निजात मिलेगी। मेरा मानना है कि जब गांव विकास की बात की जा रही है तो गांव विकास का मूल मंत्र ये है कि खेती तो बढ़े आगे, लेकिन खेती के साथ जो गांव की गैर खेती की क्रियाएं हैं, वानिकी है, पशुपालन,

0: है, मछली पालन है, इन सब को अगर जोड़ कर देखा जाए तो विकास की गति और तेज होगी।
1: बिल्कुल सर, आपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की और हमने देखा कि कोरोना काल में जब कठिनाई का वक्त था तब ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने बड़ी मदद की सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने में। सरकार की सोच है कि इस नए अधिनियम के जरिए कृषि, सिंचाई, जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती दी जाए, तो आपको सर क्या लगता है जो प्रावधान किए गए हैं उससे ये सोच कैसे पूरी हो सकती है?
0: देखिए, जब गांव के विकास की बात की जाती है तो जो गांव में खेती है उसके साथ ही साथ गैर खेती की क्रियाएं हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जो मझोले उद्योग क्षेत्र की क्रियाएं हैं, जो ODOP सेक्टर की क्रियाएं हैं कह सकते हैं, इंडस्ट्री वन प्रोडक्ट की, जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं संपादित की जा रही हैं खेती की, उनको अगर बागवानी से जोड़ा जाए या खेती का विविधीकरण अगर किया जाता है तो खेती के विविधीकरण के लिए ये आवश्यक होगा कि नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। नई तकनीक में जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए, और जब नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया जाएगा तो तार्किक तौर पर गांव में एक ओर जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, गांव वालों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, भौतिक संपत्तियों का या भौतिक परिसंपत्तियों का सृजन होगा, तो गांव की तरक्की एक टिकाऊ आधार पर होगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो गया था कि गांव का विकास तो तभी टिकाऊ आधार पर होगा जब गांव स्तर पर रोजगार और आजीविका के टिकाऊ और गुणवत्ता परक संसाधनों में वृद्धि की जाती है। कि विकसित भारत जी राम जी स्कीम इस मंतव्य के साथ शुरू की गई है कि गांव का एक तरह से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वहां पर जिंदगी सुगम हो लोगों की, गरीबों की, जो मजदूर हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जब उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो मेरा मानना है कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बढ़ी हुई गांव की क्रय शक्ति औद्योगिक विकास को भी तेज करेगी, क्योंकि ये जरूरी है कि गांव में जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत हो रही है उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो इस तरह गांव का जब विकास होगा तो लोगों की जिंदगी में सुधार होगा, लोगों का जीवन सुगम होगा, उनको स्थानीय तौर पर रोजगार मिलेंगे, तो इस प्रकार वो अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जो संस्थाएं उनके गांव स्तर की हैं उनसे जुड़कर विकास को और आगे बढ़ाने में वो भरपूर सहयोग कर सकने की स्थिति में होंगे।
1: बिल्कुल सर, बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद इस अधिनियम के जरिए की जा रही है, लेकिन सर मनरेगा की वो कौन सी बड़ी खामियां थीं जिन्हें दूर करते हुए इसे लागू किया गया है? ग्रामीण युवाओं के लिए ये किस तरह का अवसर पैदा करेगा? और सर क्या आपको लगता है इससे गांवों से जो शहरों की ओर पलायन हो रहा था वो कम होने की संभावना है? बड़ी खामियों की बात करें तो जिस तरह से मनरेगा में हम देख रहे थे, चाहे दिनों की संख्या की बात कर लें या फिर वेतन भुगतान की बात कर लें या फिर कृषि फसलों के अवकाश की बात कर लें, ये सारी चीजें दूर की गई हैं इस नए अधिनियम में?
0: देखिए, जहां तक मनरेगा की बात है, जो पहले स्कीम चली तो उसमें कुछ खामियां पाई गई, जैसे बड़े पैमाने पर उसमें पारदर्शिता का अभाव था, यही नहीं जवाबदेही का अभाव भी पाया गया, कई प्रकार की अनियमितताएं हुई, कई तरह से कह सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, काम जो मजदूरों से होना था उनको मशीनों के जरिए कराया गया, और जो लेखा जोखा होता था उसमें भी जवाबदेही की कई तरह की कमियां पाई गई। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी वो तो डिमांड ड्रिवन थी कह सकते हैं, लोग मांग करेंगे तब उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन जो ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम नई शुरू की गई है इसमें सप्लाई की जाएगी या सप्लाई ड्रिवन रोजगार सृजित किए जाएंगे, अर्थात सरकार के स्तर पर ये जो स्कीम लागू की गई है अब पंचायतों को स्थानीय स्तर पर इस बात का अवसर प्राप्त होगा कि वो गांव की तरक्की के लिए योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के लिए वित्तीय जो प्रबंधन है, वित्तीय जो संसाधन है वो केंद्र सरकार 60% देगी, 40% राज्य सरकारें लगाएंगी, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर केवल केंद्र शासित प्रदेशों को 10% लगाना होगा, बाकी केंद्र सरकार देगी। तो कुल मिलाकर ये भी कह सकते हैं कि यही स्कीम इस तरह तैयार की गई है जिसमें प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग तीनों

0: को एक साथ लेकर जब आगे बढ़ा जाएगा तो गांव की आर्थिक विकास की गति तेज होगी और जो पहले से कह सकते हैं मनरेगा में व्याप्त एक जवाबदेही का अभाव था, पारदर्शिता का अभाव था, एक नई प्रणाली ऐसी उभरेगी जिसमें जवाबदेही होगी, बेहतर कार्यान्वयन होगा और यही नहीं जो स्कीमें लागू की जाएंगी उनका अनुश्रवण भी होगा, क्योंकि मॉनिटरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। डैशबोर्ड के जरिए दृष्टांकित किया जाएगा कि कौन सा काम कहाँ कब होना है, किस प्रकार की स्कीमों को तैयार किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि जो आवश्यक स्कीमें हैं गांव के समग्र विकास के लिए उन स्कीमों को तरजीह दी जाएगी। एक बड़ी बात है कि इसमें जो प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, यानी जो जलवायु से चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको भी संबोधित करने के लिए इस विकसित भारत जी राम जी स्कीम में एक क्षेत्र दिया गया है, कार्य का क्षेत्र दिया गया है। तो मेरा मानना है कि जल सुरक्षा हो, चाहे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खेती हो, मछली पालन हो, भंडारण हो, बाजार हो, कौशल विकास हो, इन सभी को एकीकृत करते हुए गांव की समग्र उन्नति की चेष्टा के लिए ये स्कीम लागू की गई है और इससे गांव स्तर पर तो तरक्की होगी ही, साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि गांव अब राष्ट्रीय विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने कहा कि गांव भी अब राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकेंगे, तो सर आपसे जानना चाहेंगे इस नए अधिनियम में रोजगार, परिसंपत्ति निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने की बात की गई है, ऐसे में कौन कौन से वो विशेष प्रावधान है जो आपको इस नए अधिनियम में विशेष तौर पर प्रभावी लगते हैं?
0: देखिए, जाहिर सी बात है कि इस नई स्कीम में सड़क है, सार्वजनिक भवन है, जैसे स्कूल के निर्माण की बात अगर है, स्वच्छता की विभिन्न सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, सोलर प्रणाली और कह सकते हैं जो नवीकरण ऊर्जा है उसको आगे बढ़ाने का काम, और जो आवासीय योजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं और नई स्कीमें आवास की शुरू की जाएंगी, उनमें कह सकते हैं मजदूरों को रोजगार देकर एक ओर जहां उन्हें आजीविका के गुणवत्ता पर अवसर प्राप्त होंगे, इसके साथ ही साथ जो ये बात केंद्र में महत्वपूर्ण होगी, या ये कह सकते हैं कि सबसे अहम बात यह है कि स्थानीय स्तर पर टिकाऊ संपत्तियों के सृजन द्वारा गांव का विकास होगा और गांव स्तर पर ही कह सकते हैं स्थानीय रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। तो इससे जब पलायन थमेगा तो ये कह सकते हैं कि नगरीय विकास पर भी जो एक दबाव बनता है, गांव से जब मजदूर पलायित होकर नगरों की तरफ आते हैं तो कई प्रकार की नगरीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनको भी संबोधित करने में ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम सहायक सिद्ध हो सकती है।
1: सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार साल 2047 तक एक ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना चाहती है, यानी कि विकसित भारत की सोच को साकार करना चाहती है, उस दिशा में ये पहल आपको कितनी महत्वपूर्ण लगती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास और रोजगार की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है?
0: देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, उत्तर प्रदेश में खेती का क्षेत्र अभी भी एक प्रधान स्थान रखता है, साथ ही साथ जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि ODOP का क्षेत्र है, जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग है, इनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है और उसको और अधिक मजबूती देने में इस स्कीम से मदद मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसको मूर्त रूप देने में भी ये स्कीम काफी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि ये स्कीम केवल रोजगार देने की स्कीम नहीं है या आजीविका देने की स्कीम नहीं है, इसमें एक और जहां समेक मजदूरी देते हुए मजदूरों का सशक्तिकरण होगा, साथ ही साथ मजदूर एक जनशक्ति के रूप में राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जो जनशक्ति है, जो मैन पावर है या मानवीय पूंजी है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में उभरने में। तो इस तरह देखा जाए तो ये है स्कीम जो एक नवाचारी है कह सकते हैं, ये टिकी हुई है नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा, गाँव का आमूलचूल परिवर्तन

0: शर्मा।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज आप समाअत फरमाएंगे डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका एक मकाला, अमीर मीनाई की गजलिया शायरी और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाबे सलाम फैजी। लेकिन सामईन, आज ड्रामा नवीसी और अफसाना नवीसी की एक मोतबर शख्सियत सैयद असगर वजाहत का योम पैदाइश है, तो पहले समाअत फरमाइए इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीर ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। पेश कर रहा हूँ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल। दुनिया अदब की ऐसी मुतअद्दिद शख्सियतें हैं जिनके अदबी कारनामों से गुलशन अदब में ताज़ा हवा के झोंकों का एहसास होता रहता है, लेकिन हम अक्सर उनकी हालात ज़िंदगी और दीगर अदबी कारनामों से नावाकिफ रहते हैं। जनाब सैयद असगर वजाहत का शुमार भी हिंदुस्तान के मारूफ अदीबों में होता है। सैयद असगर वजाहत की पैदाइश आज के ही दिन 5 जुलाई सन 1946 को दिल्ली पहचानता है स्विमिंग पूल, डेमोक्रेसी, मुख्तसर अफसानों में शेर, चार हाथ और साझा वगैरह, सफरनामे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ईरान चलते तो अच्छा था। सैयद असगर वजाहत की तख्लीकात में सरमायादाराना निज़ाम पर तंज नज़र आता है, समाजी हकीकत और फ़िरकावाराना हम आहंगई जैसे गहरे मौजूआत उनके अफसानों और ड्रामों में शामिल हैं। उन्हें उनकी अदबी खिदमात के अवज़ संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड, कथाकर्म सम्मान और हिंदी अवार्ड से नवाजा गया। ड्रामा नवीसी का एक अहम शाहकार सैयद असगर वजाहत। समय नभी आप सैयद असगर वजाहत के यौम पैदाइश के मौके पर यह तकरीर समाअत फरमा रहे थे, और आइए रुख करते हैं मकाले की जानिब। समाअत फरमाइए डॉक्टर शरीफुद्दीन से उनका मकाला।

अब न लो, रहने दो और इम्तिहान, सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो, देखो मियाँ बहुत हुआ, बेहतर है अपनी राह लो, देखो मियाँ बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए

को देता रहा अज़ियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें। यूं तो अदा फरीज़े हमसायगा बहुत हुआ, यूं तो अदा फरीज़े हमसायगा बहुत हुआ। मक्ते का शेर समाप्त फरमाए कि अब तो

0: कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़िया बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल। हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी है मौजे हवा, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी है मौजे हवा समते शजर सोच के चल। और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल। और मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल। और फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल। और डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, जानिबे दस्त जरा दीदे तर सोच के चल, जानिबे दस्त जरा दीदे तर सोच के चल। और दूसरी गजल का मतला समाप्त फरमाए, सहेले मुमतना में समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि सदा देने से कुछ होता नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है। अशेर देखें कि निकल जाती है दूर उंगली छुड़ाकर, निकल जाती है दूर उंगली छुड़ाकर, हवा के साथ अब चलना नहीं है, हवा के साथ अब चलना नहीं है। अशेर बतौर खास ये समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, यकीन तो हर नफस होता है लेकिन, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है, तुझे ये जिंदगी देखा नहीं है। और शेर देखें कि तो फिर ये आबयारी किस लिए है, तो फिर ये आबयारी किस लिए है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है, अगर आंखों में कुछ बोया नहीं है। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी ये नन्हे मुन्ने हाथ छू लो, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, अभी शाखों से चांद उलझा नहीं है, सदा देने से कुछ होता नहीं है, तुम्हारे हाथ में कासा नहीं है।
1: जनाब सलाम फैजी के नशार के साथ सामीन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज़ पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। आप सुन रहे हैं यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम, पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227।

0: कीजिए
1: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: लोक संगीत के कार्यक्रम में हमारी आज की कलाकार है छाया मिश्रा। इनके स्वर पे आइए सबसे पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

खिमटा के साथ ही समाप्त होता है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी आज की कलाकार थी छाया मिश्रा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मुझे याद कर कभी श्रद्धा से झुक जाए अगर तुम्हारा सर, तो मान लेना तुम्हारे भीतर ही है मेरा होना। कभी मेरी राह पर चलते हुए चोट खाओ, रुक जाओ फिर भी चलो, तो मान लेना मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा।

0: हमने तो शराफत से अपनी आजादी ली, ऐसा सारी दुनिया कहती है। तब मैं कहूँगा कि जो शराफत से चीज मिली है उस चीज को रखने के लिए भी हमारी शरीफ होना चाहिए।
1: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक शुक्रवार गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:25 पर सुनिए बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का धारावाहिक पाठ।

0: गीत को लिखे हैं पल्ली कवि नंद किशोर बड़। तो फिर अभी गाना लिखो, पहले स्थाई। डारणिया खोरा पड़ी ची,
1: डारणिया खोरा पड़ी ची,
0: बेलो जाऊ ची बुड़ी,
1: बेलो जाऊ ची बुड़ी,
0: की सुंदर पारा जोड़िए,
1: की सुंदर पारा जोड़िए,
0: जाऊ छंती उड़ी,
1: जाऊ छंती उड़ी।
0: अच्छा अभी पहला अंतरा लिखो, आसो आसो पारा जोड़ी को,
1: आसो आसो पारा जोड़ी को,
0: मोरो पिंडारे बसो,
1: मोरो पिंडारे बसो,
0: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
1: खाई बाकू देवी तुम्हों को,
0: मुही नड़िया रसो,
1: मुही नड़िया रसो।
0: अभी दूसरा अंतरा लिखो, पी बाकू देवी तुम्हों को,
1: पी बाकू देवी तुम्हों को,
0: पद्म पोखरी पानी,
1: पद्म पोखरी पानी,
0: सोई बाकू देवी खटुली,
1: सोई बाकू देवी खटुली,
0: माली घरु मु आनी,
1: माली घरु मु आनी,
0: माली घर खटुली रे जे,
1: माली घर खटुली रे जे,
0: बाउंसर पातिया,
1: बाउंसर पातिया,
0: मा झुअंकर गोड़रे,
1: मा झुअंकर गोड़रे,
0: रतनर झुंटिया,
1: रतनर झुंटिया।
0: अभी चौथा अंतरा लिखो, सारी पचारिला सुआरे,
1: सारी पचारिला सुआरे,
0: क्यों दांडरे जीबा,
1: क्यों दांडरे जीबा,
0: सुआ बोले सारी चालोगो,
1: सुआ बोले सारी चालोगो,
0: बड़ दांडरे जीबा,
1: बड़ दांडरे जीबा।
0: तो फिर तुम लोगों ने गाना लिख लिया?
1: हाँ बोली।
0: ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये गाना सिखाता हूँ। मैं गाऊंगा पहले, तुम लोग उसे दोहराना, ठीक है?
1: हाँ गुरुजी।
2: तो अभी गाना सुनते हैं, जो कि ये दादरा ताल पर है, जो कि 6 मात्रा मध्य लय में है। देखते हैं।

0: लिया। इस गीत को लिखे थे उड़ीसा के जाने माने कवि पल्ली कवि कौन? हाँ ठीक, तुम लोगों ने गाना सीखा, यहाँ घर में जाओ अपने साथियों को ये गाना जरूर सिखाना, ठीक है? तो फिर चलो। हाँ
1: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में उड़िया सामुदायिक गान शिक्षा पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

पराया धन फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था आरडी बर्मन का। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। लता मंगेशकर की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और संगीत है शंकर जयकिशन का।

बम्बई का बाबू फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू के बोल हैं और संगीत है एस डी बर्मन का।

0: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
1: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
2: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था,
1: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
3: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में,
1: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने? ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है
4: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
5: औरों को भी सिखाओ।

रजनीगंधा फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को, मुकेश की आवाज थी, योगेश के बोल और संगीत था सलील चौधरी का। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मुनीम जी फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल और संगीत है एस डी बर्मन का।

कोहिनूर फिल्म से अभी आपने सुना इस गीत को, लता मंगेशकर की आवाज थी, सलील चौधरी के बोल और संगीत था नौशाद का। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म आनंद से ये गीत, मुकेश की आवाज है, योगेश के बोल और संगीत, सलील चौधरी का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बज चुके हैं, आइए सुने बच्चों का कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद। मैं हूँ आपकी दीदी शबनम।
1: और मैं हूँ आपकी निशा दीदी।
0: निशा दीदी कैसी हैं आप?
1: दीदी मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ। और जब मौसम अच्छा हो जाता है ना तो मन अपने आप अच्छा हो जाता है।
1: हाँ, ये हरे भरे पेड़ पौधे और इतना अच्छा मौसम, थोड़ी थोड़ी बारिश और खूब ठंडी हवा, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: लेकिन बीच बीच में जब धूप आ जाती है ना तो मन कुछ अच्छा नहीं रहता
1: और वो उमस वाली गर्मी।
0: हाँ, और ऐसे मौसम में देखिए, एक तो ये भी होता है कि बारिश का हम सब बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ पपीहा भी इंतजार करता है, मोर भी इंतजार करता है, बहुत सारे जीव जंतु उन्हें भी बारिश का इंतजार होता है।
1: दीदी, क्योंकि हरियाली ठंडक किसे नहीं पसंद।
0: हाँ, और देखिए हर किसी को प्रकृति से तो प्यार होता है, लेकिन इस प्रकृति के लिए लोग क्या करते हैं?
1: दीदी अगर हम चाहें तो अपने प्रकृति को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति जो है हमें इतना कुछ दे देती है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के।
0: प्रकृति से हम हैं, प्रकृति हमसे तो है, लेकिन प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती है।
1: हाँ, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम अपनी प्रकृति को बचा कर रखें, उसका संरक्षण करें और जो भी ये संसाधन हमें प्रकृति ने दिए हैं
0: जी
1: उसे बचा कर रखें।
0: हाँ, और जब ये जुलाई का महीना आता है बच्चों, तो देखिए हम इसी जुलाई में ही पहले सप्ताह यानी कि 1 से 7 जुलाई हम वन महोत्सव मनाते हैं। और इसका कारण यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हैं और ये चाहते हैं कि इस समय सभी संस्थाएं, स्कूल में, कॉलेज में, बहुत सारे जगह पे लोगों को पौधा लगाने के लिए जागरूक किया जाता है।
1: और दीदी इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य ही यही है कि लोग जान सकें कि वनों की जो भूमिका है इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में, वो कितनी ज्यादा मायने रखती है।
0: और देखिए वन या जीव या प्रकृति हमसे कुछ ज्यादा नहीं लेती, भले हमको सब कुछ देती है, क्योंकि पौधे या पेड़ हमें विनम्रता सिखाते हैं, हमें सहयोग करना सिखाते हैं, हमें कुछ देना सिखाते हैं, इनको लगाना है, और इसी से हमारी प्रकृति का श्रृंगार भी है। क्योंकि कहते हैं कि बिना पेड़ पौधे के जो पृथ्वी है वो बिल्कुल वीरान सी लगेगी, उसमें कोई खूबसूरती नहीं रह जाएगी, तो इस धरा का जो हरा भरा रहना बहुत जरूरी है।
1: और दीदी पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो ये जो अच्छी हवा हमको ऑक्सीजन मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी, ये पानी जो हम पीते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाएगा, तो हम इन सब के बिना तो जिंदा ही नहीं रहेंगे दीदी।
0: हाँ,
1: तो दीदी अपने प्रकृति से हम सब प्रेम करें, और भी बारिश जो शुरू हो चुकी है तो इसमें एक पेड़ तो जरूर लगाइए अपने आसपास। अगर हम पेड़ बचाए रखेंगे तो उनके घोंसले, उनका घर भी बचा रहेगा।
0: बिल्कुल, और देखिए जो वन जीव हैं वो वनों में ही रहेंगे, तो वन नहीं रहेगा तो वो जीव जंतु कहाँ रहेंगे बच्चों? तो जरूरी है कि उनके घर को बचाए रखें। हाँ। उनके घर बचने से ही हमारा जीवन भी बचा हुआ है, हमारे घर भी सुरक्षित है। अगर वन नहीं रहेंगे तो वो बड़े या छोटे सारे जानवर कहाँ जाएंगे? उनका घर जरूरी है, इसलिए धरती पे वन भी जरूरी है, और वन जरूरी है तभी हम सुरक्षित हैं, हमारे वन जीव सुरक्षित हैं। तो थोड़ी सी प्रकृति से भी प्रेम करिए और थोड़ा सा समय निकाल के वृक्षारोपण जरूर करिए।
1: हाँ, और दीदी ये पेड़ पौधे, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: है ना? पहाड़ सिखाता है अडिग रहना, है ना, धैर्य सिखाता है, नदियां हमें हमेशा निरंतर बहना सिखाती हैं कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। और ऐसी दीदी है जो फूल भी है ना, जब हम फूलों को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना,
0: वो हमें हंसना सिखाते हैं,
1: वो हमें हंसना सिखाते हैं।
0: हाँ, और ये भी कहते हैं फूल बच्चों कि देखिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति में हंसना, मुस्कुराना, संघर्षशील रहना जरूरी है। कोई भी इंसान कामयाब तभी होता है

0: दीदी
1: हाँ
0: देखिए, ये हंसते मुस्कुराते जैसे फूल अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही हंसते मुस्कुराते नन्हे मुन्ने बच्चे भी लगते हैं।
1: जब वो मुस्कुराते हैं और वो जब बातें करते हैं अपनी नन्ही नन्ही सी आवाज में ना, वो
0: हाँ,
1: तोतली सी आवाज में, तो सच में बहुत अच्छा लगता
0: और
1: है।
0: देखिए जब वो कुछ सुनाते हैं, प्रस्तुति अपनी लेके आते हैं, तो हमें तो अच्छा लगता ही। साथ में हम जो दोस्तों को सुनवाते हैं ना, उन्हें भी अच्छा लगता होगा। और ऐसे ही कुछ नन्हे कलाकार, कुछ नन्हे दोस्त अपनी प्रस्तुति लेकर के हाजिर हुए थे, और हम उनसे बात किए और बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी।
2: मेरा नाम श्री राधा कृष्ण है और मेरा नाम श्री राधे कृष्ण है। सुनी मिल के गाने सुन, सुनी मिल के गाने सुन, तुझे गली में पाया था, छुपकर तुझे उठाया था। सोचा तुझे उठा करके मिट्टी दले दबा करके छुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा। फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तू फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा। फिर पौधा बन जाएगा, दिन दुना बढ़ जाएगा। फिर तुझमें फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे। पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया। जब तक मेरी मति लगी तुझे गिरा लीले भागी। मेरा नाम श्री राधा कृष्ण है और मेरा नाम श्री राधे कृष्ण है।
0: अब क्या सुनाएंगी?
2: हम दोनों भजन सुनाएंगे।
0: तो सुनाइए।
2: रचा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि

0: लगाओ सब दो चार, धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार।
1: शबनम दीदी,
2: हाँ?
1: जो हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति हमें सुनाए, कितना अच्छा लग रहा था ना।
2: हाँ, और हमारे दोस्तों को भी अच्छा लगा होगा। और देखिए, जैसे बच्चे हंसते मुस्कराते खिलखिलाते अच्छे लगते हैं, वैसे ही अगर हमारा जो पर्यावरण है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का भी वातावरण एकदम हंसता मुस्कराता ठंडा कूल कूल रहे तो
1: हाँ।
2: कितना अच्छा लगता है। हर किसी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है न? और जब हम स्वस्थ रहते हैं तभी सारी चीजें अच्छी लगती हैं।
1: हाँ, लेकिन दीदी इधर भी देख रही थी मेरी दीदी, कितनी तेजी से गर्मी बढ़ी है। पहले मौसम बहुत संतुलित रहा करता था, लेकिन अब जो है कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाता है, अचानक से मौसम बदल जाता है, इससे हम बीमार भी बहुत पड़ने लगते
2: हाँ,
1: हैं।
2: और ये भी है ना कि जब ऋतुएं आती थी, कहते हैं कि अब सर्दी के दिन हैं, अब बारिश के दिन हैं, अब गर्मी है, तो ये एक तरह से परिवर्तन हो गया है। कभी भी बारिश, जैसे आप कह रहे हैं ना कि बारिश हो जाती है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जब गर्मी बढ़ रही थी तो बेतहाशा गर्मी, तो ये सारी चीजें जो बदल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण जो है हम और आप हैं, क्योंकि
1: हाँ,
2: हम उस तरह से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं जिसका कुछ ना कुछ असर तो प्रकृति पे पड़ेगा और उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा।
1: लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं,
2: जी
1: और हम कहीं भी अगर आसपास भी जाना होता है तो अपनी गाड़ी उठाते हैं और उससे चले जाते हैं। अगर हम चाहें तो दीदी पैदल जा सकते हैं, अगर आसपास है तो
2: जी
1: साइकिल से जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि प्रदूषण नहीं फैलेगा बहुत ज्यादा, हमारी हवा जो है वो प्रदूषित नहीं होगी।
2: और ये भी बात है ना कि देखिए, जो धरती का तापमान है वो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा, तापमान बढ़ रहा है, और इसका असर हर किसी पे पड़ रहा है, जीव जंतु पे पड़ रहा है, हमारी प्रकृति पे पड़ रहा है। तो जरूरी है कि हम इसके लिए जागरूक हो और बाकी लोगों को भी जागरूक करें कि हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो कि हमारी प्रकृति पे बुरा असर पड़े और उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो जरूरी है कि पेड़ पौधे लगाएं। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो प्रकृति के लिए भी नुकसानदेह हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीजों का हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं, तो सोच समझ के इस्तेमाल करें, इससे हमारे जो प्रकृति है वो भी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे।
1: हम दीदी घाटों पर जाते हैं अगर घूमने फिरने भी, तो नदियों में ऐसे ही कचरा ना फेंक दें, या नदियों में ही क्या, अगर हम कहीं भी चल रहे हैं तो कहीं भी कचरा नहीं फेंक देना चाहिए, उसके लिए डस्टबिन है, कचरा वहीं पे डालना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा जो पर्यावरण है आसपास सफाई रहती है, और इससे हम एक सभ्य इंसान कहलाते
2: हाँ,
1: हैं।
2: पॉलिथीन बहुत नुकसानदेह है, चाहे वो अगर जमीन में है तो भी, पानी में है तो भी, और अगर वो मिट्टी में दबा दी गई है तो भी, तो वो नष्ट नहीं होती और नुकसान बहुत ज्यादा करती। और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो खत्म हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, जैसे कि कागज की बनी चीजें हैं या कपड़ा है, कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी गल जाता है। और पॉलिथीन ना गलती है ना सड़ती है, अब बारिश हो रही है तो जाके पानी को चोक करेगी, तो इस तरह से बहुत सारे जो पशु हैं जो चरते हैं वो भी खा लेते हैं, उनको भी नुकसान करती है। तो इन सारी चीजों को, हो सकता है बच्चों आपको लगती हो ये बात छोटी, लेकिन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और हर इंसान अगर अपनी तरफ से पहल करे ना तो कोई भी समस्या समस्या नहीं रहती।
1: और दीदी ये सिर्फ यहीं तक असर नहीं करती, जो हम अनाज खाते हैं
2: जी
1: वो अनाज भी जलवायु की वजह से ही, जो भी ये सर्दी पड़ती है गर्मी पड़ती है उसी की वजह से ही ये अनाज भी हो पाते हैं, चाहे वो चावल हो गेहूं हो दालें हो, अगर जलवायु पे असर आएगा तो हमारे अनाजों पे भी।

0: असर आएगा।
1: सब पे असर होगा।
0: हाँ
1: तो हर चीज एक बैलेंस में हो, एक संतुलन में हो, तो जरूरी है कि हम अपने जीवन को भी संतुलित रखें। बेवजह पेड़ों की कटाई ना करें, बेवजह वाहनों का इस्तेमाल ना करें, और बेवजह कोई भी काम ना करें।
0: हाँ, साफ सफाई रखें, चाहे आसपास हो चाहे अपनी खुद की भी सफाई रखें।
1: जी हाँ। और बच्चों, बहुत सारी बातें आपसे हुई और घड़ी भी इशारा करने लगी दीदी कि हमें चलना है। और बच्चों उसे यही कहना है कि अगर आपके स्कूल में पौधे मिल रहे हैं या फिर आप खुद से लगाना चाहें तो लगाइए भी, और बाद में उनकी सेवा भी करिए, देखरेख भी करिए। ये नहीं कि अभियान के तहत एक पौधा लगा दिया या दो पौधे लगा दिए, उसके बाद फिर उसकी देखभाल नहीं की।
0: और वो सूख रहा है।
1: हाँ, वो सूख रहा है, तो जरूरी है कि पौधे को लगाएं भी, उसकी सुरक्षा भी करें, और देखें वो आपके साथ ही बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, और अगर फलदार पौधे लगा दिए तो फल भी देंगे।
0: हाँ, और बड़े होकर के आप याद करेंगे कि हमने ये पौधा लगाया था।
1: हाँ। और हम पौधे जब लगाते हैं ना, तो एक छोटा सा पौधा लगाने के बाद उसको पूरा 10 वर्ष कहते हैं कि लगता है बड़ा होने में। बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगा देते हैं, लेकिन एक वृक्ष बनने के लिए उसे 10 वर्ष लगता है, और काटने में शायद उतना वक्त नहीं लगता कि फट से कट जाते हैं पेड़। लेकिन उस बात का भी ख्याल रखें कि ये पौधे हैं, ये पेड़ हैं, तभी हमारा जीवन सुरक्षित है। तो इनकी सुरक्षा करें और प्रण लें कि कम से कम दो पौधे तो लगा ही दे।
0: हाँ दीदी, मैं तो लगाऊंगी दीदी।
1: तो हमारे दोस्त भी इस वादे को जरूर पूरा करेंगे कि इस वृक्षारोपण में वो अपना पूरा सहयोग करेंगे और साथ में पौधे लगाएंगे भी। तो चलिए चलते हैं, और बच्चों को कहते हैं
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

0: बच्चे सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम बाल संग। फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।
1: सुन जा आ ठंडी हवा, आ ठंडी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय है गर्भाशय में सिस्ट की समस्या और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनीता सुमन।

0: से जुड़ी एक ऐसी समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। कई बार महिलाओं को पेट दर्द, अनियमित मासिक धर्म या गर्भधारण जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन वे इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। ये लक्षण गर्भाशय या अंडाशय में सिस्ट की ओर संकेत कर सकते हैं। और हमारा आज का विषय भी यही है, गर्भाशय या अंडाशय में सिस्ट की समस्या और इसका इलाज। तो आइए जानें डॉक्टर सुनीता सुमन जी से कि सिस्ट होता क्या है और यह क्यों होता है।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिस्ट आजकल जो है बहुत देखा जा रहा है महिलाओं में, और इसके जो उपद्रव हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। तो सिस्ट हम जो है, जो हमारी अंडे दानी है, अंडे बनाती है, जो अंडाशय है गर्भाशय के साथ जुड़ी रहती है वो, और वो अंडे बनाती है। और वो अंडे क्या होता है कि फूटते नहीं है, और उनमें जो है फ्लूड इकट्ठा होता रहता है। तो वो फ्लूड इकट्ठा होता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, और वो एक सिस्ट का रूप, सिस्ट एक थैली की तरह होता है जिसमें पानी भर दो, एक बैलून ले लो, तो उस तरह से वो सिस्ट का रूप धारण कर ले। वो रप्चर नहीं होता है, फूटता नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं।
0: डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। एक श्रोता का फोन आ रहा है।
2: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार, आरोग्यम में आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं।
2: जी, मेरा नाम अमिता है
0: हाँ जी।
2: और मेरी उम्र 50 साल है। शादी के बाद ना हमें सिस्ट था,
0: हाँ,
2: और फिर उस प्रेगनेंसी में थोड़ी दिक्कत हुई, तो फिर डॉक्टर साहब ने दवा ववा किया, ठीक हो गया। फिर एक बेबी मैंने कैरी किया, उसके बाद तो कोई समस्या हमको नहीं हुई। फिर मैंने जब जांच कराई तो उसमें सिस्ट जो है छोटा हो गया था। तो डॉक्टर मैडम से ये पूछना है हमें कि
0: हाँ
2: अभी
0: हाँ
2: सर मैंने बहुत दिनों से जांच वगैरह नहीं कराई है, लेकिन मेरे पीरियड वगैरह सही आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या अभी सिस्ट को लेकर के जो है कि फिर अपना जांच उच कराना चाहिए, या उसको ऐसे ही छोड़े रहें? कोई दिक्कत तो नहीं होगी आगे इसमें?
1: हाँ बिल्कुल अमिता जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगी अमिता जी कि आपको पहले सिस्ट था, आपकी फिर प्रेगनेंसी हुई, डिलीवरी हुई, लेकिन अब आपकी उम्र जो है वो 50 साल के करीब है।
2: जी
1: तो ऐसी कंडीशंस में सिस्ट की समस्या हो सकती है, या किसी और तरह की भी गांठ की समस्या हो सकती है। कभी भी अगर आप 45 से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि ये मीनोपॉज का टाइम है आपका, और
2: जी
1: ऐसे में जो है हार्मोन्स का असंतुलन होता है, और हार्मोन्स का इम्बैलेंस आपको कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और
2: जी
1: पहले
2: जी
1: आपको सिस्ट की समस्या रही है, ये जरूरी नहीं है कि सिस्ट में, ये किसी तरह के जो कि ऐसे ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो जरूरी नहीं है कि कैंसर वाले हों। लेकिन
2: जी
1: कई बार बहुत सारी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं कि हमें डाउट होता है, शक होता है कि कहीं ये कैंसर वाला तो नहीं है। फिर भी आप, कुछ भी नहीं है तो भी आप अपनी पैप स्मेयर की जांच जरूर करा लें, अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देख लें एक, कि कोई गांठ तो नहीं है आपको, या जो बच्ची दानी है उसकी गांठ तो नहीं है, या किसी तरह का बदलाव तो नहीं आ रहा है। और अगर आपको फिर भी 50 साल के बाद भी अगर कैंसर वगैरह की जांच के लिए कराना है, तो एक
2: जी
1: CA-125 जांच होती है, जो कि ब्लड से ही हो जाएगी, वो कैंसर की जांच होती है। वो अगर आपके नॉर्मल आती है तो आपको फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
2: तो मैम, ये डॉक्टर मैम से बताना होगा, जो मेरी मैंने देखती हैं,
1: हाँ
2: चेकअप
1: बिल्कुल
2: करती हैं।
1: बिल्कुल, अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और आप कहिए कि मुझे अपनी जांच करानी है कि मुझे कोई इस तरह की समस्या तो नहीं है, जननांगों से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है, मेरे यूट्रस से, मेरे ओवरी से संबंधित कोई समस्या तो नहीं है। वो सारी जांच करानी है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मुझे चेकअप कराना है रूटीन।
2: ओके मैम, थैंक यू,
1: जी
2: धन्यवाद
1: जी
2: मैम,
1: थैंक यू,
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद अमिता जी, आपने आरोग्य में फोन किया और अपनी समस्या को मैम के साथ साझा किया। हाँ मैम, मैं आपसे फिर से वही पूछना चाहूंगी, आप बता रही थी सिस्ट होता क्या
1: जी
0: है।
1: जी और यह क्यों होता है इसको भी मैं बताऊंगी कि बहुत सारी इससे रिलेटेड डिसीज होती हैं। जैसे कि हम PCOD है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अंडे बनते जाते हैं, और वो जो है अंडे फूटते नहीं, वो सिस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। या किसी किसी पेशेंट्स में एक बहुत समस्या चली आ रही है एंडोमेट्रियोसिस की, जो हमारा यूट्रस का जो टिश्यू होता है वो यूट्रस में ना इन्वेड होके कहीं और हो जाता है, ओवरी में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, या पैल्विस के जो हमारी नीचे की कटी प्रदेश है उसमें कहीं पर भी हो जाता है। तो उसकी वजह से भी जैसे चॉकलेट सिस्ट आता है ब्लड का, उसमें जो है फ्लूइड की जगह ब्लड भर जाता है।
0: अच्छा।
1: तो एक ऐसा सिस्ट

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्यम। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र मनु, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता सुमन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मनु जी।
0: श्रोताओं, आज हम महिलाओं

0: हो सकता है, थायराइड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है थायराइड की, उसकी वजह से भी ये सिस्ट हो सकता है। इन्फेक्शन है तो भी, ये संक्रमण के कारण भी ये सिस्ट हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सिस्ट हो सकता है।
1: मैम, कभी कभी ऐसा होता है महिलाओं के साथ कि उनको कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन वो अपनी परेशानी छिपाती रहती हैं और अपने काम में व्यस्त रहती हैं, तो वो समझ नहीं पाती हैं कि सिस्ट के लक्षण क्या क्या हैं।
0: देखिए, ये जो सिस्ट होता है ये
1: मैम
0: हॉर्मोन
1: रोकना
0: सिस्ट।
1: चाहूंगी, मैम एक
0: जी
1: श्रोता का फोन आ रहा है। हेलो
2: हेलो,
1: जी, नमस्कार, आरोग्य में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं।
2: जी मेरा नाम शिवानी है, बरौनी से बोल रहे हैं।
1: अच्छा शिवानी जी, आज का
2: जी
1: विषय है महिलाओं में गर्भाशय या अंडाशय में होने वाली सिस्ट की समस्या और इसका इलाज, और डॉक्टर सुनीता सुमन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछें।
0: शिवानी जी नमस्कार, बताइए क्या परेशानी है आपको।
2: जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सिस्ट अगर यूट्रस में हो जाता है या सिस्ट यूट्रस के आसपास भी कहीं है, तो कोई घरेलू ट्रीटमेंट नहीं है? जैसे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया था एक बार, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है।
0: देखिए, मैं बताना चाहूंगी आपको कि सिस्ट जो है गर्भाशय में कम ही होता है, वो बच्चीदानी के मुंह पे होता है जिसको हम नेबोदियन सिस्ट होते हैं, और इतने खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अंडेदानी के सिस्ट जो हैं वो बहुत हो सकते हैं और वो खतरनाक भी हो सकते हैं कभी कभी। लेकिन यदि वो सिस्ट आपका 5 सेंटीमीटर से कम है तो वो 3 हफ्ते या 1 से 2 महीने में अपने से खत्म हो जाता है, जो कि फॉलिकुलर सिस्ट सामान्य सिस्ट कहता है। लेकिन वो अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा जा रहा है या उसमें कोई बदलाव आ रहा है या वहां पर फ्लूड, सिंपल फ्लूड जो होता है, एक तरल पदार्थ जो होता है सिंपल, वो नहीं है, ब्लड उसमें आ रहा है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कह सकते हैं, तो वो निकलवाना पड़ सकता है। या फिर आपको ऐसी परेशानियां हो रही हैं कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो ट्विस्ट होता है, घूम जाता है अपनी जगह से, तो अगर बहुत दर्द हो रहा है, वो जो आपको उल्टी आ रही है, मितली आ रही है, या फिर आपका महीने में बहुत ज्यादा खून जा रहा है, या फिर वो अनियमित है, इरेगुलर है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर ये सारी कंडीशंस मिल रही हैं तो फिर ऑपरेट करा लेना चाहिए।
2: मैम, ब्लीडिंग तो हो रही है ज्यादा?
0: हाँ, नहीं ज्यादा ब्लीडिंग है तो ये भी हो सकता है कि गर्भाशय का जो है वो फाइब्रॉइड हो, सिस्ट भी हो सकता है। तो अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, आपकी एज क्या है शिवानी जी?
2: मैम 37।
0: अगर 37 है तो आप पहले दवाइयों से अपना इलाज करने की कोशिश कीजिए, पहले जांच कराइए कि उनमें
2: मैम
0: कोई बदलाव तो नहीं है कैंसर वाला।
2: वो 5.5 पे है।
0: 5.5 है तो फिर वो दवाइयों से हो सकता है। अगर पहले आप जांच कराइए अपनी कि कोई कैंसर वाला बदलाव तो नहीं है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, MRI, CA, 125 मार्कर है, ये सब करा लीजिए। अगर सब नॉर्मल है तो 5 सेंटीमीटर का आपका दवाइयों से भी हो सकता है। और अगर आपके साथ में वो समस्याएं आ रही हैं जो मैंने अभी बताई कि बहुत दर्द है या बहुत खून जा रहा है, तो फिर आप इसका ऑपरेट कराइए, लेकिन पहले दवाइयों से कोशिश कीजिए।
2: मैम,
0: जी,
2: कोई घरेलू उपचार इसके लिए नहीं है?
0: घरेलू उपचार ऐसा कोई नहीं होता है, बस आप ये कर सकते हैं कि आप पहले अपना पेट साफ रखें, अपनी साफ सफाई रखें इन सब चीजों से। और दूसरा ये, जैसे अजवाइन है, पिपली है, होती है लंबी सी एक गरम मसाले में होती है, जीरा है, ये सब अच्छे से खाएंगे तो आपका जो है वो डाइजेशन ठीक रहेगा, तो उसकी वजह से समस्याएं थोड़ी कम हो सकती हैं। साथ में जो है आप फास्ट फूड, जंक फूड मत खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए अपनी, अगर व्यायाम करेंगी तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। अपना तनाव जो है वो कम कीजिए, मीठा ज़्यादा मत खाइए, तले भुने जो है वो खान पान पे ध्यान रखिए कि वो नहीं खाना है, मैदा की चीज़ें नहीं खानी है, और अपनी जो डाइट है वो समय से लीजिए, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और उसको ठीक होने में जो है वो थोड़ा सा उसका निवारण हो सकता है। जी धन्यवाद।
1: धन्यवाद शिवानी जी, आपने आरोग्यम में फोन किया और अपनी समस्या का समाधान पाया।
0: ये जो सिस्ट होता है ये हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारे, उनके इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो महिला को ये जानना चाहिए कि उनको सिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि उनको अनियमित रक्त स्राव हो रहा है, बहुत ज़्यादा रक्त स्राव हो रहा है, या बिल्कुल रक्त स्राव नहीं हो रहा है महीने के समय पर, पेट में भारीपन है, पेट में दर्द है, कुछ मिचली जैसा होता है, कई बार उल्टी भी हो सकती है, या फिर उनको जो है दूसरी बीमारियों में जैसे

0: पीसीओडी की समस्या है, उसकी वजह से भी सिस्ट हो रहा है, तो उसमें उनको जो है मुंह पर जो है एक्ने यानी कि मुहासे हो सकते हैं, जगह जगह बालों की उत्पत्ति हो सकती है, या फिर उनको किसी तरह का एंजाइटी हो सकती है, बहुत तनाव हो सकता है, या फिर उसमें जो है जो महीना है उसमें दर्द के साथ साथ जो है सफेद पानी की भी समस्या हो सकती है। अगर ऐसी सब समस्याएं हो रही हैं तो उनको अपने किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाकर जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्याएं जो हैं वो गर्भधारण जो महिलाएं करना चाहती हैं उनको नहीं हो पाता है, या फिर जिनको गर्भधारण हो चुका है उनके बच्चे हैं उसके बाद अगर ऐसी समस्या है तो उसमें जो है ये जो है समस्या अनियमित रक्त स्राव कर सकती है, दर्द कर सकती है। लेकिन ये जो सिस्ट होते हैं ये कभी कैंसरस नहीं होते हैं, बहुत कम ऐसे सिस्ट होते हैं जो कैंसर की तरफ जाते हैं, तो ये भी जरूर है कि जांच जरूर करा लें कि वो कभी कैंसर में तो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं।
1: हम महिलाओं को समय रहते अगर किसी समस्या का पता चल जाता है तो वो हम
0: जी
1: सबके लिए बेहतर होता है। मैम
0: जी
1: आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि ये गर्भाशय और अंडाशय की सिस्ट में क्या अंतर होता है?
0: देखिए, गर्भाशय में तो बहुत कम सिस्ट देखने को मिलता है। गर्भाशय में जो है वो सिस्ट की जगह सबसे ज्यादा जो देखने में मिलता है वो फाइब्रॉइड, जिसे हम रसौली कहते हैं, वो मिलता है हमारे यूट्रस के जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उसमें ये बनता है, और या फिर वहां पर एक एडिनोमायोसिस करके, आजकल बहुत जब अल्ट्रासाउंड हम लोग देखते हैं अधिकतर जो है 35-40 के बाद तो एडिनोमायोसिस करके एक बीमारी आती है, उसमें क्या होता है जो अंदर की झिल्ली होती है बच्चेदानी की वो बीच वाली झिल्ली में चली जाती है और वो एक गांठ के रूप में हो जाती है, तो ये सारी जो परेशानियां ये गर्भाशय की होती हैं, और अंडाशय से जो है वो सिस्ट बनते हैं, सबसे ज्यादा अंडाशय से बनते हैं सिस्ट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे पहले जो इफेक्ट डालती हैं वो हमारे मासिक स्राव पे डालती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लंबा चल सकता है ये मासिक स्राव, या फिर इसमें बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार नहीं भी होती है, या बहुत दर्द हो सकता है, या भारीपन हो सकता है पेट के नीचे, कई बार मल त्याग करने में अगर बड़ी सिस्ट है या बड़ा फाइब्रॉइड है तो क्या होता है कि जब स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ऐसी समस्याएं हो रही हैं या किसी को बहुत ज्यादा दर्द है, कई बार ये क्या है कि जो सिस्ट होता है वो जो है मरोड़ के साथ दर्द करता है क्योंकि वो रप्चर नहीं हो पाता है, घूम जाता है, ट्विस्ट कहते हैं जिसको, तो बहुत दर्द भी कर सकता है, तो ऐसी कंडीशंस में आप घर पर कोई इलाज ना करें, कई बार आप सिकाई करने बैठ जाते हैं इतनी सारी परेशानियों के साथ में, आप तुरंत जाके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, संपर्क करें और जो भी वो जांच कहें वो आप कराएं।
1: मैम सिस्ट की समस्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक बात और पूछना चाहूंगी। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनमें से जो महिलाएं होती हैं अगर वो गर्भधारण की योजना बना रही हैं, क्या ये जो सिस्ट की समस्या है अगर उन्हें पहले से है तो क्या गर्भधारण में समस्या आ सकती है उनके?
0: देखिए, कुछ सिस्ट जो होते हैं वो सामान्य सिस्ट होते हैं जिसको हम फॉलिकुलर सिस्ट कह सकते हैं या कॉर्पियस लूटियम सिस्ट कहते हैं, तो वो जो है फॉलिकल्स मैंने कहा कि वो रप्चर नहीं होता है, अगर 4-5 सेंटीमीटर तक का है तो वो अपने से खत्म हो जाता है 1-2 महीने के अंदर, कुछ वीक्स के अंदर, लेकिन यदि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा जा रहा है तो तुरंत संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो रप्चर कराने में सहयोग करती हैं वो दवाइयाँ, तो अगर आपका एग जो है वो रप्चर हो रहा है इसका मतलब आपका अंडा जो है वो रप्चर हो रहा है और आपको कंसेप्शन के यानी कि गर्भधारण के चांसेज हो सकते हैं, लेकिन यही सिस्ट अगर रप्चर नहीं हो रहा है तो उसमें हम एनओवुलेशन कहते हैं, तो ये ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है तो फिर गर्भधारण करने में समस्याएं आती हैं, तो तुरंत आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। नवविवाहित तो जैसे ही आप अगर चाह रहे हैं अपनी संतान के लिए तो पहले ही जाके मिल लें ताकि आपका समय से जो है ट्रीटमेंट हो जाए, इधर उधर ना जाए, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, फिर ट्रीटमेंट करने में भी टाइम लग जाता है।
1: यानी कहा जाता है ना कि अगर समय से सब कुछ हो जाए तो इलाज उसका संभव है।
0: अच्छा, जो मैं ये सिस्ट कह रही हूँ इसे हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं, आजकल के चाहे नवविवाहित हैं, चाहे हमारे स्कूल की बच्चियां हैं, चाहे कॉलेज की बच्चियां हैं, या

0: फीमेल भी है घर में, वो क्या करती है बाहर से फास्ट फूड इस तरह का जो है, या वर्किंग लेडीज हैं, उन सबका टाइम खाने का नहीं होता, जो मिलता है वो सब खा लेती हैं। तो ये सारी चीजें जो है, फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इस तरह की टाइम से नहीं खाना, और जब खाना है तो बहुत ज्यादा खा लेना, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, सबसे मेन है रहन सहन में प्रॉब्लम है, सफाई नहीं रखना है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा तनाव है, तो ये सारी समस्याएं भी सिस्ट या किसी भी तरह की गर्भाशय या अंडाशय की प्रॉब्लम्स या मासिक रक्त स्राव की प्रॉब्लम्स करती है।
1: आपकी बातों को सुनकर अच्छा लग रहा है, और जो सुन रहे हैं जो भी श्रोता, उन्हें आपकी बातों से बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि आज आपने सही बात कही है कि जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है और जिस तरह से हमारी जीवन शैली बदल रही है, उसमें हम लोग घर का खाना छोड़कर अगर बाहर रह रहे हैं तो अक्सर ये करते हैं कि बाहर जो भी मिल जाता है
0: जी
1: जल्दी जल्दी में उसे खा लेते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि बाद में ये जाके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं यही कहना चाहूंगी सभी श्रोताओं से कि आप अपने घर का भोजन करें, घर का खाना खाएं, ना कि बाहर का। और घर में जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उन्हें भी ये बार बार बताना चाहूंगी कि घर का भोजन ही सबसे अच्छा भोजन है। जल्दी में ही सही, आप अपने घर से अगर निकल रही हैं तो अपने साथ टिफिन जरूर लेके चलें।
0: यस, बिल्कुल सही आपने कहा, और तनाव रहित रहें और एक्सरसाइज जरूर करें।
1: मैम, तनाव रहित रहना, एक्सरसाइज करना, और ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं हमारे जीवन के लिए। मैम, एक फोन और आ रहा है, उसे देख
0: जी
1: लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हेलो जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं।
2: जी मेरा नाम दिव्या कुमारी है।
1: हाँ जी, और आज का विषय आपको पता है?
2: जी
1: हाँ, तो डॉक्टर सुनीता सुमन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं।
2: अच्छा ठीक है।
0: आपका नाम क्या है? नमस्कार
2: जी मैम, प्रणाम, मेरा नाम दिव्या कुमारी है।
0: हाँ दिव्या जी, बताइए क्या परेशानी है।
2: मैम मुझे पीरियड्स होता है तो मेरे पेट में मतलब दर्द होता रहता है हमेशा, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
0: आपकी उम्र क्या है दिव्या जी?
2: 19।
0: अच्छा, 19 है, मतलब 19 साल के हैं आप, यंग है, कॉलेज गर्ल से लग रहा है। तो दिव्या जी, बहुत सारी परेशानी हो सकती है। पहले आप अपनी थोड़ी सी जांच करा लीजिए। कई बार तो ये नॉर्मल भी दर्द हो सकता है, कई बार अनमैरिड है ना आप?
2: हाँ
0: हाँ, तो कई बार अनमैरिड गर्ल्स में ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि मेंसेस के समय पे दर्द हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है, आप अपनी थायराइड की जांच कराइए, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए जरूर जांच करा लीजिए, क्योंकि आजकल पीसीओडी की बहुत समस्या हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि अनियमित रक्त स्राव तो होता ही होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या बहुत कम भी हो सकती है, या लंबे समय तक नहीं आता है, तो ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और वो दर्द के साथ आएगा, या फिर बहुत ज्यादा जब भी आएगा तो बहुत ब्लीडिंग के साथ आता है। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि 19 साल की हैं, आपको पढ़ाई का जरूर टेंशन होगा, तो मैं बेटा यही कहूंगी कि आप अपना टेंशन जो है वो निकालने की कोशिश कीजिए, कि किसी भी तरह का, देखिए करियर तो आप अपना बना ही लेंगी जब अच्छे से आप पढ़ेंगे लिखेंगे, लेकिन अपने खान पान पे जरूर ध्यान रखिए। अगर आप हॉस्टल में रहती हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि आप हॉस्टल का खाना जो है अच्छा जो बना हो वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें, बाहर का खाना ना खाएं। आजकल पिज्जा, बर्गर, जो आप लोगों का है ये मैगी, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। फल खाएं उसकी जगह, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं उसकी जगह, पानी खूब पिए, पानी के साथ साथ आप फलों का जूस ले सकते हैं, ठीक है? तो इससे समस्या का निवारण होगा। घर में ही आपके अजवाइन होती है, मंगरैल होती है ना, मंगरैल मिल सकती है, अजवाइन मिल सकती है, उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला लें, तो इस तरह का जो है पाउडर बना के आप रख लें और सुबह शाम आप लें। पेट साफ रहना चाहिए, उसमें थोड़ा सा जीरा भी आप भून के मिला लें, तो पेट साफ रहेगा। और ये दर्द के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जो अजवाइन है, जो मंगरेल है, और जितने भी हमारी ये दर्द की जो अंदर के प्रोस्टाग्लैंडिंस कहते हैं उनको, वो चीजें हैं, तो उन पर काम करते हैं, तो उससे आपको आराम मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद
1: दिव्या जी, आरोग्य में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और पूछना चाहूंगी, ये जो सिस्ट की समस्या अगर हो जाती है तो क्या वो दवाओं से ठीक हो जाती है या फिर इसके लिए सर्जरी जरूरी है?
0: देखिए पहले आपको जांच करानी चाहिए, और
1: अच्छा।
0: ये जांच जो कराई जाती है वो अल्ट्रासाउंड है, वो अल्ट्रासाउंड पेट से भी कराया जा सकता है या योनि के रास्ते से भी होता है, तो उससे हमें छोटी और बड़ी गांठ का पता चल जाता है, या किसी भी तरह की गर्भाशय की या सिस्ट की कोई भी समस्या।

समस्या है, तो वो हमें पता चल जाती है। इसके साथ साथ एक CA125 यानी कि जो कैंसर के मार्कर्स होते हैं वो जरूर कराएं, ओवरी के, गर्भाशय के, वो जरूर कराएं। उससे हमें ये कम से कम सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये जो हमारी गांठ है ये कैंसर की तरफ नहीं जा रही है। तो अगर मैंने अभी बताया है कि 5 सेंटीमीटर तक की जो गांठें हैं वो अपने से भी ठीक हो जाती हैं, या कुछ दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, अपना खान पान ठीक करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, तो इस तरह से वो जो है वो समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन अगर 5 से ज्यादा की गांठ है, 5 सेंटीमीटर से वो गर्भाशय के अंदर है या फिर ओवरी के अंदर भी है, या उसमें कुछ और फ्लूड की जगह जो है ब्लड आ गया है, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार सर्जरी करनी पड़ती है।

0: ऐसी कंडीशंस में कई बार सर्जरी करनी पड़ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो ट्विस्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में तो वो इमरजेंसी क्रिएट कर देती है और उस इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, या फिर अगर वो संक्रमण के द्वारा है तो उस टाइम पर जो है कुछ दवाएं हैं हमारी, एंटीबायोटिक है या दर्द निवारक दवाएं दी जा सकती हैं। लेकिन घर की दवाएं भी आप घर में भी हमारे जो हैं जैसे अजवाइन है या फिर हमारे जो है पिपली होती है एक लंबी सी बड़ी सी होती है,
1: हाँ
0: जीरा है, ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकती हैं, तो दर्द में वो कम से कम राहत देंगी, थोड़ा बहुत सिकाई कर सकती हैं आप अपने पेट की, तो इस तरह से जो है समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन यदि वो बड़ी गांठ है तो वहां पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती ही है। आयुर्वेद में भी बहुत सारी, क्योंकि मैं आयुर्वेद से हूँ, तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उसको घोलने में सहायक होती हैं, लेकिन वो यही है कि वो डिजॉल्व तभी होगा जब वो 5 सेंटीमीटर तक का या 5 सेंटीमीटर से कम होगा, यदि उससे बड़ा जा रहा है तो तब आपको सर्जरी की ही आवश्यकता है।
1: डॉक्टर सुनीता जी, एक और सवाल आ रहा है मेरे मन में कि सिस्ट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
0: हाँ, सिस्ट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, क्योंकि ये हमारा हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन या फिर थायराइड के हार्मोन्स होते हैं T3 T4 TSH या फिर LH FSH जो कि अंडे बनाने में सहायक होते हैं, जो ओवुलेशन कराने में सहायक होते हैं, तो ये जो हार्मोन है ये हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब सिस्ट बनता है या अर्बुद बनता है, तो ऐसी कंडीशन में वो हार्मोन्स हमारे तभी हमारे संतुलित रह सकते हैं जब हम संतुलित आहार करेंगे, एक फ्रेश ताजा भोजन खाएंगे, बासी भोजन ना खाएं, और बाहर का जो खाना है जैसे जंक फूड है, मैंने अभी बताया फास्ट फूड है, ये सब नहीं खाना है, मैदा वाले जो हमारे पदार्थ हैं उससे बचना चाहिए, घर की ताजी सब्जियां, ताजा फल, ये सारी चीजें, अनाज है वो आप मल्टीग्रेन आप यूज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ना पिए, तो कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, तो ये सारी चीजों से आप पुनरावृत्ति जो है उसकी रोक सकते हैं। उसके साथ साथ आप व्यायाम करें, बहुत अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, व्यायाम करें, वॉक करें, थोड़ा सा तनाव रहित रहने के लिए स्ट्रेस, क्योंकि जब भी सिस्ट होता है कई बार PCOD की माना समस्या है तो शुगर बढ़ता है, तो बहुत मीठा ना खाएं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि मीठा खा रहे हैं तो उससे भी जो है वो कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सामान्य नहीं रहती है, तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखें। तनाव के लिए, तनाव तो देखिए बहुत ज्यादा खत्म नहीं किया जा सकता है यदि किसी चीज से, लेकिन उसका निवारण करें उस समस्या का, ये परेशानियां तो आएंगी लेकिन आपको स्ट्रांग होना चाहिए और उसका निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसके लिए म्यूजिक सुन सकती हैं, कोई ऐसी बुक्स पढ़ सकती हैं जो आपको अच्छी लगे, तो या कहीं बाहर अपना जो है प्रोग्राम बना सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस से पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है ताकि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस ना हो।
1: जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव जरूर कीजिए, लेकिन अपने स्वास्थ्य को देखते हुए। ये ना हो कि बदलाव अत्यधिक हो गया और उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एक फोन और आ रहा है, उसे भी देख लेते हैं।
0: जी
1: हेलो
2: हेलो,
1: हेलो जी, आरोग्यम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं और अपना नाम बताएं।
2: नमस्ते मैम, मैं झारखंड से बोल रही हूँ।
1: नमस्ते जी, आप अपना नाम बताएं।
2: मंजू कुमारी नाम है मेरा।
1: मंजू जी, आज का विषय आपको पता है? हाँ,
2: हाँ जी
1: तो डॉक्टर सुनीता सुमन जी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आप उनसे अपनी समस्या का समाधान पाएं।
0: हाँ बोलिए मंजू जी, नमस्कार।
2: जी नमस्ते, मुझे लगभग 7-8 सालों से सिस्ट है,
0: सात
2: तो
0: आठ सालों से
2: वो
0: तो
2: ग्रोथ
0: आपने कहीं
2: नहीं दे रहा
0: दिखाया
2: है।
0: नहीं?
2: हेलो,
0: हाँ, आपने कहीं दिखाया नहीं क्या?
2: नहीं दिखा ही रहे मैम, लगातार ट्रीटमेंट में है
0: जी
2: बट ग्रोथ बहुत स्लोली है और यूट्रस के आउटर वॉल में है।
0: नहीं, तो आप ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है?
2: 46 इयर्स मैम।
0: 46 है। यूट्रस के आउटर वॉल में है या फिर
2: जी
0: वो बच्चेदानी में, वो अंडाशय में है आपके, अंडेदानी में?
2: नहीं, आउटर वॉल में।
0: हाँ, आउटर वॉल में है तो वो सिस्ट नहीं होगा आपका, फाइब्रॉइड होगा मुझे
2: हाँ
0: लग
2: जी,
0: रहा है।
2: सॉरी मैम, फाइब्रॉइड है जी।
0: फाइब्रॉइड होगा क्योंकि आउटर वॉल में फाइब्रॉइड ज्यादा होता है। अगर
2: जी जी
0: देखिए जो कितना बड़ा है वो,
2: मैम, एक 2 है, एक 12 सेंटीमीटर का है और एक

0: 16 mm का है।
1: नहीं देखिए, आप 16 mm का तो बहुत छोटा सा है कि 1.6 सेंटीमीटर का, 1.5 सेंटीमीटर का,
0: जी
1: लेकिन यदि 12 सेंटीमीटर का है तो आप
0: जी
1: 7-8 साल से दवाइयां ले रही हैं, वो ख़त्म नहीं होगा। 12 सेंटीमीटर का जो बिल्कुल आउटर वॉल में होता है वो एकदम से ख़त्म नहीं होता है। आपने अपनी एज क्या बताई है?
0: 46 ईयर्स
1: हाँ, तो
0: मैम।
1: अगर 46 है तो अब तो महीना जाने का टाइम है, मीनोपॉज का
0: जी
1: टाइम है, तो आप इसके
0: जी
1: लिए ऑपरेट करा लीजिए, क्योंकि इसका जो है प्रेशर पड़ता रहेगा आपके पेट पे और ये हल्का हल्का दर्द हमेशा बना रहेगा, और इसे
0: मैम,
1: जो है
0: कभी कभी
1: हाँ
0: एबडोमन पार्ट भारी जैसा लगता
1: हाँ
0: ही है,
1: हाँ बिल्कुल
0: लेकिन ट्रीटमेंट
1: बिल्कुल भारी लगेगा।
0: जहाँ ले रहे हैं तो बोले कि
1: हाँ
0: अब तो प्री मेनोपॉज
1: तो
0: टाइम
1: हाँ,
0: है, तो
1: उन्होंने ये
0: जैसे
1: कहा
0: जैसे
1: होगा कि महीना जाएगा तो अपने से खत्म हो जाएगा,
0: हाँ जी जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आउटर वॉल का जो होता है वो बहुत कम खत्म होता है। अगर आपको
0: जी
1: बहुत ज्यादा समस्या है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी
0: जी
1: हीमोग्लोबिन पे असर डाल रहा है कि
0: जी
1: हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, तो आप उसको ऑपरेट करा लीजिए। अगर बिल्कुल भी समस्या नहीं है, बस थोड़ा बहुत हैवी है या भारीपन है, तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो कैंसर में तब्दील होगा। ये सारी
0: जी
1: चीजें इतनी जल्दी कैंसर में तब्दील नहीं होती हैं, बहुत कम
0: जी
1: रेयर चांसेज होते हैं कि 1,000-10,000 में से एक कोई कैंसर बन जाए, तो इसको
0: जी
1: पड़ा भी रहने दे सकते हैं अगर आपको कोई बहुत ज्यादा
0: हाँ,
1: समस्या
0: बहुत
1: नहीं है
0: समस्या
1: तो।
0: नहीं है मैम, एक समय
1: हाँ
0: समस्या थी, मतलब
1: हाँ
0: उसके बाद दवाइयाँ
1: हाँ
0: लेने के
1: लेकिन
0: बाद
1: फिर भी
0: ब्लीडिंग भी कम
1: मैं
0: हो गई
1: हाँ
0: और वो भारीपन भी कम हुआ, कुछ
1: हाँ
0: एक्सरसाइजेस
1: लेकिन
0: वगैरह भी
1: फिर मैं
0: करने
1: ये
0: को
1: कहना
0: मिल गई।
1: चाहूंगी कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फिर भी आप अपनी जांच कराते रहिए, हर
0: जी
1: तरह की जांच कराइए कि ये कैंसर वैंसर में तो तब्दील नहीं हो रहा है, या फिर
0: जी
1: इसका
0: जी
1: साइज तो नहीं बढ़ रहा है, या बहुत ज्यादा अगर कोई और समस्या हो तो फिर इसके
0: जी
1: निवारण के लिए आप आगे के बारे में जरूर सोचिएगा,
0: मैम,
1: इसको
0: ये डिसॉल्व
1: लापरवाही
0: नहीं
1: मत
0: हो जाएगा
1: करिएगा।
0: समय के साथ, ये डिसॉल्व नहीं हो
1: हाँ,
0: जाएगा।
1: हो सकता है डिजॉल्व, मैंने कहा ना कि जैसे ही मीनोपॉज होता है तो कई बार डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि नहीं होता है, मीनोपॉज हो जाता है, 1-2 साल तक आप मीनोपॉज के वेट करते हैं उसके बाद तक, और फिर भी
0: जी
1: नहीं हो रहा है और आपको कोई समस्याएं कर रहा है, तो आप अपनी जांच कराइए और उसके निवारण के लिए फिर अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलिए।
0: जी मैम, एक समस्या यही होती है ना कि वो पेट के नीचे के भाग से खींचना शुरू होता है, तो पैर पैर
1: हाँ,
0: तरफ से
1: थोड़ा
0: खींचना
1: पैरों में,
0: छिड़ाव आती
1: थाइज
0: है।
1: में, उसमें भी खिंचाव रहता होगा। हाँ, तो उसके लिए यही है कि फिर आप मेडिसिन लेते रहिए, ठीक है।
0: मैम, कौन सी मेडिसिन सेफ होगी? जी
1: मेडिसिन तो देखिए वो आप अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलिए, वही आपको
0: जी
1: देंगे, वही ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरह
0: जी
1: से फोन कॉल से जब तक आप स्थिति ना देखें तो कोई भी दवा नहीं बताई जा सकती है, और
0: जी
1: अपने
0: जी
1: से
0: जी
1: लेनी
0: मैम,
1: भी नहीं चाहिए कोई दवा।
0: जी जी जरूर। ओके
1: जी
0: मैम, थैंक यू,
1: जी
0: बहुत बहुत
1: हाँ ठीक है,
0: धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद धन्यवाद मंजू जी, आपने फोन किया और अपनी समस्या का समाधान पाया।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
1: डॉक्टर साहब, समय की कमी है, लेकिन आज आपने सिस्ट जैसी जटिल समस्या को इतनी सरलता से समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मनोज जी।
1: और श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की जो चर्चा हुई है हमारे बीच, उससे आपको बहुत मदद मिली होगी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे आरोग्यम के एक नए विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। कार्यक्रम में आज का विषय था गर्भाशय में सिस्ट की समस्या और इलाज। विशेषज्ञ थी डॉक्टर सुनीता सुमन। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, आज की प्रस्तुति अरुण पांडेय की।

0: इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का।
1: एक्सक्यूज मी,
2: हाँ बोलना।
3: क्यूट है ना?
0: और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार।
4: सलाम।
5: hey, hey.

0: आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से।
1: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
2: हेलो
1: जी नमस्ते।
2: नमस्ते सर। बहुत ही दिन के बाद आज कॉल लगा है मैं।
1: तो हमें भी इंतजार रहता आप जैसे श्रोताओं का जो बड़ी मेहनत से फोन लगाते हैं और इंतजार करते हैं। नाम क्या है आपका?
2: जी चंचल नाम है।
1: चंचल प्रयागराज से। हमारी आपसे पहले बात हुई है एक आध बार।
2: जी सर।
1: आपकी आवाज बता रही है कि हमारा आपका राबता है पहले का।
2: साल भर पहले बात हुई थी।
1: तो अभी कैसे हैं? साल भर में क्या क्या किया
2: सर? पहले तो हर 2 महीने तो कॉल किए हैं।
1: जी।
2: और उसके साथ साथ अपने घर का ख्याल, बच्चे का ख्याल।
1: जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। और फोन कॉल और प्रोग्राम सुनना ये तो साथ में चलते रहता है
2: सर। रेडियो तो मेरा सारा दिन चलता है।
1: जी, और खास तौर से क्या क्या प्रोग्राम सुनती हैं? और इतने दिन मेहनत की आपने और फोन साल भर बाद लगा है
2: सर। हाँ, सुबह 9:30 बजे आता है प्रोग्राम। मतलब कि वो सर उनका नाम, मेरे हम इतने खुशी ना कि मेरे नाम ही 9:30 बजे आता है। उनकी यादों 10 बजे यादें उनकी 10 बजे आता है।
1: जी
2: नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है।
1: आप अच्छा बोलती हैं, आपको लगता है कि सुनते ही रहें, इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
2: सर ऐसा तो नहीं है।
1: नहीं, सच में हम कह रहे हैं, हंसने पे नहीं जाना है कि हंसना माने ये नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। यानी विश्वास कर लिया आपने। जी, अब बताएं कि क्या हॉबीज हैं आपकी या फिर बच्चों की देख रेख, घर परिवार के अलावा समय नहीं मिलता और रेडियो चलता रहता है।
2: हॉबी तो सबसे पहले यही है कि गाना सुनना बहुत ही पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं।
1: हाँ, तो वो जो थोड़ा बहुत है उसका आपको नमूना यानी सैंपल पेश करना है। अगर भीड़ भाड़ न हो और आप हमें कुछ सुना सकें तो आपकी आवाज हमारे श्रोता सुनना पसंद करेंगे।

0: सच में अच्छा गाती हैं। चंचल आपने नाम बताया अपना।
1: जी सर।
0: आवाज अच्छी है। कभी अच्छा स्कूल कॉलेज में जब आप पढ़ती होंगी तो प्रोग्राम में भाग लेती होंगी।
1: जी सर।
0: और प्रॉपर सीखा तो नहीं है ना?
1: नहीं सर, सीखे नहीं है। रेडियो में गाना बहुत चाहते थे, पर बात भी किए थे, पर सर ने बोला कि ये फिल्मी गाने आप नहीं गा सकते।
0: हाँ, हम लोग के यहाँ दरअसल सुगम संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत ये सब होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है।
1: ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है, उसके साथ साथ उन सब गानों का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो फिल्मी गाना ज्यादा सुने हैं तो थोड़ा उनका मतलब ऐसे ही घर में गाते गाते थोड़ा रियाज।
0: हाँ, ये है कि चलिए इस तरह के जब प्रोग्राम में फोन इन वगैरह में जब फोन लग जाता है तब आपको अपनी आवाज का जो दिखाने का अवसर प्रतिभा मिल जाता है।
1: मेरे लिए इतना ही बहुत है सर।
0: जी, और यूं ही साथ जुड़े रहे आपका हमारे प्रोग्राम में। अब कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
1: आपकी सजन सावन में।
0: ये फिल्म है चुपके चुपके क्या? हाँ, आपके सजन सावन में, चुपके चुपके फिल्म का ही गीत है। सचिन देव बर्मन संगीतकार हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं। गीत आपको सुनवा रहे हैं चंचल जी। बहुत अच्छा लगा, यूं ही आप चंचल रहें, खुश रहें और कार्यक्रमों से जुड़े रहें। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
0: जय काशी विश्वनाथ। नाम बताइए अपना और गाड़ी पटरी पे आ गए। शुरुआत में ही तो लगा कि हम लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं और लेकिन मामला नहीं बन रहा। थोड़ी सी फोन लाइन में भी खराबी आती है और थोड़ी सी जैसे दोनों ओर ये रहता है कि बातचीत सही तरीके से शुरू हो जाए।
1: चलिए, बहुत खुशी की बात है कि मेरा कॉल लग गया है। जय बाबा विश्वनाथ के कृपा से। मैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता राजनगर मधुबनी बिहार से बोल रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया कुशेश्वर जी, आपसे बातचीत हमारी है पहले से ऐसा लग रहा है।
1: नहीं, पहली बार है। पत्र के माध्यम से तो है।
0: जी जी यानी आप मेल या पत्र आपके आते हैं।
1: जी जी
0: क्योंकि आपका नाम सुना हुआ लग रहा है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं?
1: मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, 76 साल हूँ।
0: जी जी वही हमने कहा कि हमें लग रहा आपकी आवाज भी सुनी हुई लग रही और आपकी बातें भी, और मधुबनी से आपका नाम हमने सुना है पहले भी प्रोग्राम वगैरह में।
1: और मैं हाल ही में गया था, फरवरी में भी तीसरी बार गया था काशी विश्वनाथ के दर्शन करने।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: हाँ, अरुण कुमार दर्द जी से भी।

0: बातचीत हुई रेडियो कॉल पे।
1: यानी आप आकाशवाणी के विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
0: जी जी सर, मैं 1968 से सुनी है, जब क्लास 8 में मैं पढ़ रहा था तभी से मैं रेडियो के।
1: जी जी, और वो समय तो हम लोगों ने दुनिया देखी ही नहीं थी, उस समय की बात है। लेकिन रेडियो में हम लोग के देखते देखते भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक वक्त था जब 80 के दशक में टेलीविजन जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और हम लोग घर से स्कूल कॉलेज जाते हुए कमेंट्री पर ही क्रिकेट का आनंद लिया करते थे, पूछते पूछते दुकानों में, और चेहरे या फिर अखबार और पत्र पत्रिकाएं भी उतनी नहीं थी, लोग पहचान नहीं पाते थे कि खिलाड़ी कौन है और बोलने वाला कौन है। लेकिन अब जमाना इंटरनेट का आ गया, हर कोई हर किसी को देख पा रहा है, सुन पा रहा है।
0: जी, पहले हम लोग कमेंट्री देखते थे, रेडियो पर सुनते थे।
1: जी जी,
0: इसके बाद है टीवी पर आने लगा, फिर मोबाइल पर आने लगा।
1: जी जी जी, हर चीज आज के समय में तो हाथ में, मुट्ठी में, यानी मोबाइल में सिमट कर रह गई है।
0: और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आकाशवाणी से मिलता हूँ, और वहाँ के लिसनर से मैं मिलता हूँ।
1: जी जी,
0: मैं अपना भी शेयर करता हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातें करके। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
0: मेरा गाना है, फर्ज का गाना है, हम तो तेरे आशिक है,
1: सदियों पुराने। जी जी जी,
0: मैं कुछ अपने दोस्तों को नाम ले सकता हूँ?
1: जी बताएं।
0: ये आजन कुमार सिंह जी है, जी मुश्ताक सुलेमानी साहब है, मदना सिंह है, अरुण कुमार
1: मालवी। तो ये सभी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। मुश्ताक जी से तो एक अरसे हो गए बात नहीं हुई, लेकिन हमारे बड़े वरिष्ठतम हमारे श्रोता हैं मुश्ताक सुलेमानी, और बाकी श्रोताओं का भी आपने जिक्र किया, ये सब भी हमारे कई दशक से आकाशवाणी वाराणसी केंद्र के श्रोता हैं।
0: इनके पिताजी पहले थे भुवन प्रसाद मालवीय जी।
1: जी जी, तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है फर्ज। अच्छा लगा आपसे बातें करके, नमस्कार।
0: बात हुई कि आपने मेरा कॉल
1: जी, नमस्कार, शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: सर, मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव जिला जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: परमेश्वर शिंदे जी।
1: हाँ जी परमेश्वर शिंदे,
0: स्वागत है प्रोग्राम में आपका। तो आपके यहाँ जालना में मौसम कैसा है अभी? हमारे यहाँ बारिश शुरू नहीं हुई है
1: सर जी। हमारे जालना में अभी मौसम तो अभी बिल्कुल साफ है, अभी तो कई कई अभी कई कई गांव में रात में बारिश हुई थी और कई कई थी कई कई गांव में नहीं हुई थी।
0: जी जी
1: अभी
0: जी।
1: तो हमारे यहाँ तो सोयाबीन की बुआई कपास की बुआई होने वाली है।
0: वो इलाका है जहाँ उधर में कपास सोयाबीन इस तरह की नकदी और बड़ी मकबूल फसलें होती हैं। तो जी, और उधर के ही उत्पाद हम लोग के यहाँ सोयाबीन के तमाम चीज, अब तो सोयाबीन के तेल, रिफाइंड ऑयल और उसके जो चंक्स होते हैं बढ़िया होती हैं, वो पूरे देश दुनिया में मशहूर हो गई हैं। एक समय ये सोयाबीन हम लोगों ने देखा है बचपन में शुरू होते हुए।
1: अभी हमारे जिले में अभी तो मौसम्बी का अभी तो उत्पन्न भी ज्यादा होता है, अभी रेशम का भी होता है, हम लोग कोक बनाते हैं।
0: और रेडियो से जुड़ाव कितना पुराना है आपका?
1: सर जी मेरा रेडियो का पुराना तो बहुत पुराना है, अभी 1984 से हम रेडियो सुनते हैं। अभी
0: जी
1: तो पहले तो अभी तो रेडियो पे सुनते हैं, अभी तो मोबाइल ऐप से आया तो हम दूर दूर से केंद्र सुनते हैं।
0: जी जी। और आज इस केंद्र से किस गाने की फरमाइश आपने करनी है?
1: सर जी आज फरमाइश है, फिल्म का नाम है सलामी। मिले तुम से भी चढ़ के
0: जी बिल्कुल,
1: हमने,
0: अलका याग्निक, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। कुछ और आप कह रहे थे?
1: ये गीत सुना
0: जी, तो गीत जी,
1: ये गीत सुनने के लिए हमारे परिवार के लोग हैं सर जी।
0: जी
1: कावेरी शिंदे है, प्रहलाद शिंदे है, वैष्णवी शिंदे और स्वाति शिंदे है।
0: गीत आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।

0: कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं रईस खान अंबे वाली फूली नगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी अंबे वाली महाराष्ट्र के हमारे यहाँ बड़े रईस जी नियमित श्रोता हैं, और इस मामले में भी आप रईस हैं कि आपका फोन लग भी जाता है, वरना बहुत सारे श्रोताओं के हाथ में तो शिकायत ही रहती है।
1: आखिरी कॉल होगा,
0: बस एक दो और हैं बस। हाँ तो लेकिन ये कि इतने समय से आप प्रयास करते हैं, तो श्रोताओं को ये समझना है कि अगर लगातार प्रयास दो चार मिनट के अंतर पे किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है।
1: और कहते हैं आप लोग,
0: हम लोग अच्छे से हैं, आप जैसे श्रोताओं का साथ बना रहता है तो आत्मविश्वास भी बना रहता है।
1: पिछले हफ्ते ही बोला था मैंने सर बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही है।
0: और हम लोगों को तो इंतजार है, उम्मीद है ये प्रोग्राम जब प्रसारित होगा तब तक तो बारिश हो जानी चाहिए,
1: इंशाल्लाह जरूर होगी।
0: और बताएं, रेडियो से तो आपका जुड़ाव पुराना है
1: जी जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: हाँ तो आया सावन झूमकर का टाइटल सॉन्ग सुनाएंगे
0: जी। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी हैं। तो गीत सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, रहस्य।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: सासाराम से बोल।
0: सासाराम से हमारे कौन से श्रोता हैं?
1: अविनाश कुमार, आपसे बात हुई
0: है? अविनाश कुमार जी, हाँ हमसे बात हुई, वो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी आवाज अच्छी रिकॉर्डिंग हो ताकि आप और श्रोता सुने तो उन्हें अच्छा लगे।
1: हाँ सर,
0: तो अविनाश जी
1: हाँ सर, अभी तो आ रही है?
0: अभी ठीक ठाक है, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है सर, इधर तो गर्मी है, अब तो बारिश बारिश हल्का फुल्का लग रहा है।
0: हाँ, यानी सासाराम और बनारस का मौसम लगभग एक सा है और बारिश का इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं।
1: हाँ सर, यहाँ पे भी वही बात है।
0: जी जी और आपका तो कुछ कामकाज अलग तरह का है।
1: हाँ सर, तैयारी में चल रहा है।
0: जी जी और तैयारी में रेडियो का साथ रहता होगा क्योंकि हमारे यहाँ से जो समाचार वगैरह हैं, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, वो काम आती हैं।
1: हाँ सर, वो भी है। और आपका सर ये हेलो फरमाइश सुन लेते हैं।
0: जी बिल्कुल, मनोरंजन भी जरूरी है जीवन में, जितनी भी पढ़ाई लिखाई की जाए उसके साथ थोड़ा सा परिवर्तन के लिए इसका साथ बना रहे, और रेडियो तो बड़ा उपयोगी है तैयारियों में भी।
1: ये तो है।
0: कौन सा गीत आज सुनवाए अविनाश जी आपको?
1: सर फिल्म चाहत का है, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं।

श्याम सुरिंदर का संगीत है और जमीर काजमी ने गीत के बोल लिखे हैं। दिल की तन्हाई को कुमार सानू की आवाज है। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।

तारों में चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है, इसी का कल

0: जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सर जी पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे, साधुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ बात कर रहा हूँ।
0: हाँ रामकुमार रेवाड़ जी, आपके नाम तो आते हैं, बहुत पुराना ताल्लुक है आपका कार्यक्रमों के सिलसिले में, लेकिन बातचीत आपने पहली बार की है
1: जी सर।
0: यानी अरसे से प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रेरणा मिली आपको कहीं से?
1: बिल्कुल, प्रेरणा सोशल मीडिया से मिली है कि आपसे बात करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत प्यार बांटते हो श्रोताओं से।
0: जी जी, ये तो आप लोगों का इनायत है, आप लोगों का लगाव है, और खासतौर से रेडियो जो माध्यम है ये तो प्यार बांटने का ही काम करता है वर्षों से।
1: सर रेडियो तो हमारी रूह की खुराक है, बचपन से लेके अभी तक लगभग 50 साल क्रॉस हो चुका है रेडियो के साथ जुड़े हुए।
0: वाह,
1: और रेडियो के बगैर तो जीवन अधूरा सा लगता है।
0: जी जी, हालांकि इन दिनों बड़े परिवर्तन आए हैं और पहले की तरह के ब्रॉडकास्टर या वो चीजें थोड़ी सी समय के साथ साथ समाज के हर इलाके की तरह इस फील्ड में भी परिवर्तन आया है, लेकिन रेडियो से जो आप जैसे पुराने श्रोता हैं या हमारी पीढ़ी जो हम लोग रेडियो सुनते सुनते ही बड़े हुए, दूसरे माध्यम नहीं थे, तो इस माध्यम को लेकर के हम लोग का लगाव, हम लोगों की चाहत दूसरे तरह की है।
1: सर बिल्कुल, ये बात तो आपकी वाजिब है, लेकिन रेडियो से बढ़िया मैं कोई चीज मानता नहीं हूँ। रेडियो हमारा गुरु है, रेडियो हमारी प्रेरणा है।
0: जी जी, और जो भी लोग हमारे बीच हैं सबकी जिम्मेदारी है कि रेडियो की ये जो संस्कृति है और इसकी परंपरा है उसका निर्वाह हो, क्योंकि लाखों की तादाद में देश दुनिया में श्रोता हैं जो आकाशवाणी और विविध भारती को उसी शिद्दत के साथ, उसी लगाव के साथ सुनते हैं जैसा वर्षों पहले सुनते थे।
1: बिल्कुल। सर एक छोटा सा ये सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आवाज भी बहुत मीठी है और आपके साथ तो श्रोता जुड़े हुए वो बहुत अच्छे हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी युवा पीढ़ी को भी रेडियो के साथ जुड़ाव जरूरी हो गया है।
0: जी बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, और आपने अच्छी बात उठाई कि देखिए हम सब बोलने के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, देश दुनिया की खबरों के बारे में, रेडियो वो माध्यम है जहां आपको कुछ आप कर रहे हैं घर के कामकाज और कुछ भी दैनंदिन दिनचर्या कर रहे हैं, रेडियो अगर चालू है तो उसमें आपको सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान, विचार की बातें अपने आप मिलते रहती हैं।
1: बिल्कुल सर, रेडियो तो एक ऐसी खुराक है।

0: हम भोजन करते हैं, देसी भोजन करते हैं घर का,
1: जी जी
0: वो चीज है, हमें अच्छी सीख मिलती है, अच्छी प्रेरणा मिलती है रेडियो से, तो रेडियो सुनना बहुत ही आवश्यक है।
1: बिल्कुल, परिवार पहली पाठशाला है, तो उस पाठशाला का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा ये रेडियो है, जो घर में अगर बजते रहे तो पीढ़ियां अपने आप बहुत सारी चीजें सीखती चली जाती हैं। आज की इस गाने की फरमाइश है आपकी।
0: सर फिल्म का नाम है हमराज, तुम मगर साथ देने का वादा करो।
1: जी बिल्कुल,
0: हमराज फिल्म का गीत है, ये बहुत ही खूबसूरत गीत है महेंद्र कपूर जी की आवाज में,
1: और ये बड़ा मशहूर गीत है। और रवि का संगीत, साहिल लुधियानवी बड़े मशहूर शायर हुए और उन्होंने एक से एक गाने दिए, उनके ही बोल हैं, और बड़ा हिम्मत जुटाने वाला है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे, फिर आपसे बातें होंगी तो और भी विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया।
0: शुभकामना देना चाहता हूँ क्योंकि आप तो श्रोताओं के साथ जुड़ाव रखते हैं, बहुत ही प्यार बांटते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे एक श्रोता है सर, बहुत पुराने श्रोता है, सतीश श्रीवास्तव जी राजस्थान से,
1: जी जी
0: वो भी आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको भी ये गीत उनके नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ, और मेरी वाइफ चंद्रकला रिवार जी भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उनके नाम भी ये डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: जी तुम अगर साथ देने का वादा करो, हमारा आपका साथ यूं ही बना रहे, हमराज फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

0: कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
1: अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से।
0: बहुत बढ़िया। हर बार जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो रामपुर की आवाज किसी न किसी हमारे श्रोता के जरिए हम तक पहुंच जाती है। ये बनारस और रामपुर का जो लगाव है ये यूं ही बना रहे, हम तो यही चाहते हैं।
1: जी सर बिल्कुल ठीक है, आपके केंद्र के प्रोग्राम सभी सुनता रहता हूँ मोबाइल ऐप के जरिए और काफी अच्छे लगते हैं।
0: जी हमें भी खुशी होती है कि आप जैसे श्रोता लगातार वर्षों से हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। और रामपुर में तो बारिश की आमद हो चुकी होगी
1: सर। हाँ कल भी बारिश हुई थी और इस समय मैं बात कर रहा हूँ आज से, अभी बारिश गिर रही है।
0: बारिश होती है शुरुआत में खास तौर से तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को तो इंतजार है। हमारे इस इलाके में अभी बारिश शुरू नहीं हुई है
1: जी।
0: और कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको?
1: जी प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैं, सारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और जो व्हाट्सएप पे आधारित प्रोग्राम आता है सर वो भी काफी अच्छा लगता है और हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल होते हैं तो सर काफी अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे यहाँ जो वो FM विविध भारती पर प्रोग्राम है, आकाशवाणी वाराणसी का जो विविध भारती चैनल है उस पर सुबह और शाम आपको ऐसे प्रोग्राम है वाराणसी वाइब्स और बनारस बीट्स की तरह से जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं।
1: बिल्कुल सर,
0: तो सभी कार्यक्रमों से श्रोता हमारे जुड़े रहें और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
1: जी मैं गीत सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है जान और इसमें गीत के बोले जान गई दिल आया शीशा पत्थर से टकराया।
0: गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।

तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आती है तो आप 222-1050 पर भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक जो हमारा नंबर है वो 222-1052 है। तो दोनों ही नंबर नोट रखें और जिसमें भी आपका फोन लग जाए हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, उसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे तक और रविवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार, शुक्रिया।

श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं अगर अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप बुधवार को सुबह में 10:10 से 10:50 तक फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। कभी कभी 52 नंबर

ये था कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। तो हम आपको बता दें कि आज दिन में 1:15 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद, और 1:35 से होगा कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आप अपनी फरमाइशें लोकगीतों के लिए भेज सकते हैं।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने को है अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था।

0: जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 1:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। पहले सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार रानी, पति का नाम राजदेव, ये बलियरी म्योरपुर सोनभद्र की निवासी हैं और 24 फरवरी 2026 को दिन में 3 बजे से अपने घर से पास डूभा बाजार से लापता हैं। रानी की आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट के करीब, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था लाल रंग की समीज। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर से प्राप्त एक सूचना, इसके अनुसार अबू बैश, पिता का नाम साहबुद्दीन, ये खुटहा आहरौरा मिर्जापुर के निवासी हैं और 20 मार्च 2026 को दिन में 12 बजे से खुटहा से लापता हैं। अबू बैश की आयु 22 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंग गोरा, मजबूत शरीर, चेहरा लंबा है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था कुर्ता और लोअर। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्जापुर को सूचित करें। संबोध, पिता का नाम हरदेव, ये गढ़मा घोरावल सोनभद्र के निवासी हैं और 27 अप्रैल 2024 से देवगढ़ से लापता हैं।

0: संबोध की आयु 23 वर्ष, कद 165 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा है, आंखें और बाल काले हैं। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था चीटदार शर्ट और पैंट। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र को सूचना दें। संगम उर्फ चंचला, पिता का नाम नंदू, ये खेतकटवा कोन सोनभद्र की निवासी हैं और 19 फरवरी 2026 को दिन में 11 बजे से खेतकटवा टोला लोहवे सोनभद्र से लापता हैं। संगम उर्फ चंचला की आयु 25 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, शरीर मध्यम, चेहरा गोल है। आखिरी बार जब इन्हें देखा गया तो इनका पहनावा था हल्के पीले रंग की साड़ी। इनके बारे में कोई जानकारी आपको मिले तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं और अब जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। आज शाम 7:31 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। इसे हम दिल्ली केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे। समय याद रखें शाम 7:31 से। कृषिगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बातचीत इस मौसम के आहार विहार। डॉक्टर बी राम से बातचीत की है सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने। युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर आज के आकर्षण है आज की बात युवाणी गांव से यूथ डायरी में आज के शब्द विश्व घटना चक्र रोजगार सूचना और फिल्म संगीत। बाल गोपाल कार्यक्रम होगा शाम 5:00। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 1:35 पर और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम होगा 1:15 पर। इसमें श्रोताओं के ईमेल के साथ होंगे अरुण पांडे और सना सलीम। श्रोताओं हम आपको याद दिला दें आज शाम 7:31 से आप सुन सकते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में 1:10 पर इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से रिले की जाएंगी।
1: आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में हिंदुस्तान की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अज़्म और मुसलसल कोशिशों के जरिए उसने 21वीं सदी के सबसे बड़े तवानाई के बहरान पर कामयाबी से काबू पा लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हर सतह पर बरवक्त फैसले किए, उभरते हुए बहरान का दुरुस्त अंदाजा लगाया, एक मौसर हिकमत अमली बनाई और मुल्की वसायल के मुतवाजन इस्तेमाल को यकीनी बनाया। वजीर आजम ने यह भी कहा कि सिफारतकारी और तजवीराती इकदाम के जरिए मुल्क ने इस बहरान से कामयाबी से निपटा।
2: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट नितिन नवीन कल पहली बार 2 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे। कौमी सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर में रियासती एग्जीक्यूटिव अहदेदारों और जिला सुदूर के साथ एक अहम मीटिंग की।

0: आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी भी मीटिंग में मौजूद थे। इसके अलावा उन्होंने वजीर आला, नायब वजीर आला, बीजेपी के अरकीन पार्लियामेंट और MLC से भी मुलाकातें की। कल लखनऊ के अपने दौरे के दौरान जनाब नवीन ने हनुमान सेतु मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दरबार में अपना सर झुकाकर मुल्क और रियासत के लोगों की खुशी, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। लखनऊ के अपने दो रोजा दौरे के दौरान कौमी सदर जनाब नितिन नवीन ने रियासती सदर पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में बीजेपी उत्तर प्रदेश के साबिक सुदूर की मीटिंग में भी शिरकत की और रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम श्री धर्मपाल कौमी सदर आज मुख्तलिफ अवामी तकरीबात में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल ने अवामी अहमियत की अराजी से मुतल्लिक मुकदमात के जल्द और मेयारी निपटाने को यकीनी बनाने के लिए एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत रिजर्व कैटेगरी की जमीन, सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन, नजूल अराजी, खाली होने वाली जायदाद और दुश्मन की जायदाद से मुतल्लिक तमाम मुकदमात की समाअत अब 3 रुकनी खसूसी बेंच करेगी। इस इंतजाम को फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश रेवेन्यू काउंसिल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून इजलास बुलाने की हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मिस्टर रिजिजू ने कहा कि सेशन में कौमी अहमियत के मसाइल पर बामानी बहस और फैसला साजी पर तवज्जो दी जाएगी। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा इस साल भी बड़े जोश के साथ शुरू हुई। यात्रा के पहले 2 दिनों के दौरान 32,313 जायरीन ने मुकद्दस गार की जियारत की। दरियसना सालाना यात्रा के लिए यात्रियों का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान रवाना हुआ। रियासत के कई इजला में मरतूब गर्मी पड़ रही है, जिससे मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इधर लखनऊ समेत कुछ इजला में बारिश होने से शदीद गर्मी से राहत मिली है। कानपुर और टूंडला में कल की मूसलाधार बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं के ईमेल के साथ हैं अरुण पांडे और सना सलीम।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, हमारे साथ हैं सना सलीम जी, और वो आ गई हैं, लेकिन मानसून नहीं आया। सना जी, आपको भी नमस्कार हमारी
1: जी। अरुण जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और मैं बोलने वाली थी कि जुलाई तो आ गई, लेकिन बारिश नहीं लाई। हल्की फुल्की लाई है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो बनी हुई है अभी।
0: हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो बारिश आए, हम लोग यही उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि बारिश अच्छी हो, ताकि थोड़ा सा तबीयत ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि गर्मी और उमस से हर कोई परेशान है।
1: बिल्कुल। लेकिन हम जो है अब अपनी नजर घुमाते हैं मेल्स पर, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे श्रोताओं ने बड़ी मशक्कत से लिखा है मेल। तो ये पहला मेल जो है जम्मू कश्मीर जिला डोडा से हमें मिला है, पुरुषोत्तम कुमार चाडक, गांव डंडी, तहसील भद्रवा। लिखते हैं कि माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी

0: माया जोड़ी जोड़ भरेला थेला, कहत कबीर सुनो भाई साहब साधो, संग चले ना धेला।
1: ये हमें लग रहा है कि अभी कबीर साहब की जयंती भी थी, तो इस वजह से बड़ा सामयिक है इनका मेल। और संत कबीर दास जिनका प्राकट्य ही वाराणसी में हुआ था, और
0: 29 जून को उनकी जयंती थी जी,
1: तो उनके बहुत सारी बातें आज भी समसामयिक हैं और श्रोता उन्हें याद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ऐसे जो महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, विभूतियां हुई हैं, उनकी बातें सदैव जीवन में अमल लाने लायक होती हैं।
0: जी, उड़ जाएगा हंस अकेला जग दो दिन का मेला। अरुण पांडे और सना सलीम की प्रस्तुति में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। आपके केंद्र से युववाणी कार्यक्रम का हम भरपूर आनंद लेते हैं। हम पत्र भेजने वालों में से हैं और आकाशवाणी ही मेरी जिंद जान है। मैं आकाशवाणी में पत्र भेजना और अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे।
1: हाँ, यानी जिंदगी और जान इनका आकाशवाणी के कार्यक्रम है। हमें याद है आपके शुरुआत में मेल पर भी आपके खत ही आए थे जो आपने तस्वीर लेकर के भेजी थी, लेकिन इन दिनों आप मेल भेज रहे हैं, ये अच्छी बात है। शुरुआत में जब सना जी ने कहा कि बड़ी मशक्कत से लिखा है तो हमें लगा आपने खुद से कविताएं लिखी हैं, लेकिन आपने कबीर साहब के पद का उल्लेख किया और अच्छी प्रोग्राम की शुरुआत हुई। आइंदा प्रोग्राम में जब आप मेल भेजें तो बाकी कार्यक्रमों का भी जिक्र आप करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं
0: जी। अगला ये मेल हम शामिल कर रहे हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम डीटीएच पर सुनते हैं। दिनांक 13 मई 2026 दिन बुधवार का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में काशी कथा गुघरानी गली के बारे में प्रेजेंटर आशुतोष जी द्वारा दी गई जानकारी बेहद लाजवाब लगी।
1: काशी तो गलियों के लिए मशहूर है और बहुत सारी गलियां हैं जिनके नाम अभी बहुत हाल में चूहा गली, हाथी गली, ऐसी गलियों का भी नाम आया, नारियल गली, तो बहुत सारी गलियां हैं। और गलियां इतनी हैं कि हमारा ये कार्यक्रम जो गुड मॉर्निंग का है उसमें रोज एक गली के बारे में बात बताई जाए तो भी वर्षों ये सिलसिला चल सकता है। डीटीएच की बात आपने अच्छी लिखी। बहुत सारे श्रोता जो ऐप पर सुनते हैं, कई बार इंटरनेट के चलते प्रोग्राम सही नहीं मिलता, तो जिन भी श्रोताओं के यहाँ डीटीएच है हम यही कहेंगे कि डीटीएच पर क्वालिटी अच्छी आती है और उस पर प्राथमिकता दें, प्रयास करें कि डीटीएच अगर उपलब्ध है तो उस पर आप कार्यक्रम हमारे सुने, वहाँ गुणवत्ता अच्छी मिलती है।
0: आगे लिखते हैं कि 22 जून का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में विषय के अंतर्गत उपहार में अहंकार ना दें पर दी गई जानकारी अच्छी लगी। साथ ही बात जरूरत की सेगमेंट में बच्चों के फेसबुक इंस्टाग्राम पर रखे नजर, विषय पर दी गई जानकारी बहुत लाभदायक लगी। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए आरजे सना को हार्दिक बधाई।
1: तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि पुरस्कार में अहंकार कैसे दे सकते हैं, अच्छा कुछ ऐसी चीज दी जाए जिसमें दिखावे वाली बात हो, ये इनका आशय है
0: जी। तो आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा और बाकी कार्यक्रम भी अच्छे लगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: अगला मेल है सूर्यभान सिंह का भिसुंदरी गुरावल सोनभद्र से, लिखते हैं पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले आप दोनों लोगों को सूर्यभान सिंह का नमस्कार। 7 मई को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर भोलानाथ मौर्य से पीलिया रोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर एक बहुत अच्छी जानकारी की बात मिली कि पीलिया एक लक्षण है ना कि बीमारी। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में सना जी ने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो को नाम आकाशवाणी रविंद्रनाथ टैगोर ने आज के दिन दिया था। और सना जी का महत्वपूर्ण सेगमेंट बात जरूरत की में उन्होंने तकिया का चुनाव कैसे करें, किन लोगों को तकिया लगाना चाहिए किन को नहीं लगाना चाहिए, इस पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई। 8 मई को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में शैलेश जी ने विश्व रेड क्रॉस दिवस पर चर्चा की और विश्व थैलेसीमिया दिवस पर उन्होंने जानकारी दी। रांझणा फिल्म के गाने बनारसिया के साथ कार्यक्रम समाप्त किया। शैलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये दोनों ही कार्यक्रम सना जी का प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें, खासतौर से तकिया के बारे में एक बार और मेल आया था कि तकिया के बारे में बड़ी उपयोगी जानकारी दी गई, तो हमने तो तकिया कलाम सुना था लेकिन तकिया पर प्रोग्राम हो गया।
0: ये पिलो वाली तकिया है।
1: श्रोताओं ने इसे पसंद किया जरूर। तकिया कैसे, क्यों और कब लगाएं, इसकी जानकारी उन्हें सना जी ने दी है। और शैलेश जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, उन तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है।
0: जी आगे लिखते हैं कि 9 मई को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में बनारसी बाबू ने अपने महत्वपूर्ण सेगमेंट काशी कथा में बनारस की चूहा गली के बारे में बताया। चूहा गली हाथी गली के बगल में है। बनारस में गलियों के ऐसे ऐसे नाम हैं, ये मुझे पहली बार जानने को मिला।
1: चूंकि गलियां इतनी ज्यादा है ना कि नाम कम पड़ जाते हैं तो इस वजह से हमें लग रहा है कि प्राचीन काल से ही गलियों के नाम ये पड़े हुए हैं और वो प्रचलन में संस्कृत

0: का एक हिस्सा बन गए हैं। बनारस तो गलियों के लिए मशहूर है, हालांकि इन दिनों विकास के बहुत सारे काम हुए हैं। देश दुनिया से तीर्थयात्री पर्यटक इन्हीं गलियों की सैर को आते हैं।
1: जी, आगे लिखते हैं कि रविवार को पुनः प्रसारित आरोग्यम कार्यक्रम में ऑस्टियोपोरोसिस विषय पर डॉक्टर उमेश चतुर्वेदी से आकांक्षा जी और श्रोताओं की बातचीत सुनने को मिली। इसी दिन हेलो फोन इन फरमाइश और लोक रंग कार्यक्रम अरुण सर लेकर आए। फोन इन फरमाइश कार्यक्रम का शुरुआती फरमाइशी गीत उत्तराखंड के श्रोता की राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत हुस्न पहाड़ों का और अंतिम फरमाइश गीत राजेंद्र जी का छैला बाबू तो कितना दिलदार निकला। ये दोनों गीत मुझे पसंद आए।
0: तो बहुत अच्छा कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए, और खासतौर से हेलो फरमाइश का आपने जिक्र किया और जिन गानों का जिक्र किया, और आप याद रखते हैं, यानी बहुत ही तबीयत से आप प्रोग्राम सुनते हैं।
1: जी, और प्रेजेंटर्स के साथ साथ ही श्रोताओं के भी नाम याद रखते हैं। एक श्रोता पूनम जी की आवाज बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बताया कि वो भी आरजे का काम करती हैं।
0: आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, ऐप हैं और फेसबुक पेजेस हैं, जहां पर हमारे श्रोताओं में से भी बहुत से लोग जो शौक रखते हैं वो शुरुआत में रेडियो के कार्यक्रमों से पूनम जी बहुत अरसे से जुड़ी हुई हैं, कई साल हो गए, लेकिन ये जब मंच आए, स्टेज आए सोशल मीडिया का, तो इन लोगों ने भी फोन के जरिए या पेजेस के माध्यम से आरजे की जो भूमिका है वो सभी निभा रहे हैं। अच्छी बात है, सबका शौक कहीं ना कहीं पूरा हो जा रहा है।
1: जी, आगे लिखते हैं कि ऐसे ही आवाजें इमरती यादव और उदिता विश्वकर्मा जी की भी है, लेकिन आजकल उदिता जी का कार्यक्रम में पता ही नहीं चल रहा है।
0: पता ये है कि हमारे यहाँ जो टेलीफोन लाइन है ना, उसमें इतनी भीड़ होती है, और बिल्कुल ईमानदारी से जिसका कॉल लग जाता है उससे ही हम लोग बातें करते हैं। तो प्रयास सभी लोग कर रहे हैं, उम्मीद है उदिता जी का भी जल्द ही प्रोग्राम में कॉल लगेगा और आपको सुनने को मिलेगा।
1: जी, आगे लिखते हैं कि लोक रंग कार्यक्रम में दीनानाथ, काजोल, वाल्मीकि, मासूम अली के स्वर में लोकगीत सुनने को मिला। दीनानाथ के लोकगीत के लिए मेरा भी नाम कार्यक्रम में शामिल हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों की लाजवाब प्रस्तुति के लिए अरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जितने भी व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम हैं, आप अगर समय के उसी वक्त, बहुत से श्रोता शुरुआत में या दिन भर मैसेज करते हैं, वो न करें। व्हाट्सएप के तमाम जो प्रोग्राम है उस समय उसी वक्त आपको अपने विचार या फिर फरमाइशें भेजनी होती हैं, तो आप अगर भेजेंगे तय समय के अंदर अपने नाम और फरमाइश, तो जरूर हम उन्हें पूरा करते हैं।
1: जी, आखिर में लिखते हैं कि इसी दिन आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी समस्या निदान केंद्र सुनी, जिसके लेखक थे विनोद कुमार गौतम और प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी। झलकी बेहद पसंद आई।
0: हालांकि हमारे यहाँ नई झलकियां, मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं प्रसारित हो रही हैं, लेकिन पहले की झलकियां इतनी मजबूत और पुख्ता उनकी पेशकश है कि जब भी आप सुनते हैं तो आपको गुदगुदा जाती हैं वो पेशकश। तो बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं, यूं ही प्रोग्राम सुनते रहें और प्रतिक्रियाएं भेजते रहें।
1: जी, अगला ये मेल हम शामिल कर रहे हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से, रमाशंकर यादव रासीपुर बहादुरपुर से। लिखते हैं, मैं बचपन से ही रेडियो सुनता आ रहा हूं, जिसमें ज्यादा आकाशवाणी वाराणसी के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम सुनता हूं। मुझे हर कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरी आप लोगों से शिकायत है कि कई कार्यक्रमों में मेरा नाम नहीं लिया गया।
0: तो नाम, जैसा अभी हमने कहा कि मेल वाले जो प्रोग्राम है उसमें आप मेल कभी भी भेज सकते हैं फिल्मी गीतों के, और इस कार्यक्रम में प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं कभी भी, लेकिन व्हाट्सएप में अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो उसी वक्त आपको बताई हुई फिल्मों से या कलाकारों के नाम की फरमाइश आपको भेजनी होती है, और आप भेजेंगे तो जरूर शामिल होगा। हम लोग इसमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं।
1: और अब तो सोशल मीडिया पेज पे जो है सवाल वगैरह भी पोस्ट कर दिया जाता है, तो बनारस बीट्स प्रोग्राम है, वाराणसी वाइब्स है, उसमें भी आप अपने जवाब के साथ साथ अपना नाम भी
0: बिल्कुल
1: सुन सकते हैं।
0: और आप तो इंटरनेट वगैरह से वाकिफ हैं, तो यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी वाराणसी का और फेसबुक पेज है, वहां भी जुड़े रहें, आपको अद्यतन जानकारी और शामिल होने के अवसर मिलते रहते हैं।
1: जी, आखिर में इन्होंने लिखा है कि मैं बचपन से ही रेडियो सुनता आ रहा हूं, जिसमें आकाशवाणी वाराणसी के द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रमों को बहुत तन मेहता से सुनता हूँ।
0: तन मेहता इन्होंने लिखने का प्रयास अच्छा किया होगा, बाकी वो गूगल गुरु की कृपा है।
1: जब मुझे मौका मिलता है, हालांकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मैं एक निजी विद्यालय में अध्यापन का कार्य करता हूँ, इसलिए जो है मुझे समय बहुत कम मिलता है, इस समय ग्रीष्म अवकाश की वजह से मुझे।
0: बिल्कुल, ये है कि रेडियो ये कहता है कि कुछ भी काम छोड़ करके आप रेडियो न सुने, साथ में काम करते हुए या घर में जब रहें, जब खाली वक्त हो तब आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। और अब तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, वहां पर आप बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे ये कार्यक्रम भी है, वहां आपको प्रसारण के बाद वो कार्यक्रम आप जब भी मौका लगे सुन सकते हैं।
1: अगला ये मेल हमें मिला है असगर अली का शिवपुर से।
0: जी
1: लिखते हैं कि शायद 9 जून को सुबह अनुपम जी ने कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत को प्रसारित किया था। बहुत ही दिल को

0: छूने वाला था, उनका एक एक शब्द रुक रुक कर पढ़ना, ईमेल पर फरमाइशी गाने और इंसाफ से दोहरा नाम भेजने वालों का नाम डिस्कार्ड करना बड़ा अच्छा लगा।
1: जी जी।
0: सोने पर सुहागा की गाने में ज्यादातर गाने टॉप के गाने थे, लास्ट में गाना रफी साहब का बजाया और एक गाना किसी और का बजाया। माननीय अनुपम जी, ये कार्यक्रम जो आपने पेश किया है उसकी प्रतिक्रिया के लिए आपने पूछा है, तो ये है कि थर्ड से फर्स्ट पोजीशन पर आ गए, मतलब गोल्ड मेडल मारा आपने।
1: तो अनुपम जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है कि उनके प्रोग्राम, उनके
0: गोल्ड
1: गाने
0: मेडल इनको मिल गया,
1: आपको पसंद आए और वो गोल्ड मेडल आपको दे रहे हैं। असकर जी नेवी से रिटायर हैं, बहुत पुराने हमारे वरिष्ठ श्रोता हैं, तो उनकी तारीफ निसंदेह स्वीकार है और मायने रखती है।
0: जी, और आखिर में ओवर एंड आउट, थैंक्स अ लॉट।
1: तो बहुत शुक्रिया, इस बार बहुत लंबा मेल आपने माहेनूर को कष्ट ज्यादा नहीं दिया। इसके लिए इसी तरह से संक्षेप में हर हफ्ते मेल लिखें और कुछ कार्यक्रमों का जिक्र करें तो हमें खुशी होती है हर श्रोता का मेल हर प्रोग्राम में शामिल करते हुए।
0: जी, मोताला महाराष्ट्र से हमें मेल किया है विजय सुरलकर और रतन माला ने। आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम ज्ञान, शिक्षा और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। आकाशवाणी वाराणसी को केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में ऑनलाइन के माध्यम से सुना जाता है। आकाशवाणी को 90 साल पूरे होने पर आप जो विशेष मान्यवरों से भेंट वार्ताएं सुनवा रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी और हमारी भी आकाशवाणी और बचपन की यादें ताजा हो रही थी। हम बचपन से रेडियो सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल, रेडियो ने एक लंबा सफर तय किया है और उस सफर की सफलता में आप जैसे श्रोताओं का बड़ा योगदान है, तो ये साथ बनाए रखिए। और कार्यक्रम आपको पसंद आया, खासतौर से 90 वर्ष के सिलसिले में जो प्रस्तुतियां हुई, तो आपकी बधाई हमारे प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है।
0: 7 जून को अरुण पांडे द्वारा प्रस्तुत लोक रंग कार्यक्रम सुनकर मजा आ गया। लोकगीत कलाकार बुल्लू यादव जी, शारदा सिन्हा जी, हीरा लाल यादव जी के बहुत ही शानदार लोकगीत सुनने को मिले और उनके बारे में अरुण पांडे जी द्वारा जानकारी भी हमें बेहद पसंद आई।
1: बिल्कुल, जिस आकाशवाणी का आपने जिक्र किया, आकाशवाणी को ये श्रेय जाता है कि ऐसे बहुत सारे गीत संगीत, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के कलाकार रहे हैं जिनकी प्रस्तुतियां सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के ही जरिए शुरुआत में तो जन जन तक पहुंची, लोगों ने सराहा और श्रोताओं के साथ साथ कलाकारों को भी आत्मबल और प्रोत्साहन मिला। तो इन कलाकारों को आपने पसंद किया, उनकी प्रस्तुतियों को बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं।
0: जी, इसके अलावा गुड मॉर्निंग बनारस, हेलो फोन इन फरमाइश और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी ये नियमित रूप से सुनते हैं।
1: तो यूं ही सुनते रहें और प्रतिक्रियाएं भेजते रहें, इस मेल के लिए शुक्रिया आपका।
0: जी, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने हमें मेल किया है। 16 जून को प्रसारित कार्यक्रम खेती की बात में अरहर की खेती के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया जो हमें बहुत उपयोगी लगा। इसमें बोनी के समय बीज प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और रोग प्रबंधन पर सुंदर जानकारी दी गई। इसी दिन का सुबह का कार्यक्रम आराधना और दोपहर का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बहुत अच्छा लगा। सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई।
1: तो ये जो खेती बाड़ी से संबंधित जो बातें हैं, दरअसल सना जी ये शहरी पीढ़ी है, हम लोगों ने तो गांव घर में खेत वगैरह में काम किया भी है एक समय पर और बड़ा नजदीकी जुड़ाव रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है वर्षों से चल रहा है खेती की बातें, और एक वक्त था कि ये प्रोग्राम सुनकर के ही किसान भाई अपने कामकाज के दिन की शुरुआत करते थे। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया, मेल लिखते रहें हमें यूं ही।
0: और कार्यक्रम का ये आखिरी मेल हम अपने नियमित श्रोता जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का शामिल कर रहे हैं। बधाई के साथ लिखते हैं कि 9 मई को आशुतोष शास्त्री द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा। उनकी काशी कथा की स्क्रिप्ट इतनी शानदार होती है कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उसी दिन 2:30 बजे गीतांजलि माँ पर सुना, बहुत ही प्यारा लगा। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए आशुतोष जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और खासतौर से तमाम श्रोता बनारस के बारे में जो वो जानकारियां लेकर आते हैं वो पसंद करते हैं, उन्हें ये जानकर अच्छा लगेगा।
0: जी, 10 मई को आज इतवार है कार्यक्रम के अंतर्गत विनोद कुमार गौतम का लिखा और मधु श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत झलकी समस्या निदान केंद्र सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। उसी दिन सना सलीम और अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना, वो भी बहुत प्यारा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए आप दोनों को दिल से धन्यवाद।
1: सुरेश जी को ये कहें कि एक जगह रह गया, एक जगह से हट गया, तो ये माजरा क्या है। बहरहाल ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया, हम दोनों की ओर से आपको शुक्रिया।
0: जी, 12 मई को शशि उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना, दिल को आह्लादित कर दिया। अच्छे गीत और गीतों पर दी गई जानकारी अच्छी लगी, इसके लिए शशि उपाध्याय को बहुत बहुत बधाई। 14 मई को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो पसंद आया श्रोताओं।

0: द्वारा भेजे गए गीतों में से मनमोहक गीतों को सुनकर दिल खुशी से झूम उठा।
1: सुचि उपाध्याय और रंजू तिवारी का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। खासतौर से फिल्म संगीत के जो भी कार्यक्रम होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसमें अच्छे से अच्छे गीत श्रोताओं की पसंद के हम शामिल करें।
0: जी, उसी दिन स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत कहकशां सुना, वो भी पसंद आया, इसके लिए स्नेहा को बहुत बहुत बधाई। 18 मई को अनुपम गुप्ता द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बहुत प्यारा लगा, बहुत सारे पत्रों को शामिल किया गया, अच्छा लगा, अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए अनुपम गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए स्नेहा सिंह और अनुपम गुप्ता तक आपकी बधाई पहुंच रही है और आपका मेल कार्यक्रम में शामिल हुआ, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। यूं ही लिखते रहें, आप तो हमारे बहुत ही नियमित श्रोता हैं, आपके मेल का इंतजार रहता है।
0: जी, लेकिन सुरेश जायसवाल जी लगता है इधर भी नाराज चल रहे, हमारे प्रोग्राम नहीं सुन रहे तो हमारे प्रोग्राम्स को भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीजिए हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com पर। आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा
1: और हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में अगले हफ्ते, और तब तक के लिए अरुण पांडे
0: और सना सलीम को दीजिए इजाजत।

0: पत्र के लिए धन्यवाद। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। श्रोताओं के ईमेल के साथ थे अरुण पांडे और सना सलीम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658।

0: श्रोताओ, ये आवाज़ जो हम सब ने बचपन से सुनी है और दूरदर्शन के ज़रिए या कतिपय मंचीय प्रस्तुतियों के ज़रिए हम सब ने मशहूर पांडवानी गायिका तीजन बाई को देखा है, सुना है। आज वो हमारे बीच नहीं है। प्रोग्राम के आरंभ में उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। पद्म विभूषण पांडवानी गायिका तीजन बाई ने खास तौर से महाभारत और जो छत्तीसगढ़ी लोकगीत की विशेष शैली है कापालिक और वेदमती, उसके जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और भारतीय लोकगीत की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया, प्रोत्साहित किया और एक स्थान उसका मुकम्मल तय किया।
1: राजपाट कुछ नहीं चाहिए, कैसा कुछ नहीं, क्योंकि क्योंकि मेरे परिवार मार कर मैं राज भोगना नहीं चाहते। हम दुनिया में भीख मांग के जी लेंगे, पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मार कर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। अर्जुन के तरह भगवान देख के कहे।
0: और ऐसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के जरिए हमारे बीच सदा रहते हैं, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी और यह अवसर है कि हम विनम्र स्मरण कर रहे हैं।
1: ताहले अर्जुन के मत छरी आ गया। हाँ, तब के दारी श्री कृष्ण जी के थे अर्जुन, ये सब मरे हुए से नए तेल मारे बरा है।
0: तीजन बाई ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के भी बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत की और कुछ कार्यक्रमों

0: को देखने का भी अवसर हम सबको मिला है।
1: पुत्र नहीं, पत्नी।
0: और अब लौटते हैं आज के इस प्रोग्राम की ओर, यानी लोक रंग की तरफ। आप जानते हैं ये कार्यक्रम व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है और कार्यक्रम की अवधि पत्र के लिए धन्यवाद के कारण थोड़ी सी कम हो गई है, और अगले हफ्ते से संभवतः कार्यक्रम जो पत्र के लिए धन्यवाद है वो शाम 7:31 पर ही अपने तय समय पर प्रसारित होगा। और आप जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय ICC T20 विश्व कप क्रिकेट मैच का फाइनल मैच है जो उसी वक्त यानी शाम 7:31 से शुरू होगा, जो हमारे केंद्र से आप उसकी ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुन सकते हैं। तो लोकरंग कार्यक्रम में आज शामिल कलाकार हैं धनंजय कुशवाहा, सुमन अग्रहरि और सुरेंद्र उपाध्याय। धनंजय कुशवाहा, सुमन अग्रहरि और सुरेंद्र उपाध्याय। सबसे पहले कलाकार का नाम लिखें और उसके बाद अपना नाम और जगह का नाम। एक बारी संदेश भेजें, इंतजार करें, हमारे साथ बने रहें। हम सबका पूरा प्रयास होता है कि आपके नाम, आपकी फरमाइशें जरूर प्रोग्राम में शामिल हों। 7905519981790551 ये कार्यक्रम का नंबर है, और आप सबको ये नंबर स्मरण हो गया है और संदेश आपके बहुत सारे आ चुके हैं। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपकी ही फरमाइश के इस लोकगीत के साथ, धनंजय कुशवाहा के स्वर में ये छप रही है।

0: धनंजय कुशवाहा के स्वर में ये छप रही आप सुन रहे थे फरमाइशें, इसके लिए आई हैं आप सबकी सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर के हमारे श्रोता हैं अनिश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा और योगेंद्र कुमार का संदेश पहुंचा हम तक। गुरप्रीत सिंह तांगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह हैं तांगोरी मोहाली पंजाब से। मुंदीचक भागलपुर बिहार के श्रोता हैं दिलीप कुमार सोनी, गहमर गाजीपुर से त्रिलोकी जायसवाल, गिरधारी जायसवाल, शांति देवी, शिवनाथ जायसवाल और शिवांश। मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें सुन रहे हैं जावेद अख्तर राही, शमसुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तुबा आफरीन। आशीष कुमार महरों जौनपुर के श्रोता, एक बार ही आशीष जी संदेश भेजा करें। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब। जमानिया गाजीपुर के श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक हैं अनारकली बाजार जगराव से। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा बिहारी कॉलोनी शाहदरा के श्रोता हैं। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजता खुराना और रिधान खुराना। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड के हमारे श्रोता हैं। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से फरमाइश आई है जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह और दीनाना सिंह यादव की। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मैंडी शर्मा। नबी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, नवेद हसन अब्बासी, अनस अब्बासी और सुहेल हसन अब्बासी हैं मारहरा दरवाजा एटा के श्रोता। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल की फरमाइश। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा हैं दतरेंगी भाटापारा से। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर। आप हैं सावतपुर छत्तीसगढ़ से ऋषि सेन, रितेश सेन और कंचन माही सेन। दिलदार मिरी, ज्योति जाह्नवी और दीक्षांत मिरी हैं कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। मुकेश कासलेकर, राजेश सोनी, तहसील वरुण, अमरावती महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश है, शुक्रिया आपका। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण संस्कृति और पौरुष हमें सुन रहे हैं व्हाइट फील्ड बेंगलोर से।
1: कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटवा ढूंढ रहे? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी, कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि
2: डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
3: औरों को भी सिखाओ।
0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए एनसी

0: की आरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
0: 0542227658।
4: स्वागत है श्रोताओं, आपका एक बार फिर से कार्यक्रम लोकरंग में। और अब अगली पेशकश बहुत सारे श्रोताओं की फरमाइश। यह आवाज सुमन अग्रहरी की है और ये प्रस्तुत कर रही हैं दादरा।

दादर आप सुन रहे थे सुमन अग्रहरी के स्वर में। इसके लिए फरमाइश भेजी हमारे श्रोता पटेल नगर मुगलसराय से सुनील कुमार सिंह ने। बहुत शुक्रिया आपका। अस्तुपुरा मऊ से हमें सुन रहे मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवाना परवीन, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा है बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से।

वर्मा प्रहलाद राजेंद्र वर्मा है, बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से। शाहकुटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा आप सभी हैं मजनू का टीला से। रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंद्री सारंग, ओमनाथ, शिवांग, अदिति और उनकी माताजी निर्मला त्रिपाठी हैं कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर की फरमाइश सोनू वर्षा खानपुर चुनार से आई हुई है। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब, आपने मेल आईडी, हम लोग जो फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी वाराणसी का, वहाँ डिटेल में लिखा है। बहरहाल पीकेएलडी का जो मेल आईडी है वो हम आपको प्रायः बता ही दिया करते हैं, pkld@gmail.com। इसमें pkld जो फुल फॉर्म है पत्र के लिए धन्यवाद, उसकी एबर्विएशन है यानी pkld@gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाओं का महेंद्र जी इंतजार रहेगा। श्याम सुंदर यादव, वंदना यादव, आशीष यादव, मयंक यादव हैं सारंग छपरा खड्डा कुशीनगर से। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता की फरमाइश पुफाली यवतमाल से आई है। सुमन आरजू बानू, आलिया बानू, नेहा बानू, सिमरन बानू की फरमाइश नगर पंचायत गंगापुर गोला बाजार से। और अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, सुरेंद्र उपाध्याय की आवाज और यह है किसानी गीत।

ये किसानी गीत सुरेंद्र उपाध्याय के स्वर में और फरमाइशें आप सबकी राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी कुमारी हैं मुजफ्फरपुर बिहार से। बहुत पहले फरमाइश भेजी हमारे श्रोता पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल गुप्ता गौंड, रमा गुप्ता गौंड, अंकुश कुमार गुप्ता और पूजा गुप्ता गौंड ने। आपने भी सुप्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई का स्मरण किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मोनू पासवान, पुतुल पासवान, अतुल और बंकू की फरमाइश मोहम्मदाबाद गाजीपुर से आई हुई है। गढ़नुखा लालगंज रोहतास बिहार से हैं राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा की फरमाइश रोहतक से। स्टेशन रोड देवकली के राकत जौनपुर से डॉक्टर राजेश यादव, भोलानाथ यादव और कमलेश प्रजापति। विशाल मिश्रा बधवा बाजार माधोपुरी मिलिया जौनपुर से। सोनू बिंद जौनपुर से बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया के श्रोता है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहाने वादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय। आशा नारंग, सोनाली नारंग, सुरेश नारंग सहारनपुर से। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी। अमितेश कुमार तिवारी हैं करनई बलिया के श्रोता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।

0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई 1 किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल तंबानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध 2 प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: दीने दीने वो मारे ढाला पे है, जाई से पानी में ढूंढे ढेला।
3: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
4: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं। जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना लेने चला। सावन में
3: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन देका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात का

0: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
3: एक ही फिल्म से कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त पूजा। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो मूवी है खट्टा मीठा। जी हाँ, 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन दौर चरम पर था और उनकी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज कर रही थी, तब निर्माता निर्देशक बासु चटर्जी ऋषिकेश मुखर्जी के साथ मिलकर मिडल सिनेमा का झंडा सुनहरे पर्दे पर बुलंद कर रहे थे। इस झंडे को थामे हुए उन्होंने कई शानदार और साफ सुथरी फिल्में बनाई। बासु चटर्जी के पास मध्यम वर्गीय कमजोरियों और सामाजिक झिझक की एक दुर्लभ और बेहद सटीक समझ थी, इसीलिए पर्दे पर उनके किरदार कभी भी बनावटी या मजाकिया कार्टून जैसे नहीं लगते, बल्कि वे हमारे अपने रिश्तेदारों की तरह प्यारे और कमियों से भरे हुए महसूस होते हैं।

उनकी फिल्म खट्टा मीठा इस बात का सबूत है कि बिना किसी विलेन, बिना मारधाड़ और बिना भारी भरकम मेलोड्रामे के भी एक ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो दशकों बाद भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दे। यह फिल्म 1970 के दशक के बॉम्बे की धरती में गड़े हुए किसी टाइम कैप्सूल जैसी है। फिल्म में दिखाई गई पारसी कॉलोनियां, सड़कों पर दौड़ती लाल डबल डेकर बसें और विक्टोरिया टर्मिनस का माहौल आज के दौर के दर्शकों को एक पुरानी शांत और खूबसूरत मुंबई की सैर करा देता है जो अब इतिहास बन चुकी है। बासु चटर्जी ने उस दौर की मुंबई के परिवेश को एक जीवित किरदार में बदल दिया। उन्होंने बीते दौर के उस बॉम्बे को कैमरे में कैद किया जो तंग अपार्टमेंट के गलियारों, स्टील के बर्तनों की खनखनाहट और पतले दरवाजों के पीछे एक दूसरे की बातें सुनते परिवार के सदस्यों के अपनेपन से भरा था।

0: हॉलीवुड की 1968 की प्रसिद्ध पारिवारिक कॉमेडी फिल्म योर्स माइन एंड आर्स से प्रेरित इस फिल्म के मूल विचार को लेकर बासुदा ने बॉम्बे के पारसी बैकड्रॉप में इतनी खूबसूरती से ढाला कि यह पूरी तरह से भारतीय और मौलिक लगने लगी। फिल्म की कहानी के केंद्र में दो विधुर विधवा पारसी जोड़े के जीवन के उत्तरार्ध में हुए विवाह को दिखाया गया है, जो अपने अपने बेहद अजीज और अनोखे परिवारों को एक ही छत के नीचे लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो सामने आता है वह घरेलू मनमुटाव, नाजुक अहंकार और भावनात्मक तालमेल के उतार चढ़ाव भरे रास्ते की एक बेहतरीन मिसाल है। सिनेमा के उस दौर में उम्र के इस पड़ाव पर दोबारा शादी के विषय को संभालना अविश्वसनीय रूप से प्रगतिशील था। कहानी को भारी भरकम और बोझिल भावुकता में डुबोने के बजाय चटर्जी इसे हल्के फुल्के संकोच और रोजमर्रा के स्नेह के साथ आगे बढ़ाते हैं।
1: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे,

दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे जितनी बार भी देखो, यह हर बार दिल को एक असीम सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे जाती है। फिल्म का शीर्षक खट्टा मीठा अपने आप में किसी काव्यात्मक प्रतिभा से कम नहीं है। खट्टा और मीठा यानी खटास और मिठास, पारिवारिक जीवन की उलझी हुई लेकिन खूबसूरत हकीकत को पूरी तरह समेट लेता है। यह एक ऐसा कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है जहां घर के किसी कोने के कमरे में कोई मुंह फुलाकर बैठा होता है तो वहीं दूसरी तरफ रसोई से ताजा पकते खाने की खुशबू आ रही होती है। फिल्म में दिखाया गया बिखरा हुआ सा बड़ा सा घर और उसमें रहने वाले बच्चों के बीच का झगड़ा और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के लिए उनका प्यार दर्शकों को अपने ही घर की कहानी जैसा लगता था।

में अशोक कुमार, राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, पर्ल पद्मसी, देवेन वर्मा, प्रीति गांगुली, देवेंद्र खंडेलवाल, रवि राज, डेविड कैस्टो मुखर्जी, मास्टर राजू, प्रदीप कुमार, इस्तेखार विक्रम, रंजीत चौधरी, रूबी मेयर, रवि राज के अलावा अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में गेस्ट रोल में थे। दादा मुनि अशोक कुमार जहां एक सौम्य और आदरणीय मुखिया के रूप में शांत व गरिमापूर्ण गर्माहट बिखेरते हैं, वहीं राकेश रोशन एक बेहद सीधे, सच्चे और अच्छे स्वभाव के युवा के रूप में चमकते हैं। रंजीत चौधरी ने अशोक कुमार के बेटे के रूप में अच्छा काम किया है और प्रीति गांगुली, जो अशोक कुमार की असल जिंदगी की बेटी थी, ने भी बेहतरीन अभिनय किया है। पूरी फिल्म में देवेन वर्मा अपनी लाजवाब कॉमिंग टाइमिंग से हर सीन को चुरा ले जाते हैं और फ्रेम को जीवंत बना देते हैं।

थिएटर की दिग्गज हस्ती पर्ल पद्मसी ने इस फिल्म में नरगिस सेठना का जो किरदार निभाया, उसने हिंदी सिनेमा में पारसी महिलाओं के चित्रण की परिभाषा ही बदल दी। इससे पहले फिल्मों में पारसी किरदारों को अक्सर सिर्फ मजाक के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन पर्ल पद्मसी ने उसे गरिमा, कड़कपन और दिल को छू लेने वाली ममता से भर दिया।

उन्होंने इस परिवार की कमान संभालने वाली महिला के रूप में कमाल का अभिनय किया है, जिसमें तीखापन, समझदारी और गजब की हाजिर जवाबी शामिल है। फिल्म में देवेंद्र वर्मा का किरदार अपनी माँ से बहुत डरता है। माँ उसे हमेशा डांटते हुए एक अजीब से पारसी लहजे में फैटम कहकर बुलाती है। पीलू जे वाडिया के संवाद बोलने का अंदाज और देवेंद्र वर्मा का

0: दोस्तों अब समय हो गया है कार्यक्रम एक ही कलाकार को यहीं समाप्त करने का। अपनी रेडियो दोस्त पूजा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: एक ही फिल्म से कार्यक्रम आज फिल्म खट्टा मीठा पर केंद्रित था। पेशकश पूजा सिंह की।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। डीटीएच, डीआरएम वेव्स, ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। आज की हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, DTH, DRM 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स OTT पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: बच्चों जय हिंद। का हो चुन्नू मुन्नू, कैसन हुआ? भाई स्कूल तक खुल गेल है ना, और स्कूल जाए के भी पड़ी। जब स्कूल जाएला ना तो कितना नीक नीक के जानकारी लेके घरे आवेला है ना। तो ऐसे ही तोहार गुंजा दीदी भी आज तू लोगन के लिए कुछ जानकारी लेके आयल हैं। तो चला हो बैठ जा लोगन, और देखा शोर मत मचैया, बड़ी ध्यान से सुनिया आज का विषय हो। ठीक हो, देखा आज तू लोगन के बतावे जाती अपन जो राष्ट्रीय प्रतीक होला ना ओकर सम्मान करे के चाहिए। अब राष्ट्रीय प्रतीक होला का? देखा अपन राष्ट्र ध्वज, अपन राष्ट्रगान और अपन राष्ट्रीय चिन्ह अपने राष्ट्र का प्रतीक हो, मने की एके सब कर सम्मान करे के चाहिए। और हो चुन्नू मुन्नू जानत हुआ अपन राष्ट्र गीत का सम्मान कैसे करे के चाहिए? देखा हो जब हम लोगन कहीं जाइला, और तू लोगन तक खास करके स्कूल में जब 15 अगस्त होला और 26 जनवरी होला, तो जब लेड़ुआ मिलेला तो ओकरे पहले का होला जानेला ना? ओकरे पहले अपन राष्ट्र गान होला और अपन राष्ट्रीय गीत भी होला। अब जानत हुआ कुछ लोगन का करेलन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर ना कर पावेलन। राष्ट्रगान का होला तू लोगन जानत हुआ ना, रोज स्कूलों में सुनत हुआ। अपन जनगण मनगण जन होला ना वही राष्ट्रगान कहल जाला, और ओकर सम्मान करे के चाही। अगर वो कहीं बजे तोरे स्कूल में हो, चाहे रस्ते पड़े कहीं जात हुआ, अगर राष्ट्रगान का धुन कहीं बज गए तो ओकरे सम्मान के लिए एकदम सावधान के मुद्रा में खड़ा हो जाए के चाही, एहर ओहर न करे के चाही। अब जानत हुआ तू लोगन के बतावल काहे जरूरी हो? कहे से कि तू लोगन अभी छोट हुआ, धीरे धीरे करके बड़ा होबा। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्रगान के प्रति सबके जिम्मेदार होए के चाही, सबके सम्मान करे के चाही। आ देखा हो एक और बात हो, ये तो हो गेल राष्ट्रगान का। अपन जोन राष्ट्रीय तिरंगा हो, माने कि अपन जोन झंडा हो, ओकर भी सम्मान करल जरूरी हो। 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन हम लोगन के स्कूल में देखा हो राष्ट्रीय ध्वज फहरावल जाला ना, तो ओकर सम्मान करना जरूरी हो, ओके सही जगह पर फहराना जरूरी हो। और एक बात और देखा, जब राष्ट्रीय ध्वज कहीं फहरे तो ओकरे पहले ओके देख लेवे के चाही कि कहीं से ऊ फटल ना हो, कहीं से ऊ मैला ना हो, माने कि गंदा ना हो, ई कुल भी ध्यान रखे के चाही। और अब बचल राष्ट्रीय चिन्ह। अपन राष्ट्रीय चिन्ह तो तू पहचानत हुआ ना का होला? अपन राष्ट्रीय चिन्ह के तो भाई लोग रोज देखत हुए, ऊ कैसे बता दी तू लोगन के? तू लोगन के जोन पैसा मिलेला, जो नोट मिलेला, उनमें देखेला ना किनारे के तरफ एक ठे छोटा सा शेर का चिन्ह बनल रहेला ना, जो जेकर मुंह 3 ठे होला। हाँ भाई वही अपन राष्ट्रीय चिन्ह हो, ओकर भी सम्मान करे के चाही। आ वो अगर तू लोगन के देखे के हो ना, देखा वो अशोक स्तंभ से लेवल गए लो, और अगर तू लोगन के देखल चाहत हुआ था वो आज भी सारनाथ के संग्रहालय में रखल हो बड़ी ही सुरक्षित तरीके से। तब अगर तू लोगन के देखे का मन होए तो अपने घर वालन के कहिया कि जब भी छुट्टी मिले तू लोगन के लिया के सारनाथ जरूर घुमा दें। तो चुन्नू मुन्नू देखा हो इतना बात तो हम बतियाई, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़े वजदे एक बात और जरूरी हो, हम सब के अनुशासन में रहल। तो आज यही पे एगो वार्ता लेके आयी तू लोगन के लिए, अनुशासन का महत्व। वार्ताकार हुन आशुतोष यादव। तो अपन चुन्नू मुन्नू एके सुनला।
2: प्यारे बच्चों, अनुशासन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। यह केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन को सफल बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है। बच्चों, अगर आपको अपने जीवन में सफल

सफल बनना है तो आपको अपने जीवन में अनुशासन जरूर अपनाना होगा। अनुशासन का सामान्य अर्थ केवल नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे विचारों, व्यवहारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझते हुए समय का सही उपयोग करता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, तभी वास्तव में वह अनुशासित कहलाता है। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण अर्थ यह भी है कि अपने मन के और इच्छाओं के प्रति नियंत्रण रखना। विद्यार्थी जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी कार्य के प्रति एकाग्रचित और संयमित नहीं होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित कर सही काम करते हैं, वही वास्तव में अनुशासित होते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को आसान और व्यवस्थित बनाता है। जब हम एक निश्चित समय पर अपने काम करते हैं, तो हमारा दिन सही तरीके से बीतता है। इससे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा, अनुशासन सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज में भी बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, तो समाज में शांति और व्यवस्था बरकरार रहेगी। लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे, जिससे सामाजिक सौहार्द भी बरकरार रहेगा। अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें एक अच्छा इंसान तो बनाता है और हमें सफलता की ओर भी ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन जरूर अपनाना चाहिए। अनुशासन सफलता प्राप्त करने का प्रथम सोपान है। हमें अपने प्रकृति से भी सीख लेनी चाहिए। अगर हम प्रकृति को ही देखें, तो हमें हर जगह एक नियमितता दिखाई देती है। जैसे सूरज अनंत काल से रोज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर निकलता है, मौसम अपने समय पर बदलते रहते हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे हम अपने जीवन में अनुशासन को अपना सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से अनुशासन के महत्व को समझाता हूँ। भारत के उत्तर में बसे एक गांव का नाम था काशीपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू का दिल बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता, बड़ों का सम्मान करता, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का समय बिगाड़ देना, खेल में ज्यादा समय गंवा देना, और जब काम करने का मन ना हो तो उसे कल पर टाल देना, ये सब उसकी आदतें बन चुकी थी। उसके माता पिता उससे अक्सर कहते, रामू अगर तुमने अनुशासन नहीं अपनाया तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। गांव वाले भी यही कहते हैं कि रामू में बुद्धि तो है लेकिन अनुशासन नहीं। लेकिन वह इन सभी बातों को मजाक में टाल देता। वह सोचता कि जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिए, अनुशासन में तो बस बंधन ही बंधन है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे जो बहुत ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक दिन रामू खेलते खेलते थक गया और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहीं से उसने देखा कि गुरुजी कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल है और यह इंसान को महान बनाता है। रामू ने यह बात सुनी। उसने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और वृद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद रामू गुरुजी के पास गया और वह बोला, गुरुजी क्या वाकई में अनुशासन इतना जरूरी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, इसका उत्तर तुम कल पाओगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पूर्व मेरे पास आना होगा। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आऊंगा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। रामू गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि वह कंबल ओढ़कर सोता रहे, लेकिन अचानक गुरुजी की बात याद आई और वह बिस्तर से उठने लगा। फिर आलस्य ने उसे खींचा। उसके मन में दो आवाजें थीं। पहली कहती थी, सो जाओ, एक दिन में क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी कहती थी, अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे तुम्हें उत्तर नहीं देंगे। काफी संघर्ष के बाद रामू उठ खड़ा हुआ। वह आंख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो तुमने अपनी पहली जीत प्राप्त कर ली। यह जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। रामू ने मन में सोचा, गुरुजी सही कह रहे हैं, बिस्तर छोड़ना ही सबसे बड़ा कार्य था। गुरुजी रामू को गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और किसान अपने अपने कामों में जुट चुके थे। किसी ने बैलों को जोता हुआ था तो कोई हल चला रहा था और कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो यह किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। यह समय पर खेत में आते हैं,
क्योंकि अगर एक दिन भी आलस्य

0: लें तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। रामू ने खेतों की ओर देखा। किसान पसीने में भीग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। गुरुजी ने कहा, बेटा यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है अपनी काम सही समय पर पूरी निष्ठा से करना। जो इंसान ऐसा करता है वह कभी असफल नहीं होता। उस दिन से रामू ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वह रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा और अपनी दिनचर्या नियमित कर ली। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आई। रामू को कभी कभी गुस्सा भी आता, कभी मन करता कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन तभी गुरुजी की बात याद आई। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद की कमियों को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा पाएगी। समय बीतता गया। रामू का मन कई बार विचलित हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने महसूस किया, अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि एक आदत है। गुरुजी हमेशा कहते हैं, बेटा नदी की धार अगर हर रोज पत्थर से टकराए तो वह पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। रामू ने यह बात दिल में उतार ली। कुछ साल बाद वही रामू जिसे लोग आलसी कहते थे, काशीपुर का सबसे विद्वान और अनुशासित युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग उसे देखकर कहते हैं, रामू की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। गांव में जब भी किसी को कोई सलाह चाहिए तो वह रामू के पास आता। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गुरुजी ने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, आलस्य और अनुशासनहीनता की लड़ाई। याद रखो, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। रामू ने विनम्रता से कहा, गुरुजी यह आपके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। अगर आप मेरा मार्गदर्शन न करते तो मेरे अंदर ये परिवर्तन होना कभी संभव नहीं था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, ये तो इंसान खुद के भीतर पैदा करता है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुशासन सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कोई भी व्यक्ति खुद की मेहनत से और अच्छी आदतों से ही आगे बढ़ सकता है। गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलना हमें खुद पड़ता है।
1: तो चुन्नू मुन्नू देखला ना कितना नीक तरीके से अपन आशुतोष यादव भैया अनुशासन के महत्व के बारे में तू लोगन के समझेले हैं, है ना। अब देखा हो इतना नीक वार्ता सुनने के बाद अब हम अपने चुन्नू मुन्नू के ना एक बाल गीत सुनावे चाहते। तो हमार चुन्नू मुन्नू सुने ईद के।

0: तो नन्हा मुन्ना बच्चा लोगन, तू लोगन का ये गीत सुन के फिर से मन में शैतानी भर गया हुई ना। हाँ भाई, लइकन बच्चन का काम है होइला शैतानी करल, लेकिन साथ में अपने जीवन में अनुशासन लियावल भी बहुत जरूरी हो। तो तोहार गुंजा दीदी आज तू लोगन से विदा लेते हैं, अगले हफ्ते फिर से कोई नई जानकारी के साथ आइये। तो हम चलत ही बच्चा लोगन, जय हिंद।
1: ग्रामीण बच्चे अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5:15 हो चुके हैं और युवा साथियों को इंतजार होगा अपने कार्यक्रम का, तो प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: रास्ते मुश्किल हो तो हौसले और बुलंद रखो, हर ठोकर को अपनी जीत की वजह समझो। पहचान एक दिन खुद ही बन जाएगी दुनिया में, बस अपने सपनों पर यकीन और खुद पर भरोसा रखो।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के इस बेहद खास रविवार के अंक में आपके साथ हैं आपके ये दो रेडियो साथी। मैं हूं भानु प्रताप।
0: और मैं हूं शिवांगी।
1: आप सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। शिवांगी, कार्यक्रम के शुरुआत में ही जरा एक बात बताओ कि तुम दिन भर में कितना लीटर पानी पीती हो?
0: पता नहीं भानु, कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन जब प्यास लगती है तो कभी आधा ग्लास पानी पी लेती हूँ तो कभी पूरा, और पीकर छोड़ भी देती हूँ।
1: यही तो बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम पूरा पानी नहीं पीती और जो पानी बच जाता है वो सीधे वेस्ट हो जाता है।
0: हाँ, ये तो सही कहा तुमने। मैंने तो इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कितना पानी वेस्ट करती हूँ, लेकिन अब जब तुमने ये बात उठाई है तो अब मुझे तो हमेशा ध्यान रखना रहेगा।
1: और दोस्तों, सिर्फ शिवांगी ही क्यों, हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपको पता है, आजकल हमारे गांवों की तस्वीर बदल रही है। अब हर घर तक नल से साफ पानी पहुंच रहा है। ये देखकर दिल को बहुत खुशी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा भानु। अगर हम पहले की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों को पानी पीने के लिए और पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। इसमें उनकी काफी मेहनत लगती थी और काफी समय भी बर्बाद होता था।
1: बिल्कुल, लेकिन अब जल जीवन मिशन के कारण हर घर में स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इससे लोगों का समय भी बच रहा है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है।
0: हाँ, क्योंकि पहले तो दूषित पानी पीने की वजह से गांव के लोग, शहर के लोग काफी बीमारियों का सामना करते थे। अब साफ पानी मिलने की वजह से उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी काफी कम हुई हैं।
1: और साथियों, इस मिशन का एक और सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि सिर्फ पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए गांव के लोगों को पानी की बचत और उसके सही उपयोग के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।
0: एकदम सही कहा तुमने। अगर हम आज पानी का दुरुपयोग कम करेंगे तो भविष्य में हमें फिर से एक बड़े जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम युवा और नागरिक जिम्मेदारी लेते हैं कि हम पानी का कम उपयोग करेंगे और बूंद बूंद का महत्व समझेंगे।
1: तो दोस्तों, नियम बना लीजिए। घरों में पानी व्यर्थ नहीं बहाना है, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए टोकना है, प्रेरित करना है।
0: जी दोस्तों, जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का परम कर्तव्य है। अगर हम नागरिक सजग हो जाएं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा।
1: सचमुच, जल जीवन मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन स्तर को

0: को बेहतर बनाने और एक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा को बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है।
1: बिल्कुल भानु, तो चलिए इस मोड़ पर हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे, और इसी संकल्प के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का युवाणी में। शिवांगी, जब हम जल जीवन मिशन और देश के विकास की इतनी बातें कर ही रहे हैं, तो थोड़ी सी बातें हम पढ़ाई लिखाई को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं।
1: हाँ हाँ भानु, सही कहा तुमने, स्कूल तो खुल ही गए और बच्चों की चहल पहल वापस लौट आई है।
0: सही कहा तुमने। आज सुबह जब मैं आ रहा था तो रास्ते में स्कूल के कुछ बच्चे मिले। वे आपस में समग्र शिक्षा अभियान के बारे में कुछ वार्ता कर रहे थे। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है?
1: समग्र शिक्षा अभियान?
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: भानु, शिक्षा तो हर बच्चे का बुनियादी अधिकार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे की अच्छी शिक्षा, समान गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा मिले, चाहे वह गांव का हो या फिर शहर का।
0: यानी ये एक ऐसी एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल यानी प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक की पूरी स्कूली शिक्षा को शामिल किया गया है, ताकि पढ़ाई के स्तर को सुधारा जा सके।
1: अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ किताबों और पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाता है।
0: बिल्कुल शिवांगी, इस अभियान के तहत स्कूलों में आधुनिक क्लासरूम, साफ सुथरे शौचालय, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, खेल कूद की सामग्री और डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाता है। कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी या किसी और अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े।
1: वाह, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और भानु, आजकल तो पढ़ाई में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का भी बहुत उपयोग बढ़ गया है। बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, डिजिटल साक्षरता देना और साथ ही साथ हमारे शिक्षकों को भी नई नई ट्रेनिंग देना इस अभियान का एक बेहद अहम हिस्सा है।
0: इससे बच्चों की पढ़ाई बोझिल नहीं होगी, बल्कि बहुत

0: मजेदार और आसान हो जाएगी। और हाँ, इस अभियान में दिव्यांग बच्चों की विशेष जरूरतों और उनकी शिक्षा पर भी पूरा फोकस किया जाता है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
1: जाहिर सी बात है भानु, जब देश का हर बच्चा पढ़ेगा और उसे समान अवसर मिलेगा, तभी तो हमारा देश का भविष्य मजबूत होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, लेकिन चलते चलते बस यही कहूंगा कि सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हम युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसके माता पिता को समझाएं और उसे स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक शिक्षित समाज ही तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, शिक्षा की इस अलख के साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
5: सुनो ना।
6: हाँ?
5: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
6: तो रोका किसने है? हाँ?
5: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
6: मुझसे।
5: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
6: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
5: पर उससे मेरा क्या फायदा?
6: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
5: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
6: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
7: 0542227658।
4: 0542227658।
5: लो अभी फोन लगाता हूँ।
4: 0542227658।
8: तो दोस्तों कहीं आप हमारा ये प्यारा सा गीत सुन के बहक तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं बहकेगा, क्योंकि अभी आज रविवार है और कुछ हम लेकर के आते हैं खास। तो आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या खास होने वाला है। तो आपको पता है कि हमारी टीम पहुंची थी कुछ बातचीत करने गांव में, और हमने उनसे क्या बातचीत की और क्या खास रहा, आप वो सुनिए।
9: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु प्रताप और आज हम आए हैं सारनाथ के निकट अखथा गांव। यहां कुछ लोगों से बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे पास एक मित्र खड़े हैं। दोस्त आपका क्या नाम है?
10: जी मेरा नाम है मुकेश चाली।
9: अच्छा आप क्या करते हैं?
10: जी मैं तो पढ़ाई करता हूँ।
9: अच्छा पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हैं?
10: पढ़ाई के अलावा पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ।
9: अच्छा पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं आप। अच्छा मुकेश जी ये बताइए कि आपके गांव की खासियत क्या है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको पर्यटक आए देखें, जैसे बनारसी साड़ी वगैरह बनती है या कुछ चीजें?
10: हमारे बनारस में खासियत ये है कि जैसे हुआ बगल में ही सारनाथ पड़ता है, यहाँ पे बौद्ध मंदिर यहाँ पे और बहुत सारे पार्क है, यहाँ पे सब लोग आते हैं घूमने के लिए।
9: मुकेश जी आप क्या चाहते हैं कि यहाँ जो सुविधाओं की कमी है कुछ यहाँ पूरा हो या उसकी आवश्यकता है, जैसे स्कूल कॉलेज या जैसे चिकित्सा से हॉस्पिटल या कुछ?
10: जैसे कि आप यहाँ के रोड देख सकते हैं, रोड तो कॉलोनी के जो जितने भी रोड है सब सही है, लेकिन हम लोग के कॉलोनी के सब खराब रोड है। इधर पूरा बारिश में कोई बच्चा जाता है स्कूल पूरा भीग जाता है, एक दिन जाएगा दूसरे दिन उसके वजह से नहीं जा पाता है, स्कूल जाने में भी दिक्कत होता है।
9: और जो आप रोड की बात कर रहे हैं वो दिक्कत यहाँ पर है?
10: रोड की तो बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि बारिश का समय भी आ चुका है, इधर दिक्कत भी बहुत ज्यादा होता है।
9: और मुकेश जी ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा काम के अलावा और क्या क्या मनोरंजन के लिए करते हैं?
10: इसके अलावा कभी दोस्तों के साथ चले जाते हैं, खाली रहते हैं तो सारनाथ चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। पार्क के बगल में चाय वगैरह हम लोग पी लेते हैं।
9: अच्छा अच्छा
10: पार्क में घूम लेते हैं फिर चले आते हैं घर, और उससे ज्यादा कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे, टाइम मिलता ही नहीं है, काम काम से फिर घर पर।
9: अच्छा अच्छा और गाने सुनना या कुछ ऐसा?
10: हाँ घर पे गाना वगैरह सुनते हैं हम भी, पापा रेडियो सुनते हैं, सुन लेते हैं रेडियो में समाचार जो आता है ये सब हम सुनते रहते हैं।
9: अच्छी बात है कि आपके घर रेडियो बजता है।
10: आज की पीढ़ी जो ज्यादा से ज्यादा लोग फोन में ही व्यस्त हैं।
9: चलिए मुकेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। देखिए दोस्तों हम टहलते टहलते देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं कहीं जा रही हैं, तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रही हैं और इनके यहाँ क्या सुविधाएं हैं। चलते हैं पास में। नमस्ते मैम।
11: नमस्ते।
9: तो मैम आप लोग यहीं के रहने वाली हैं?
11: हाँ मैं तो प्रॉपर यहीं की रहने वाली हूँ।
9: अच्छा अच्छा हम आकाशवाणी से आए हैं।
11: अच्छा भैया
9: कुछ ऐसे ही नॉर्मली कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो यहाँ आसपास स्कूल है क्या?
11: हाँ स्कूल पास में ही है।
9: अच्छा स्कूल पास में ही है।
11: मैं स्कूल से पढ़ा के ही आ रही हूँ अभी।
9: अच्छा स्कूल से पढ़ा

0: वहाँ करा
1: हाँ,
0: रही
1: हाँ,
0: हैं
1: मैं स्कूल
0: यानी?
1: से ही अभी आ रही
0: अच्छा
1: हूँ।
0: अच्छा यानी आप वहाँ अध्यापिका है।
1: हाँ,
0: अच्छा अध्यापिका है, तो ये बताइए कि वहाँ पानी वगैरह की सुविधा कैसी है?
1: पानी की सुविधा बहुत अच्छी है वहाँ का, मतलब अपना समरसेबल भी है,
0: अच्छा
1: बोरी का
0: अच्छा
1: ही पानी है, वहाँ पे जलकल विभाग का भी पानी आता है।
0: अच्छा जलकल विभाग का भी पानी आता है, यानी सरकारी जो पानी है शुद्ध पहुंचता है वहां
1: हाँ,
0: पर।
1: बिल्कुल शुद्ध है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता है, सारी सुविधाएं हैं पानी की
0: अच्छा
1: वहाँ
0: अच्छा तब
1: पे।
0: तो बहुत अच्छी बात है। इस समय एक समस्या ये चल रहा है कि हमारे यहाँ पीने का पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसके बारे में क्या आप कहना चाहती हैं?
1: ये थोड़ी सी मानसिकता है लोगों के अंदर अभी भी, जो जागरूक नहीं हो पा रही है, लेकिन इसको जागरूक करना बहुत ही जरूरी हो चुका है आज
0: जी
1: के
0: जी
1: समय में, क्योंकि
0: जी जी
1: आप जान रहे हैं कि इस समय पानी की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: पानी का स्रोत भी बहुत अधिक मात्रा में सबके पास हो चुका है, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जल को संरक्षित कैसे करना है।
0: बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा सा अभाव है अभी भी लोगों के बीच में, खासकर गरीब मोहल्लों में थोड़ा सा अभाव है इन सब चीजों का।
0: तो लोगों को समझना भी चाहिए और जागरूक होना चाहिए। तो
1: हाँ
0: मैम आप इतना अच्छा संदेश दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को क्लास में भी ये संदेश देती होंगी।
1: बिल्कुल, हम लोग संदेश देते
0: तब
1: हैं।
0: तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास में बच्चों को संदेश देती हैं, तो वो सीखेंगे तो हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा, वो भी आगे चल के पानी बचाएंगे और वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैम ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप पानी की बचत करती हैं और लोगों को शिक्षा देती हैं, और ये आपके साथ ही हैं।
1: हाँ, ये भी शिक्षिका है हमारे साथ की ही।
0: अच्छा,
1: मेरा नाम वंदना यादव है,
0: आप मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं?
1: हिंदी।
0: हिंदी।
1: हाँ, मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, यही अक्खा की रहने वाली हैं आप?
1: हाँ, हम भी अच्छा के ही रहने वाले हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे बहुत शैतानियां करते होंगे स्कूल
1: हाँ,
0: में, कैसे
1: करते
0: हैंडल
1: तो हैं,
0: करना?
1: बच्चे हैं तो शैतानियां तो करेंगे ही,
0: अरे हाँ,
1: सुधारना हमारा काम।
0: ये तो सही बात है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ खेल कूद भी खिलाते हैं स्कूल में कि बस ऐसे ही? अच्छा,
1: जी हाँ, होता है, खेल कूद भी होता है,
0: खेल कूद भी
1: बच्चों का
0: होता है,
1: मनोरंजन भी हो जाता है बीच बीच में।
0: वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो वहाँ वाटर कूलर लगा है पानी के लिए, वहाँ ग्लास वगैरह भी होंगे बच्चों को पानी
1: जी
0: पीने के लिए, है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: हाँ
0: तो वहाँ साफ सफाई का भी ध्यान खुद से बच्चों को रखना आप सिखाती
1: हाँ
0: होंगी,
1: हाँ हाँ बच्चे भी करते हैं इसमें।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को आप साफ सफाई करना भी सिखाती हैं। और मनोरंजन के लिए आप क्या करती हैं, गाने वगैरह सुनती हैं?
1: जी हाँ, हो जाता है, गाने वगैरह भी सुन लेते
0: अच्छा,
1: हैं।
0: गाना वगैरह भी सुन
1: हाँ,
0: लेती
1: बीच बीच
0: हैं।
1: में हो जाता है, बच्चे खुद एंजॉय करते हैं तो साथ में हम लोग का भी हो जाता
0: अच्छा
1: है।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों चलते हैं, और चलते चलते देखते हैं कि वहाँ पेड़ की छांव में कौन बैठा है। चलिए पूछते हैं। नमस्कार भाई। भाई आपका क्या नाम है?
2: हमारा नाम रोशन राय है,
0: अच्छा रोशन राय, तो आप क्या पढ़ाई करते हैं?
2: अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
0: अच्छा ग्रेजुएशन, कहाँ से कर रहे हैं ग्रेजुएशन?
2: ये हमारा कॉलेज है चिरई गांव में,
0: अच्छा चिरई गांव में कॉलेज है।
2: कॉलेज का नाम है महादेव पीजी कॉलेज।
0: अच्छा, तो ये बताइए, तो ये जो सारनाथ है हमारा जो पर्यटक स्थल है, उसके बहुत ही समीप
2: जी है,
0: है ना? तो जब सारनाथ में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे सावन मास का जो मेला चलता है या बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है, तो
2: हाँ,
0: यहाँ तो बहुत भागदौड़ होता होगा, यहाँ भी बहुत रोजगार मिलता होगा सबको।
2: रोजगार तो देखिए हर एक चीज में है अपने बनारस में, ये नहीं कह सकते कि जैसे कोई त्योहार आए तभी रोजगार है, बस लोगों क्या है कि काम करने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे तो सावन के माघ मेले में तो बहुत ही भीड़ होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि यहाँ आसपास जैसे किसी का तबीयत खराब हुआ इमरजेंसी के लिए, यहाँ हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं?
2: हॉस्पिटल तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ये पास ही में 400 मीटर की दूर पे 500 मीटर
0: अच्छा,
2: मेडिकल क्लिनिक वगैरह सब मिल जाएंगे आपको।
0: यानी चिकित्सा की सुविधा बगल में ही है।
2: हाँ, अवेलेबल है, वो 24 घंटा खुला रहता है, उसका कोई समस्या नहीं।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात ये तो है। और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए?
2: पढ़ाई लिखाई के लिए नजदीकी में 800 मीटर की दूर पे एक सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, काफी सारे स्कूल है।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ लोग बताए कि यहाँ साड़ी की बिनाई भी होती है, यहाँ होती है क्या ऐसा?
2: साड़ी की बिनाई सब जगह नहीं होती है, एक ही दो जगह होती है, जो मतलब बहुत पुराने लोग है ना,
0: अच्छा
2: वो
0: अच्छा
2: जैसे क्या है कि पुराने पुराने पुरखों को लोगों के चलता आ रहा है, तो आज अपना बनाकर रखे हुए हैं।
0: अच्छा, और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक चाचा साड़ी बुन रहे थे, तो उनके खिड़की से एक रेडियो की आवाज सुनाई दे रही थी।
2: उन्हीं के पास रेडियो है ही पूरे
0: अच्छा,
2: गांव में, उन्हीं के पास, उनका पूरा खानदान रेडियो का दीवाना है आज भी।
0: अच्छा, ये तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने एरिया के बारे में, सारनाथ के समीप जो अखा है इसके बारे में क्या स्पेसिफिक है?
2: हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, गैस पाइपलाइन अभी चल रहा है।
0: जी जी बिल्कुल। अब तो ये बताइए कि आप गाने वगैरह सुनते हैं?
2: हाँ, गाने वगैरह सभी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, उसके
0: अच्छा
2: ऊपर डिपेंड करता है।
0: हाँ जी, तो रेडियो वगैरह सुनते हैं कि नहीं आप लोग?
2: रेडियो वगैरह चालू करते हैं जब कार वगैरह से कहीं जाते हैं, तो ये रेडियो चालू होता है, ज्यादातर तो रेडियो कार में ही यूज होता है आज के जमाने में।
0: हाँ, आजकल के युवा जो है कार में ज्यादा यूज करते हैं।
2: हाँ
0: से बात करके बहुत अच्छा लगा रोशन जी,
2: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों हम टहलते टहलते यहाँ पर आ गए हैं, एक चौपाल लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ महिलाएं कुछ युवतियां बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो इनसे जानते हैं पूछते हैं कब से पढ़ा रही हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। तो मैम आप यहाँ

0: कब से पढ़ा रही हैं बच्चों को?
1: हम यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हैं।
0: अच्छा, 2 साल से बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये बच्चे आसपास के ही हैं कि कहीं दूर से आते हैं?
1: नहीं, आसपास के हैं, गरीबों के बच्चे हैं।
0: तो आप लोगों को पैसा भी देते होंगे ये?
1: नहीं, पैसा नहीं देते हैं।
0: अच्छा, पैसा नहीं है, यानी कि आप लोग निःशुल्क समाज सेवा करती
1: हाँ,
0: हैं।
1: समाज सेवा करते हैं।
0: अच्छा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं?
1: हिंदी, इंग्लिश, मैथ छोटे बच्चों को।
0: अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ये बच्चे कुछ कलाकार भी लग रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ आर्ट बना रहे हैं,
1: हाँ,
0: कला बना रहे हैं।
1: इन लोग ड्राइंग बनाते हैं।
0: अच्छा, ड्राइंग बनाते हैं, यानी कि यहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं। और पढ़ाई के अलावा यहाँ क्या क्या खेल कूद भी यहाँ होता है कुछ?
1: हाँ, खेलकूद होता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा यह जान के कि यहाँ आप समाज सेवा कर रही हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ा रही हैं। और ये माता जी कौन है आपके पास?
1: ये माता जी आई हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए।
0: अच्छा, बच्चों को छोड़ने के लिए आई हैं। तो माता जी ये बताइए कि यहाँ आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है? अच्छा,
1: हाँ, अच्छी होती है मेरे बच्चे की पढ़ाई।
0: बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। कब से कब तक यहाँ रहते हैं?
1: रहते हैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बच्चे रहते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है?
1: पानी की व्यवस्था नहीं, वो जल निगम वाला पानी है, वो बच्चे पीते हैं, हम लोग पीते हैं।
0: आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए, हम आगे और मित्रों से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, नमस्ते।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, देखिए, यहाँ सारनाथ के समीप जो गांव है अक्था, यहाँ कई लोगों से बात हुआ, अच्छे तरीके से बात हुआ, पानी के बारे में बात किए, मनोरंजन के बारे में बात किए। अब देखिए, हम यहाँ आगे कुछ बढ़ रहे हैं, एक भाई आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं, पूछते हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्ते सर
0: सर, आप यहीं के रहने वाले हैं?
2: जी।
0: अच्छा, तो क्या नाम आपका है?
2: मेरा नाम विनय गुप्ता है, सब प्यार से महादेव बुलाते हैं।
0: अच्छा, विनय गुप्ता, प्यार से महादेव बनाते हैं। ओ,
2: जी
0: इतने भक्त हैं कि आप इसलिए टी शर्ट पर महादेव जी का फोटो भी छपवाए हैं।
2: जी ये बनारस है, काशी नगरी भी है।
0: हाँ, सही बात है। तो विनय जी, आप पढ़ते हैं कि कोई काम करते हैं?
2: पढ़ते थे, अब काम कर रहे हैं, एलआईसी करते हैं।
0: अच्छा, काम करते हैं एलआईसी में।
2: जी
0: तो विनय जी, ये बताइए कि यहाँ अक्था गांव में जो पानी का साधन है, पानी पीने के लिए, तो यहाँ सरकारी पानी सुविधा पूर्व साफ सफाई वाला आता है?
2: हाँ, सरकारी पानी आता है मेरे घर, पानी सही आता है।
0: अच्छा, यहाँ सरकारी पानी आता है। अच्छा,
2: आता है, हम लोग पीते भी हैं
0: पीते भी
2: और घर
0: हैं।
2: पर भूल गए हैं ना,
0: अच्छा, पर्सनल आरो।
2: आरो लगाए हैं। जी
0: अच्छा अच्छा
2: हाँ,
0: आरो लगाए हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आरो भी लगाए हैं और शुद्ध सरकारी पानी आता है, जलकल विभाग वाला आपने
2: जी, पानी
0: कहा।
2: का वेस्ट नहीं करना चाहिए,
0: ये
2: किसी को मदद हो तो पानी दे देना चाहिए।
0: बहुत अच्छा विनय जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो विनय महादेव जी, हम चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार आपसे।
2: जय हिंद, जय भारत।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गांव के युवाओं के साथ की गई ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी। आपने भी जाना और समझा होगा कि आज के लोग, ग्रामीण युवा लोग, परिस्थितियों में कैसे अपने हौसलों से नई राहें बना रहा है। श्रोताओं, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अब वक्त हो चला है एक मधुर संगीत सुनने का। तो ये सुनिए संगीत।

0: गीत के बाद स्वागत है आप सभी का दोस्तों। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारी यूथ डायरी के उस पन्ने का, जहां हम रोज सीखते हैं कुछ नए और बेहतरीन शब्द। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं आज के हिंदी शब्द की तरफ। आज का हमारा हिंदी का शब्द है समन्वय, जिसका अर्थ होता है तालमेल, सामंजस्य या आपस में मेलजोल रखना। इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ इस तरह से करते हैं। विद्यालय में सभी शिक्षकों के समन्वय से वार्षिक उत्सव सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। और दूसरा वाक्य प्रयोग, टीम के बेहतरीन समन्वय से कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
1: वाह भानु, समन्वय वाकई एक बहुत ही सुंदर शब्द है। और दोस्तों, अब बारी है आज के अंग्रेजी शब्द को अपने डायरी में नोट करने की। तो आज का हमारा अंग्रेजी शब्द है इक्वानिमिटी। इसकी स्पेलिंग है EQUANIMITY, और जिसका अर्थ होता है संभाव, मानसिक स्थिरता या कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संतुलित बनाए रखना। इसका वाक्य प्रयोग हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे शी फेस्ड एवरी चैलेंज विथ इक्वेनिमिटी, या फिर द टीचर हैंडल द कंप्लेंट विथ इक्वेनिमिटी।

0: तो दोस्तों, आप भी इंतजार कर रहे होंगे अपने रेडियो पर सुनने के लिए अपने नाम। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जानने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कल का हमारा प्रश्न क्या था। पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका उत्तर है 2018। और विनर्स के नाम है चंदा चंदौली से, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, मुकेश प्रजापति सिगरा वाराणसी से।
1: बधाई हो आप सभी को। और साथ ही आज का हमारा आपसे प्रश्न है, जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बन गया? दोबारा प्रश्न सुनिए दोस्तों, जनवरी 2026 में कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बन गया? इसका जवाब आप हमारे यूथ इंस्टा आईडी youth_air_varanasi या फिर हमारे मेल आईडी youth_air_vns@gmail.com पर भेज सकते हैं और बन सकते हैं विनर।
0: शब्दों के इस ज्ञान के बाद चलिए अब फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं दुनिया भर में आज के ही दिन क्या खास हुआ था। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि वैश्विक मंदी के इस दौर में भी आपसी सहयोग से विकास को रफ्तार दी जा सके।
1: तो दोस्तों, विश्व घटना चक्र के बाद अब रुख करते हैं हमारे दोस्तों के पसंदीदा और काम के बारे में, यानी कि रोजगार सूचना के बारे में, जो कि आप करंट अफेयर्स है और आपके नौकरी करियर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है। सबसे पहले हम बात करते हैं MPESB, MP Group 2, Sub Group 1, कृषि विस्तार अधिकारी 2026 की भर्ती के लिए आवेदन हो रहे हैं, जिसकी तिथि 3 जुलाई 2026 से 27 जुलाई 2026 तक है, और इसकी आधिकारिक वेबसाइट है esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
0: और दोस्तों, IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि 1/7/26 से 21/7/26 तक है, और इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आप सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं और अपने करियर को एक नई उड़ान दें।
1: तो दोस्तों, अब थोड़ा सा एक गीत सुन लेते हैं और फिर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।

0: दोस्तों, करियर की इन शानदार जानकारियों के बाद अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज के इस सफर को यहीं पर समेटा जाए। यानी वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन जाने से पहले एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। क्यों शिवांगी?
1: बिल्कुल। तो आज के युग, इस आधुनिक युग में जहां देखो वहां शोर ही शोर है ना भानु?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सड़कों पर बेवजह बजने वाले गाड़ियों के हॉर्न, शादियों और पार्टियों में देर रात तक बजने वाले लाउड स्पीकर और डीजे, जिससे कि हमारी शांति तो भंग होती ही है, साथ में हमारे जो हार्ट पेशेंट हैं उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। लेकिन ध्वनि प्रदूषण को अक्सर लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक धीमा जहर है।
0: सही कहा शिवांगी। अत्यधिक शोर की वजह से लोगों में बहरापन, अनिद्रा, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। खास करके पढ़ने वाले विद्यार्थी और घर के बुजुर्गों के लिए ये शोर एक मानसिक प्रताड़ना जैसी बन जाती है।
1: इसलिए दोस्तों, एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हमारी यह ड्यूटी बनती है कि हम खुद इस शोर को कम करने की पहल करें। जब गाड़ी चलाएं तो बिना वजह हॉर्न ना बजाएं, अपने घर में म्यूजिक सिस्टम या टीवी की आवाज़ को उतना ही रखें जितना कि हमारे कानों के सुनने की क्षमता हो, है ना मानो?
0: बिल्कुल, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। तो चलिए, आज के इस युववाणी कार्यक्रम के समापन पर हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम खुद भी शांत रहेंगे और अपने पर्यावरण को भी शांत और सेहतमंद बनाने में अपना सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ आज के इस अंक से आपसे हम दोनों रेडियो साथी, मैं भानु प्रताप,
1: और मैं शिवांगी।
0: विदा लेते हैं। तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम प्रमोद कुमार सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 सफलता से लागू भइले पर खुशी जतौले हवे। वहां के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मिशन में राज्यन बदे 25,000 करोड़ रुपया के मुख्य सहायता राशि जारी कई है। वहां के कहने की विकसित भारत जी राम जी के पूरा प्रदेश में खाली 1 दिन में लागू कई गई हो।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान कहले कि बीबी जी रामजी योजना के मजूरी औसतन करीब 10% बढ़ावल गई हो। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बिहने अपने सदस्यन के खास बैठकी बुलौले हो, जैमे ट्रस्ट के मिलल दान के जांच कई रहल SIT के निष्कर्षन के साथे कई गो खास प्रशासनिक वित्तीय मामिलन पर विचार कई जाई। ये बैठकी दोपहरिया बाद 3 बजे मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में हुई, जकरे कार्यसूची में महासचिव चंपत राय आ न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफा पर विचार शामिल हो। बैठकी में भविष्य में राम मंदिर प्रबंधन से जुड़ल व्यवस्थों पर विचार कई जाई। प्रसिद्धीय प्राइमरी और जूनियर स्कूलन के मास्टर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया आ औरियो कर्मचारी लोगिन के सामूहिक बीमा का फायदा दिहल जाई। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देवे बदे बेसिक शिक्षा विभाग 8 जुलाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मौजूदगी में बनारस में भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU करी। ए मौका पर मुख्यमंत्री शिक्षक आउरियो कर्मचारी लोगिन के कैशलेस चिकित्सा सुविधा कार्डो बटी हैं। प्रदेश सरकार गन्ना किसानन आ उनकरे परिवारन के सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच देवे बदे बढ़हन अभियान शुरू करे जा रहा हो। बहने से 11 जुलाई ले प्रदेश के सज्जो सहकारी गन्ना विकास समितियन में विशेष सामाजिक सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाभियान चलावल जाई। एक जरिए लाखन किसान परिवारन के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के सतही भारत सरकार के तमाम योजना से जोड़ल जाई। अभियान में हर सहकारी गन्ना विकास समिति में विशेष सहायता काउंटर और नामांकन काउंटर खोलल जाई, जैसे किसानन के एक के जगह पर योजना के जानकारी, पात्रता के सत्यापन, दस्तावेजन के जांच, बैंकिंग सहायता और जुड़ते नामांकन के सुविधा मिली। नया सदस्य पंजीकरण, बैंक खाता खोलले और जरूरी सेवा के इंतजाम सुनिश्चित कई जाई। सरकार तरल प्राकृतिक गैस LNG के आपूर्ति से पाबंदी हटा ले ले हो। ये फैसला पश्चिम एशिया में लड़ाई रुकले के बाद होर्मुज जल डबरू मध्य से प्राकृतिक गैस के आपूर्ति फिर से शुरू भइले के बाद कैल गई हो। सरकार सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर फीसी वाला विज्ञापनन में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के लेके मेटा के करेट चेतावनी देले हो। एगो रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है, और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: छत्तीसगढ़ का मशहूर पांडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का आज तड़के सड़कवास हो गई। एगो आम परिवार में जन्मल तीजन बाई पांडवानी के जरिए महाभारत का कथा के मंच पे दिखा के भारतीय लोक संस्कृति के विदेशों में मशहूर कैलीन। प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर और बलिया के सतही प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में आज तेज बयारी के बीच रुक रुक के बरखा हो

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर से भोजपुरी में समाचार।
1: आकाशवाणी गोरखपुर।

0: रहलो। मौसम विभाग प्रदेश के ज्यादातर इलाकन में अगला 4 दिन ले गरज चमक के साथ हलुक से मध्यमाहे बरखा के अनुमान जतौले हो। समाचार पूरा भइल।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से शाम 7:30 से खेल की समाप्ति तक। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और छाया मिश्रा के गाए लोकगीत के अलावा सुनेंगे डॉक्टर बी राय और सुधीर कुमार श्रीवास्तव की बातचीत। बातचीत का विषय होगा इस मौसम के आहार विहार। इसके अलावा फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 6:10 पर और शाम 7:00। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। और अब एक नजर कल यानी 6 जुलाई 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों पर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे उस्ताद विलायत हुसैन खां का गायन, और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:45 पर और सुबह 7:31 पर सुनिएगा विदुषी पूर्णिमा चौधरी का गायन। रात 10 बजे सुनिएगा मुशायरा, इसमें शामिल शायर होंगे रोशन अहमद, मोहिबुल्ला अंसारी और खुर्शीद अहमद। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8 बजे सुनिएगा जगजीत सिंह और ए हरिहरन की गायी चंद गजलें, और इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ज्योत्सना भट्टाचार्य की गाये भजन। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर किसान भाई चर्चा और दीनानाथ के गाये लोकगीत के अलावा सुनेंगे अरहर की अधिक उपज हेतु उत्पादन तकनीक विषय पर डॉक्टर पवन कुमार सिंह से की गई बातचीत। दीनानाथ के गाये भजन आप दीनानाथ के गाये लोकगीत आप दोपहर 1:45 पर और सुबह 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना, फिल्म संगीत और साथ ही अंकित दुबे की वार्ता, फीफा वर्ल्ड कप खेल से बढ़कर एक वैश्विक उत्सव। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी चर्चा गीत संगीत और साथ ही बहुत सारी जानकारियां। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 12 बजे। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विवेक सिंह द्वारा जानकारी। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर। विचार बिंदु का प्रसारण होगा सुबह 6:30 पर और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनेंगे सुबह 6:10 पर। खेती की बातें कार्यक्रम में किसान भाइयों को भिंडी की खेती के बारे में जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह सुबह 6:05 पर। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनिएगा दिन में 2:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत हम लेकर आएंगे सुबह 11 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम अंजुमन का प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 8:45 पर सुनिएगा मधुरिमा, सुबह 10 बजे झंकार, शाम 7:31 पर रसरंग, रात 8:15 पर रसमाधुरी। अलावा इसके फिल्मी संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर और शाम 7 बजे। ये था संक्षिप्त विवरण हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 241.54 पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

सुर फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। इसको लिखा है निदा फाजली ने और संगीत है MM करीम का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मैदानी जंग फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है साधना सरगम और कुमार सानू ने।

मैं दानी जंग। इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से सुनिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये तिनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिक वायु आपूर्तौ आपत्कालिकाः प्रतिबंधाः निरस्तीकृताः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मंचात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव सप्तदिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्त संचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिला वर्गस्य 20-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायामुक्तं यत् 26,000 प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिक वायुः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिक वायुः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यक वस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियम सफलतया प्रभावशील अभवत्। मंत्रिणा अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन अस्य अभियानस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकोधिक धनं च प्रदत्तम्। श्री चौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्र शासित प्रदेशानां च ग्रामीण विकास मंत्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षा अपि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांश धनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्त निधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानाम् अभ्यंतरे एव प्रदातुं शक्येत।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बाल यौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतुभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यंतरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक सामग्र्यः बालयौन शोषण सामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्ड

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: पंचो राम राम।
1: काहो बुझावन भैया, बड़ा दिन बाद भेटैला है हो।
0: हाँ गुंजा बहन, का कहल जाए। अब जनते न बालू के हमन के खेती किसानी के काम बाए तो समैया नाही मिल पावला हो, यही से ढेर दिन के बाद ढेर भेंट होते।
1: एकदम सही कहला है। बाकी देखत है ना तो के महीनन से अपने खेती किसानी के काम में तू जुटल हुआ, अब बड़ा लगन से करेला हो। अब एक बात और कहे चाहत है
0: का
1: कि
0: गुंजा बहन?
1: बड़ा नया नया तरीका का खेती कर रहल हुआ।
0: अच्छा गुंजा भाई, जानत हो ना, कौनो कायम के बढ़िया तरीके से करा, समय का ध्यान रखा, ओमन बीज जोन खेते में डालल जाला उ सही हो, जितना भी नई नई तकनीकी आवत बा ओकर जब तक अपनावल न जाई, चाहे हम हो चाहे तू होखा चाहे हमारे किसान भाई होखा, बढ़िया पैदा नहीं हुई।
1: एकदम
0: आया
1: एकदम।
0: जानत हो, यही खेती बाड़ी पर तो पूरा साल भर का हम निर्भर बाड़ी जाना।
1: भाई अपन किसान लोगन का यह तो काम हो कि खेती कर लेवल जाला, फिर साल भर का अपन खर्चा यही पे बसल रहेला। आ लेकिन ई जन तू नया तकनीक अपनैले हुआ ना भाई, ओके देख के बड़ा खुशी हो तो हम भी देखा पीछे न रहब, और ना आवत तो भाई तो से सीख ले कि कैसे भाई कौन तरीके का नया खेती है, कौन तरीके से भाई अपन भी लाभ बढ़े, अपन भी मुनाफा होए, तब ना देखा जब 2 पैसा हाथ में रहेला ना तो बड़ बड़ काम हो जाला।
0: बिल्कुल, अच्छा ये बात तो बड़ा बढ़िया कहलू हो गुंजा बहन कि जौन हमरे न आए हम तुमसे सीख ले, लेकिन एक चीज जानते हैं, हमू बुझत है, बुझत ही है कि जौन हमरे न आए तो हमू तुमसे सीख ले।
1: एकदम एकदम भाई, जब अपन भाई बहनी मिल के जब काम करिए ना तो भाई देखा
0: अच्छा एक चीज
1: अपन
0: और गुंजा बहन,
1: का
0: अगर हम एक दूसरे में सोच विचार के राय मशवरा ले के खेती बारी कैल जाई ना, तो देख ताक करके औरो हमारे किसान भाई होकर अनुकरण करिहें और खेती करिहें, तो भाई समाज में ऐसा व्यवस्था देवे के चाहिए, काम का जानकारी देवे के चाहिए, सबके लाभ मिले।
1: एकदम एकदम सही कहला है। अजियो हमके तो के ना आवत तो भाई विज्ञानी भैया लोग बतावेलन, देखा अपने भी कार्यक्रम में देखा कितना विज्ञानी भैया लोग आवेलन और नया नया तकनीक के बारे में बतावेलन, उसे भी अपने किसान भैया लोगन कितना सुनत हो या कितना और कर लाभ लेत हो।
0: देखा गुंजा बहन, जौन तकनीकी के जौन बात कैलू हर कि तू बड़ा नया नया तकनीक के प्रयोग करत बड़ा खेती बाड़ी में, तो देखा ये गुंजा बहन, जब नई तकनीकी के प्रयोग होई तो पैदा ज्यादा होई। अब देखा पहले का रहे, बैल रहना, हल से जुताई होत रहे, समय लगे, श्रम लगे, तो अब ट्रैक्टर के जमाना आएगा, तो नई तकनीकी आई ना, अब ट्रैक्टर
1: एकदम
0: के जमाना आएगा तो समय भी बचत बा और श्रम भी बचत बा और खेती बाड़ी भी बढ़िया से होत बा और खेत के जुताई भी बढ़िया हो जात बा।
1: एकदम एकदम सही कहला है भाई। आजकल का नया नया तकनीक का प्रयोग करके माटी का नमी हो, तापमान हो, पोषक तत्व हो, में का कमी हो का बेसी हो, एकर भी सटीक जानकारी हो जाला।
0: बिल्कुल, ये तो बड़ा नीमन बात बतियौली। अच्छा जानत हो हम एक काम कर लाई कि जब जौनो खेती जब हम करे जाइला तो उससे पहले हम माटी के जांच जरूर करवाइला।
1: अरे तो बड़ा जरूरी हो भाई।
0: अब जैसे ओमन डाई के मात्रा बा, चाहे यूरिया के मात्रा बा, चाहे पोटास के मात्रा बा, अब कितना बा जानकारी बटल ना बा। अब जैसे हमन जब बीमार हो जाएल जला तो जब डॉक्टर भैया के जाएल जला तो कहन कि भैया हो जांच कराए कि आवा कि कौन चीज के कमी बा, तो हिसाब से दवाई चलाई, तो ऐसे ही हमनो के खेती बाड़ी में एकर व्यवस्था बा कि माटी के जाँच करवा ला, ओमन यूरिया का कमी बा, पोटास का कमी बा, फास्फोरस का कमी बा, तो अगर कमी बा तो हिसाब से डाला।
1: एकदम एकदम। एक बात और हो, देखा हो पहले का रहल है कि जब हम लोगन छोटैया रहली जब तो जब खेती में अपने जब कीटनाशक माने छिड़काव करल जाए तब देखत रहला कैसे होत रहल, माने कि पैर से जन मशीन चलावल जात रहल ओसे होत रहे।
0: अब पैर से मशीन चलावत रहे गुंजा बहन, बड़ा लंबा पाइप खींच के लेके जाए के रहे, और उसे बड़ा मेहनत भी हमारे किसान भाई के।
1: फिर देखा कोई

0: जब बदलाव आयल तो फिर किसान भैया लोगन के जो पीठे पे लादे वाला मशीन आ गयल।
1: हाँ माने वो बैटरिया वाली
0: हाँ
1: मशीनिया
0: बैटरिया वाली
1: हाथवा से
0: मशीन।
1: लोगन दबाओ ना
0: हाँ
1: और
0: उस
1: कीटनाशक फसलिया पे छिड़कैलन।
0: हाँ आज के जमाने के बात करल जाए अगर तो देखा हो आज के जमाने में खेती किसानी में जन छिड़काव हो तो कीटनाशक का वो जानत हुआ वो ड्रोन से हो तो। हाँ
1: माने ऊपर ऊपर से।
0: ऊपर ऊपर से हो था।
1: हाँ अच्छा तो जान तो ऐसे बचत भी बा।
0: हाँ
1: अच्छा एक चीज और बा कि जो ऊपर से छिड़काव होत बा ना कोनो भी कीटनाशक चाहे दवाई का
0: हाँ
1: तो पूरे पौधा पर चौचौ सटीक तरीके से पहुंच जात बा
0: हाँ
1: जिससे किसान के फायदा भी होत बा। अच्छा एक साथे साथे बहुत प्रकार का तकनीकी भी आ गई। अब बीज का जब हम बात करते लिए जा तो बीज भी अब नए तकनीकी का और प्रमाणित बीज आएगी ना जौने बीज से उत्पादन ज्यादा होए।
0: हाँ आ देखा एकरे ऊपर जो ये जो बीज हो ना एपे देखा मौसम का बदलाव हो चाहे सूखा भैल चाहे कीट का मने की जो कीट लग जाला बीजन में चाहे
1: हाँ
0: पौधा में एक ऐसे भी बचत हो
1: अरे
0: तो।
1: बड़ा नुकसान ही ना होला गुंजा
0: हाँ
1: बहन,
0: हाँ
1: कीट लग
0: नुकसान तो
1: गए तो
0: होबे
1: बहुत
0: करेला।
1: नुकसान होला।
0: तो यही खातिर देखा भैया लोगन से कहल जाला ना कि अपने खेती किसानी में आधुनिक तरीके से अगर प्रयोग करल जाए खेती किसानी का नया नया मशीन का और जो विधि हो नया नया ओकर प्रयोग किया जाए तो हम लोगन का उत्पाद भी बढ़ी और देखा मुनाफा भी होई।
1: बिल्कुल गुंजा बहन देखा यही से कहल जाला बड़ बुजुर्ग हमन के कहले बाणे कि बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। माने बेटा के जौन भाग होला वो पिता के धर्म और संस्कार से चमकैला। वही प्रकार से जौन खेती बाड़ी जौन अपन होले ना गुंजा बहन वो खेती बाड़ी भी अपने कर्म और मेहनत से आगे बढ़ेले माने पैदा ज्यादा होला।
0: एकदम एकदम तापन भैया लोगन जोन सुनत हुई वो भी बारे में सोची हैं कि अगर अब तक ना इस्तेमाल भैल उनके खेती किसानी में नया तकनीक तो नया तकनीक के अपनाई हैं। ए बुझावन भैया
1: हाँ गुंजा
0: देखा हो
1: बहन
0: हम लोगन तो बत कही कर लिए जाता लेकिन एकरे संगे संगे अपने जोन हो आज पंचायती में एगो नीक के बत कही लेके आवल गए। देखा मौसम का जोन हो ना बदलाव उस सब पे सबके प्रभावित करेला।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कहलू है। चाहे मनई हो खाए चाहे पशु हो खाए चाहे फसल हो खाए मन का
0: हाँ
1: सबके प्रभाव डाले ले।
0: हाँ तो भाई अब मनई का बात अगर किया जाए तो अगर मौसम के अनुसार अपन खाइल पियल का व्यवस्था किया जाए ना तो ओसे अपन स्वास्थ्य सुधरेला जानते हुआ। तो यही पे आज बात कही लेके आवल गए कि ई मौसम में अपन आहार विहार कैसन रखल जाए डॉक्टर बी राम से बतियावत हुए सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया तो एके पहले सुन लेवल जाए।
1: बिल्कुल सुनवा दे गुंजा बहन।
2: डॉक्टर बी राम, आप प्रोफेसर हो और पूर्व विभागाध्यक्ष रहन हो द्रव्य गुण विज्ञान विभाग आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हम ये जानल चाहब कि जैसे अब बरसात का मौसम आ गल हो तो ये मौसम में जौन हो तरह तरह का रोग बीमारी देखे में आवला, कोनो छोट मोट बीमारी जैसे खांसी जुकाम बुखार हर जगह या संक्रमण भी, तो अपन आहार विहार कैसन ए समय रखे के चाहिए हम लोगन के जैसे कि ए तरह के संक्रमण से बचल रहे।
3: जी, सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि पता है कि ये बारिश का सीजन चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि साल 12 महीने का होता है और इसमें 6 ऋतु होती हैं। प्रत्येक ऋतु जो होती है 2 माह की होती है, जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत।
2: जी
3: तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो काल चल रहा है वर्षा का काल है, जुलाई और अगस्त का काल है
2: जी
3: समय है। तो ये स्वाभाविक रूप से शरीर का जो बल होता है वो कम होता है इस ऋतु में।
2: अच्छा
3: तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इन्फेक्शंस होने के, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है। और अग्नि का बल जो जठराग्नि होती है जो भोजन पचाने का कार्य करती है, उसका भी बल स्वाभाविक रूप से कम होता है।
2: जी
3: तो उससे क्या होता है कि पेट की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो जैसे अजीर्ण होना, भूख न लगना, अपच होना, बार बार लैट्रिन होना या कॉन्स्टिपेशन होना,
2: अच्छा
3: और साथ ही आम दोष भी उत्पन्न होता है। तो जिसके कारण से शरीर के जोड़ों में जकड़ाहट होना, दर्द होना, सूजन होना, तो इस तरीके की समस्याएं अक्सर देखी जाती हैं इस ऋतु में। तो इसको हम कैसे बचा जा सकता है, कुछ उपायों के माध्यम से
2: जी
3: इस ऋतु में हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, अपने शरीर का कैसे बल बढ़ा सकते हैं और अग्नि का बल बढ़ा सकते हैं, तो इसमें सर्वप्रथम हमको करना चाहिए कि संस्कारित जल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। संस्कारित जल का मतलब है कि हमको जल को पिपली मूल चब चित्रक सौंठ जीरा काला नमक आदि उबाल करके पानी

0: को रख लेना चाहिए,
1: सब डाल उसी के पानी को
0: उबाल लेना चाहिए।
1: अच्छा।
0: उबालने के बाद उसी पानी को मतलब उबाल लीजिए, ठंडा हो जाए तो उसी पानी को पीना चाहिए। उससे हमारी अग्नियां संदीप्त तो होती हैं, अग्नि का बल बढ़ता है, इस प्रकार से भोजन पचने में हमको आसानी होती
1: है। बताऊंगा डॉक्टर साहब एक बार फिर से,
0: सौंठ, मरीच, पीपर, पिपली मूल, जीरा और सेंधा नमक,
1: एकर कुछ अनुपात भी होला निश्चित?
0: हाँ बिल्कुल, अनुपात है कि यदि आप एक लीटर में आप सारी जड़ी बूटियों को आप कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए, दो चम्मच एक लीटर पानी में सफिशियंट होता है, उसको खूब उबाल लीजिए, उबालने के बाद में छान लीजिए और रख लीजिए, इसी पानी का सेवन करिए। दूसरा यह है कि हमको संस्कारित तक्र का, तक्र मट्ठा को बोलते हैं, दही का जो मट्ठा बनता है, तो मट्ठे का जो स्वभाव होता है वो अग्नि का वर्धन करने वाला, तो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। यदि हम उसको संस्कारित कर लें, जैसे जीरा है, दालचीनी है, सेंधा नमक है, करी पत्ता है, उससे यदि हम उसको छौंका लगा लें, मट्ठे का छौंका लगा लें,
1: अच्छा।
0: और उसको यदि हम पीते हैं तो इस ऋतु में अग्नियां प्रदीप्त होती हैं और भोजन आसानी से पच जाता है, और अग्नि के वजह से जो बीमारियां होती हैं पेट आदि की, वो ठीक हो जाती हैं। और इस ऋतु में मैं कहूंगा कि अचार का सेवन करना चाहिए, चाहे वो नींबू का हो, आम का हो, आंवले का हो या लाल मिर्चे का हो, खटाई के रूप में सेवन करना चाहिए, उससे भी अग्नियां प्रदीप्त होती हैं। और आप इसमें मैं चटनी का प्रयोग करना चाहिए, तीसी की चटनी, तीसी की चटनी, हाँ जी जी जी,
1: तीसी की चटनी,
0: तीसी डालिए, धनिया डालिए, और आप रसोन जिसको हम लोग लहसुन बोलते हैं, लहसुन डालिए और थोड़ा मिर्चा डाल लीजिए, और आवश्यकता अनुसार आप थोड़ा सा उसमें नमक डाल लीजिए, जीरा भी डाल लीजिए, इसकी चटनी बना के सेवन करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और खाने में हमको दाल, आप समय तो इस ऋतु के लिए जो उपयुक्त दाल होती है वो मूंग की दाल होती है, वो लघु होती है, सुपाच्य होती है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो ये इस
1: मूंग की दाल,
0: अरहर के,
1: हाँ
0: थोड़ा कम करना चाहिए और उसमें मिला लेना चाहिए, अरहर की दाल में यदि मूंग की दाल मिला लेते हैं तो मूंग की दाल की वजह से अरहर दाल भी लघु हो जाती है, और इसको भी संस्कारित करके लेना चाहिए, जैसे छौंका लगाना,
1: संस्कारित से आपका मतलब
0: छौंका लगाने से है, छौंका संस्कार से गुड़ों का आदान होता है, गुड़ों में वर्तन होता है,
1: तो छौंका जो लगाओ के बात करते हो डॉक्टर साहब, तो ये सरसों के तेल में लगावे कि देसी
0: ये घी, घी सबसे उत्तम है, घी थोड़ी मात्रा में यदि लिया जाए तो वो घी अग्नि को प्रदीप्त करता है, पाचन अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसे भोजन आसानी से पचता है। जैसे आप लोग सामान्य में देखते होंगे ना कि जब होम आदि हम लोग करते हैं तो घी थोड़ा थोड़ा डालते हैं, अग्नि प्रदीप्त होती है, तो ठीक उसी तरीके से शरीर में, जैसा ब्रह्मांड है वैसा शरीर में, ऐसा कंसेप्ट माना जाता है, तो अग्नि अच्छा होता है यदि घी का नहीं, तो तेल में भी जीरा, हींग और ये आप लहसुन का आप छौंका लगा करके दाल को आप ले सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा। और जो समसामयिक फल वगैरह हुए उमन का कर लेवे के चाहिए?
0: हाँ, समसामयिक फल में देखिए इस समय जैसे कुछ लोग जो डायबिटिक हैं तो उनको नहीं लेना चाहिए, आम ले सकते हैं और जामुन ले सकते हैं और गाजर का प्रयोग कर सकते हैं, खीरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब जो समसामयिक फल वो हमेशा फायदेमंद होता है, तो जो भी उपलब्ध हो, मैं ये कहूंगा कि इस सीजन में जो है साग पत्तेदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पत्तेदार चीजें पचने में थोड़ा गुरु होती हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उसको इन्फेक्शंस के भी ज्यादा चांसेज होते हैं, तो सब्जी में जो सब्जी लौकी है, तरुई है, नेनुआ है, इसकी सब्जी बना के, और परोरा है, परवर जिसको बोलते हैं,
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: इसकी सब्जी बना करके हमको खाना चाहिए। और चावल प्रयास करना चाहिए कि पुराना चावल, माड़ का सेवन नहीं करना चाहिए इस समय जो।
1: अच्छा।
0: पुराने चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। और रोटी में अच्छा है सिर्फ गेहूं नहीं, गेहूं के साथ उसमें चना और मक्का
1: अच्छा
0: मिला ले तो ज्यादा अच्छा।
1: तो मक्का के कहा जाला कि कुछ गर्म तासीर होला होकर, तो ऐसे समय में मिला सकल?
0: नहीं, मिला सकते हैं, मिला सकते हैं ना, थोड़ा उष्ण भोजन का, और भोजन हमेशा जो है उष्ण ही लेना चाहिए, बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा नमी होती है, आप देखेंगे कि शरीर में भी इस तरीके से अग्निमान होती है तो नमी होती है, तो नमी की वजह से जैसे बाहर आपने कोई चीज इस तरीके का रख दिया तो उसमें फंगल इन्फेक्शन लगने के चांसेज होते हैं, तो इसलिए भोजन जो है बासी नहीं करना चाहिए, ताजा गर्म भोजन ही बना के खाना चाहिए।
1: तो ये जो न मिलावट के बात कहना है गेहूं में आप चना

0: और मक्का का, तो इकोने अनुपात में मिलावा है कि
1: बराबर बराबर अनुपात में लेने बहुत
0: तीनों
1: अच्छा
0: बराबर
1: रहेगा, तीनों
0: ले
1: बराबर बराबर अनुपात में लेने बड़ा अच्छा रहेगा।
0: और का सावधानी रखें जैसे कि रोग व्याध से बचल रहा?
1: हाँ बिल्कुल, सावधानी ये रखना चाहिए कि हमको लघु भोजन हल्का भोजन करना चाहिए, और जो हमारी क्षमता है भोजन, मान लीजिए हम चार रोटी की हमारी क्षमता है तो हमको दो रोटी ढाई रोटी ही खाना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए। इसलिए अग्नि, क्योंकि अग्नि स्वभाव से ही मंद होती है तो पचने में दिक्कत होती है, जब भोजन का पाचन नहीं होगा, भोजन अपाच्य रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों को, उसे आम दोष की उत्पत्ति होगी, आम दोष की उत्पत्ति होगी तो बहुत सारी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां होंगी, जोड़ों संबंधी बीमारियां होंगी, इसलिए इसका बचना चाहिए ये सब चीजें।
0: अच्छा, ये जो मठा कहना संस्कारित करके पिए देखे तो ये कौन समय पर ले, खाए से पहले ले कि खाए के बाद ले?
1: खाने से पहले लेना चाहिए,
0: दोनों टाइम ले
1: सकते हैं, दोनों टाइम ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। इसका मेन ध्येय होता है, मेन उद्देश्य होता है, एक तो मठा है हमारे, एक तरीके से प्रोबायोटिक कहा जाता है, हमारी आंतों ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों की रक्षा करते हैं, तो मठा प्रोबायोटिक के रूप में भी होता है।
0: अच्छा।
1: और दूसरी चीज, हम संस्कारित कर लेते हैं तो उसमें आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि संदीपन का गुण होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन अग्नि जो होती है जिसे भोजन पचता है उसको वर्धन करने का काम करता है। तो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य यह है कि मठे से अग्नि का वर्धन हो, तो आप भोजन से पहले भी ले सकते हैं, भोजन के बाद भी ले सकते हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मौसम में सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए, एक भोजन आग्र सदापथ्यम लौण आद्रक भक्षणम अग्निसंदीपनम रुच्यम जेहुआ कंठ विशोधनम, भोजन से पहले आदि का छोटा छोटा टुकड़ा काट लेना चाहिए, उसमें एक दो बूंद नींबू निचोड़ लेना चाहिए और सेधा नमक मिला करके भोजन से आधा घंटा पहले उसको चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए, उससे भी अग्नि संदीप्त होती है, मुख का शोधन होता है, अग्नि
0: अच्छा।
1: का वर्धन होता है। तो इस ऋतु में इस चीज का खाने से आधा घंटा पहले सुबह शाम दोनों मीटिंग करना चाहिए मेरे दृष्टि से।
0: अच्छा, खाली ए ऋतु में, बाकी समय में अगर करत हुआ तो?
1: हाँ, जाड़े में कर सकते हैं, गर्मी में थोड़ा सा वो
0: परहेज
1: करना चाहिए, जाड़े में कर लेना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, ये आहार की बात तो बता देना, अब हम जानल चाहे कि बिहार कैसन हुए कि चाहे कि मतलब उनका रहन सहन कैसन हुए।
1: हाँ,
0: कि जैसे कि
1: बिल्कुल सही। इसमें से मैं सबसे पहले ये चीज ये कहना चाहूंगा कि एक नित्य योग क्रिया करना चाहिए, टहलना चाहिए, और साथ में दिन में तो बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, दिवा सहन दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। और जो आप जैसे दैनिक क्रिया आप करते हैं ना, एक उसको एक प्रॉपर वे में आपको एक मेंटेन करके रखना चाहिए। बारिश का समय है तो टहलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे जिस समय आप टहल सकते हो, सुबह टहल सकते हो, शाम को टहल सकते हो, एक घंटा टहलने का काम करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, कुछ लोग का जैसे आदत होला कि सवेरे उठ के टहराना जरूर, लेकिन ये समय असामयिक रूप से देखा में आवे जैसे उनके टाइम पर बरखा होने लगल, तो क्या करें, बाद में भी टहल सकते?
1: बिल्कुल टहल सकते हैं, किसी भी समय टहला जा सकता है, सुबह दोपहर शाम, जब समय अनुसार, शाम को भी टहल सकते हैं, दोपहर, जो जब जिसको जैसा समय मिल जाए उसी हिसाब से टहल सकते हैं, एक घंटा टहलना हमेशा फायदेमंद होगा।
0: डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहे कि जैसे हम उनके खेती किसानी का काम बा, आप लोग बताओ ना कि योगा करें व्यायाम करें, तो हम लोग जैसे फरसा चलावत है, कुदार चलावत है, तो तरह तरह के शारीरिक श्रम करत है, तो का ये हमारे व्यायाम का एक हिस्सा हो सकल है कि अलग से?
1: बिल्कुल व्यायाम का हिस्सा है, व्यायाम का हिस्सा है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। यदि हमारे किसान भाई इस तरीके का समय कोई फिजिकल काम कर रहे हैं
0: जी,
1: तो बिल्कुल वो जरूरत नहीं है इसकी। यदि फिजिकल जैसे रोपनी का सोहनी का काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे काम हो रहा है, तो यदि इस तरीके का काम है तो कोई ऐसा समय निकाल करके कुछ फिजिकल एक घंटा जैसे शरीर से पसीना आ जाए,
0: अच्छा,
1: ऐसा कर लेना चाहिए, जो भी वो करते हो तो हमेशा वो फायदेमंद रहता है।
0: डॉक्टर साहब, देखा अभी मौसम में जैसे कुछ रात बिरात कुछ ऐसा बात हो गई कि कोनो तरह का असुविधा शरीर में हो गई, तो कौन घरेलू उपाय हो जैसे कि तत्काल कुछ उपचार उनका हो?
1: जैसे इस समय क्या होता है कि लोग आम का सीजन है, आम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो आम ज्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पेट में दर्द वगैरह होने की चांसेज रहते हैं, ग्रिपिंग पेन होने का रहता है, जैसे मरोड़ के साथ पेट में दर्द होने का, तो ऐसे में जीरे का पाउडर वो बना के रख लें, उसमें हींग भून करके पाउडर बना के रख लें, सेधा नमक रख लें, वो उसका इस्तेमाल करें सुबह शाम, तो उसे ये सारी चीजें उनको नहीं होगी।
0: अच्छा
1: बाकी किस तरीके की समस्या आती है उसी

0: हिसाब से बहुत सारे
1: जैसे रात बिरात देखा में आवला कि उनके जो उल्टी होए लगल या जो पतली दस्त होए लगल, तो ऐसे में का उपचार करें घरेलू?
0: तो जैसे उल्टी हो रहा है तो वो उल्टी का एक तो भाई रीजन क्या है, किस लिए हो रहा है,
1: जी जी
0: जिस वजह से हो रहा है उसको हमको उसे बचना चाहिए। जैसे इसमें ज्यादा चांसेस जो होते हैं उल्टी होने के वो अपच के कारण से होते हैं, या तो हम भोजन जरूर से ज्यादा ले लेते हैं या जो चीजें इस ऋतु में नहीं खा लेने चाहिए उस ऋतु में ले लेते हैं। तो उल्टी देखिए ये चीजें हैं, मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हम टॉक्सिन है बाहर में बॉडी निकालना चाहती है।
1: जी
0: तो उल्टी होने के बाद में आप काला नमक है, अच्छा सेंधा नमक है, और जीरे का पाउडर है, हींग है, इलायची का पाउडर, यदि आपके घरों में इलायची है तो उसका
1: जी
0: पाउडर बना करके
1: छोटी
0: एक
1: इलायची।
0: चौथाई, छोटी इलायची एक चौथाई चम्मच आप शहद के साथ ले लें तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा उल्टी आदि में।
1: तो श्रोता भैया देखा, डॉक्टर भैया बताना है कि अपने घर में देखा अपने रसोईया में जौन उपलब्ध मसाला बा उमन से हींग भैल और इलायची जीरा
0: जीरा
1: एकर पाउडर बना
0: सेधा
1: लें
0: नमक,
1: सेंधा
0: हाँ
1: नमक का धैले रहे भाई। ये मौसम के दुष्प्रभाव अगर ऐसा हो जाला कबो रात बिरात, तो भाई उसे प्राथमिक उपचार तक कह सक ना, उसे आराम
0: बिल्कुल
1: मिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो भैया डॉक्टर बी राम आप हमारे स्टूडियो में ही ना, हमने श्रोता भैया लोगन के इतनी अच्छी जानकारी देना कि ये मौसम में अपन आहार विहार कैसन रखें जैसे कि संक्रमण से रोग बीमारी से बचल रहे, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गुंजा
1: सब
2: बहन देखा कितना नीक और बढ़िया बात कही भइल है।
3: हाँ भाई, मौसम भी जौन हो ना इहे कहा था हो कि ई मौसम में जैसन डॉक्टर साहब बतैलन है ना कि हल्का भोजन लेवे, माने कि ऐसन भोजन करें कि जो जल्दी पच जाए। अब भोजन पचाए बदे भी देखा कितना उपाय बतैलन है, जीरा का उपयोग करा,
2: हाँ
3: सेंधा
2: गुंजा
3: नमक
2: बहन,
3: खा, आदि हो के टुकड़ा टुकड़ा करके खाए के आधा घंटा एक घंटा पहले ऊपर नमक छिड़क के खाए
2: और
3: ला।
2: ओकरे साथे साथे हींग भी बाय। आ जान तो गुंजा बहन, ये जौन जौन डॉक्टर भैया बताऊ ना कुल हमान के किचनवा में बाय।
3: हाँ लेकिन भाई कबो कबो भुलाए जल जाला ना, एकर उपयोग ना किया जाला, अजब पेटे में दर्द होए लगेला तब पता चलेला कि सब उपाय तो अपने घरे में हो लेकिन हम लोगन कैली नहीं।
2: कैली नहीं और डॉक्टर की रमन चल
3: हाँ
2: गई।
3: डॉक्टर की यहाँ भगली, लेकिन ऐसने में देखा कितना नीक से बतैलन है कि कैसे कैसे उपाय किया जाए। आज जो भैया रले ने पूछत भैल, वो भी कितना नीक नीक सवाल पूछ लेने कि अगर रात बिरात कोनो ऐसन हो जाए कि केहू के पेट में ज्यादा दर्द होए लगे तो प्राथमिक उपचार कैसे करल जाए, तो उप्पे भी देखा कितना फरिया के बतैलन है डॉक्टर बी राम। उसे बतियावत रलन उनसे डॉक्टर अरे सुधीर कुमार श्रीवास्तव भैया, तो इन लोगन का बतकही तो बड़ा नीक करा ले, अपन किसान भैया इसे लाभ लेन। और देखा हो बतकही के साथ साथ बुझावन भैया,
2: हाँ गुंजा
3: अपने
2: बहन
3: किसान भैया लोगन के लिए कोनो गीत गवनई होई?
2: बिल्कुल हम समझत रही है और बुझतो रही है कि अमन के पंचायती में जब तक गीत गौनई नहीं होले ना तब तक मन बढ़िया लगत नहीं। तो आज के
3: तो भैया लोगन के आज का सुनावत हुआ?
2: आज के लोकगीत में छाया मिश्रा का इस सोहर गीत हमारे पंच भैया सुना और आपो सुना।
3: एकदम सुनवा दा।

0: गुंजा बहन,
1: हाँ
0: देखा अपने पंचायती में जब तक कजरी सोहर बिरहा नहीं होले ना, तब तक मन गदगद नहीं होला है। आ देखा कितना बढ़िया छाया मिश्रा के सोहर गीत गौनई भइल है, आ हमन भी सुन लीजिए, हमारे पंच भैया भी सुन लहन।
1: अब भैया एक बात और हो, देखा ई अपने घर आंगन में जब तक गीत गवनई ना हो, अपने पंचायती में गीत गवनई ना हो, तो बात तनी सी फीका फीका रहेला।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज का ई जो सोहर रहल है बड़ा नीक कर रहल
0: अच्छा
1: है
0: जहाँ तो बहनी
1: का।
0: एक चीज और रह कि वही में तीसरा गीत गौनाई भी होत रहल है, आ वही में तीसरा ढोल मजीरा भी बजत रहल है, तो और आनंद आई जाला।
1: एकदम एकदम आनंद तो दुगना हो जाला। एकरे संगे संगे देखा हो भैया, अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में भी बता देवल जाए अपने पंच
0: बिल्कुल
1: भैया
0: बता
1: के।
0: देबू।
1: तो काल सवेरे 6:05 पे अपन खेती के बात में हुई, भिंडी के खेती के बारे में जानकारी देहेन दिनेश कुमार सिंह। सांझी के का हुई तो नीतू बता दा।
0: ये गुंजाबेन सांझी के कृषि जगत जो कार्यक्रम हमन का होला, उमन बातचीत रही अरहर के अधिक उपज हेतु उत्पादन तकनीकी। देखा भाई सब्जी तो हम रोज खा ले जाए, लेकिन
1: हाँ
0: दाल के बिना कुछ मजा नहीं आवला,
1: ना ना ना।
0: तो ये बदे एकर जानकारी दी है डॉक्टर पवन कुमार सिंह।
1: एकरे संगे संगे जोन खाइल पियल के बात छेड़ला है ना कि दाल के बिना मजा ना आवेला कोनो खाना पीना में, तो ई मौसम जोन हो ना ई भी इहे कहेला कि अपने स्वास्थ्य के तनी देख के चलल जाए, मनी तनी नीमन खाइल जाए लेकिन सावधानी के साथ खाइल जाए।
0: माने हम बुझत बड़ी समझत बड़ी कि अपने तनी जिभिया पर तनी सा नियंत्रण रखे के बा, ई
1: हाँ
0: नहीं कि जो उन्हें देखलस तो वो खाए के मन कैलस तो भैया खरीद के खाए लेंगे।
1: ना ना ना। अब खरीद के खाए वाली बात जो कहला है ना,
0: हाँ
1: उनमें तो भाई आओ नुकसान हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुरान हो चाहे 2 दिन का बासी होए। ये समय जो मौसम कहा था ना, ताजा खाना खा, हल्का खाना खा।
0: बिल्कुल।
1: अब
0: का
1: देखा
0: एक चीज
1: हो।
0: और गुंजा बहन,
1: हाँ हाँ बतावा बतावा।
0: जोन घरे के गदेला बाणन
1: हाँ
0: लड़का बच्चा बाणन, वो
1: अरे
0: दुकाने पर जा करके अभी जाके खा लेत बाणे, अब दुकान वाला कब के बनौले बा ना बनौले बा, एकर भी ध्यान रखे के जबाए।
1: त ई कुल ध्यान अपन किसान भैया लोग रखिए ना, संगे संगे जोन किसान बहनी हैं भौजी हैं वो कुल जनी ध्यान रखियन। लेकिन एकरे संगे संगे हम लोग के ध्यान रखे के हो, चले का अब समय हो तो चले का भैया लोग से विदा लेवे का, तो चला
0: बिल्कुल
1: चल जाए, कहल जाए पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत, प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज में सुनिए आहुति फिल्म का ये गीत, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: ऊंची ना होती।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल आवाज में, बोल हसरत जयपुरी के संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम आंखों आंखों में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं आरती फिल्म से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है रोशन ने।

आरती फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम

टेढ़ा थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र निवासी दिनेश कुमार ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी सुनीता दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 34 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला और चेहरा चौड़ा है। इनके बाएं पैर के पंजे पर कटे का निशान है। ये जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर हैं। आखिरी बार इन्हें पीले रंग की साड़ी में देखा गया था। सोनभद्र से ही प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम ईनम थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र निवासी सुनील कुमार ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी पूजा दिनांक 1 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 25 वर्ष, कद 5 फुट, रंगोरा, एकहरा बदन और चेहरा गोल है। आखिरी बार इन्हें हरे रंग की साड़ी में देखा गया था। जौनपुर से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ग्राम बेर्रा थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर निवासी अमृतलाल कनौजिया ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री सोनी कनौजिया दिनांक 25 अक्टूबर 2025 से लापता हैं। इनकी उम्र है 19 वर्ष, कद 4 फुट 9 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है और एक गहरा बदन है। आखिरी बार इन्हें नीले रंग की टी शर्ट और लेगिंग्स में देखा गया था। इन सभी के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो कृपया निकटतम थाने पर शीघ्र सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह की शाम के 7:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो
2: कहाँ
3: एडमिशन कराने,
5: खाता हुआ एक्टिव।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: प्लेटो का कथन है बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव

0: हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को बिना भेदभाव के पहुंचाया गया है और डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है कि यहाँ जो कार्यकर्ता बूथ पर काम करता है, जो शक्ति केंद्र में काम करता है, वो पार्टी के शीर्ष स्थान पर पहुंच सकता है। श्री नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किस भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर जोर दिया। सहयोगी दलों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए अपना दल एसके उपाध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर खास तौर पर बात की गई।
3: विशेष रूप से जो समन्वय का कार्य कैसे, उस पर चर्चा हुई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि एनडीए के इस जीत में अपना दल ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
0: केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण BBGRAMJI अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता जताई है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने कहा कि जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो, ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी गांवों को समृद्ध और विकसित बनाना है।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख

0: लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच तेज हो गई है। मामले के विवेचक ने आज जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर दान घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले में सीओ अयोध्या और विवेचक आशुतोष तिवारी जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने 5 आरोपियों लोकेश मिश्रा, रामशंकर यादव और टिन्नू, मनीष यादव, करुणेश पांडे और अनुकल्प मिश्रा से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कल होने वाली अहम बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में दान घोटाला प्रकरण के साथ चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र पर विचार किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर के व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन कर आगे की रणनीति तय करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से कल से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफको, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आम वर्तमान में 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंह ने समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया और महोत्सव में 1,501 प्रतिभागियों ने 3,032 आम के नमूने प्रदर्शित किए। विभिन्न श्रेणियों में 147 पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। प्रदेश में मॉनसून आने के बाद से बारिश का सिलसिला जारी है। आज राजधानी लखनऊ समेत गाजियाबाद, हापुड़, जालौन, प्रयागराज, बलिया और जौनपुर सहित 10 शहरों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आगामी 8 से 10 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर वर्ग को दिया योजनाओं का लाभ। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि की जारी। अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में जिला कारागार में 5 आरोपियों से फिर हुई पूछताछ। दल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे

पर होगा फैसला। और प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई के बीच राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: डाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हद गोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोली

गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जांबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला।

0: हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
0: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दबा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
0: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
0: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
0: साहब जी आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दबा हो जाओ यहाँ से, जाओ गेट आउट।
0: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
0: साहब?
1: क्या है
0: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
0: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
0: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
0: ओहो, यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
0: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
0: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब।
2: बहादुर! अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
1: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है?
1: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
3: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
3: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शुमेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
1: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
3: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
1: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
3: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रखो चाय।
1: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
3: क्या?
1: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
3: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस। ओके,
4: खूब तमाशा है। देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
1: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
3: हाँ।
1: बहादुर
5: आया साहब।
0: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
3: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
0: हम साहब वो आज।
3: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
0: सब कुछ बता दिया?
3: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
0: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही,

0: साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ते हैं साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब। आइए आइए तशरीफ लाइए।
1: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
0: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं, यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
1: अरे नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
1: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पे बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मेरी शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
2: सलाम साहब।
0: सलाम।
2: सलाम मैम साहब।
3: सलाम।
2: बहादुर, ये तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
0: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
1: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
2: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
1: होटल में साहब?
2: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
0: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
4: मैं अभी लाता हूँ साहब।
2: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
1: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
0: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
2: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माए बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। अब रीटा।
2: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गर्म?
1: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
2: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का नहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
1: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
2: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
2: ना, ना, ना,
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
1: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
1: क्या मतलब साहब?
0: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
1: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकश नहीं, घर का सब काम का जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
1: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
1: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
1: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है, अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
1: चल तू बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
1: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूकते हैं साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
1: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब, आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
1: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
1: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
1: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
0: क्या बात है?

0: साहब ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
1: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
2: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
3: बात ये मेम साहब के मेरा
4: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम ही बोलो, तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
2: बिल्कुल ठीक।
1: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? किस्सा मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
2: ये भी ठीक।
1: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
2: कभी नहीं हो सकता।
1: क्या नहीं हो सकता?
2: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
1: ये कोई जबरदस्ती है?
3: चलो लक्ष्मी, सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
1: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
3: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
2: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
3: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
2: सलाम
3: साहब।
2: सलाम
3: मैम साहब।
1: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
0: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
2: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
1: Good idea. मैं बस गया और आया।
0: भीम साहब जी, साहब किधर गया?
2: अंदर कमरे में तैयार होने।
0: अच्छा
2: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
0: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपनी कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
2: अरे ठीक नहीं था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
0: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ अपने मुल्क से बुलाया इनको।
2: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
0: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था। हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
2: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
0: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टमैलो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका

0: डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी।

0: अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गजरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्य

0: कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलू का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि

भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के

0: वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: overseas Kashmiri cell a protest gathering in London today in support of the demonstrators. On the other hand, in Pakistan, protests have also intensified at Karachi's Abbasi Shahid Hospital, where junior doctors are demanding payment of pending stipends, better security and improved hospital facilities. The protesting doctors warned that they would suspend outpatient services if the demands are not addressed. In the ICC Women's T20 World Cup final, England were 91 for 4 in 13.5 overs against Australia at Lord's Cricket Ground in London when reports last came in. Earlier, Australia won the toss and opted to bowl first. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian time tonight. England will face Mexico in Mexico City in the other pre-quarterfinal at 5:30 a.m. tomorrow. In the Wimbledon tennis, American Jessica Pegula defeated compatriot Iva Jovic 4-6, 6-3, 6-1 in the women's singles to reach the quarterfinals in London today. The other match between Czech Republic's Karolina Muchova and compatriot Barbora Krejcikova is underway. In the other round of 16 matches, top seed Arina Sabalenka will face Japan's Naomi Osaka and Switzerland's Belinda Bencic and meet Coco Gauff of the United States later tonight. In the men's singles, the round of 16 match between Serbia's Novak Djokovic and Roman Sofalian of Russia is underway. Later tonight, top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave Revered Shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims. On the occasion, the Chief Minister said the Kailash Mansarovar Yatra is not just a religious journey, but a symbol of spiritual awareness, cultural unity and national harmony. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Southwest monsoon intensified across India. Red alert issued for Mumbai, warning of heavy rain in seven states. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and MP Chief Minister Dr. Mohan Yadav lay a foundation stone of 2,500 crore rupee defense manufacturing plant in Shivpuri. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar begins his six-day visit to West Asia, meets Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha. OPEC Plus agrees to increase oil production by 188,000 barrels per day from next month to support market stability. In T20 Cricket World Cup summit clash underway between host England and Australia at the Lords. And in FIFA World Cup, Brazil to take on Norway in the round of 16 at New Jersey tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। पूरे भारत में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत सी रियासतों में मूसलाधार बारिश से खबरदार किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की तैयारी करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखा है, जिसकी लागत 2500 करोड़ रुपए है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना 6 रोजा दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दोहा में कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने मार्केट इस्तेहकाम में मदद देने के लिए अगले महीने से तेल की पैदावार में यौमिया 188,000 बैरल्स इजाफे से इत्तेफाक किया है। फीफा आलमी कप में आज रात न्यू जर्सी में क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा और T20 क्रिकेट आलमी कप में लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून में तेजी आ गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर बारिश, गरज चमक के साथ छींटे, बिजली चमकने और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 दिन में मानसून के

गुजरात के कुछ मजीद इलाकों, हरियाणा, पंजाब के बकिया इलाकों और राजस्थान के कुछ मजीद इलाकों में आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड में दिन के दौरान शदीद से ज्यादा शदीद बारिश की पेशगोई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 2 से 3 दिन के दौरान अलग अलग जगहों पर बारिश का इम्कान है। महाराष्ट्र में आज मानसून की शदीद बारिश से बहुत से इलाके मुतासिर हुए हैं। बारिश की वजह से कुछ हादसात पेश आए, जहां बचाव कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रायगढ़ जिले में पुलिस ने 10 से 12 सयाहों को खपोली के नजदीक अदूषी आबशार से बचाया, क्योंकि यहां पानी की सतह में अचानक इजाफा हो गया था। हुक्काम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मानसून के दौरान दरियाओं, आबशारों और पानी के दीगर जखायर से दूर रहें। मुंबई में आज दोपहर मूसलाधार बारिश के दौरान कुर्ला में एक दुकान पर एक दरख्त गिर जाने से एक 63 साल शख्स हलाक हो गया। बीएमसी ने बताया कि शहर में दरख्त गिरने के 64 और दीवार और जुजवी तौर पर मकान गिरने के 8 हादसात की खबर मिली है। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की वजह से परवाजों के आने जाने में भी काफी रुकावट आई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नगिरी समेत कोंकण जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में डांग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गीर सोमनाथ और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली में कल इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई है। आईएमडी अहमदाबाद में साइंसदान प्रदीप शर्मा ने हमारे नामानिगार को बताया कि इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और माही गीरों को मशवरा दिया गया है कि वो अगले 5 दिन समंदर में न जाएं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के बहुत से इलाकों में आज दोपहर औसत दर्जे की बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम में यकसर तब्दीली आई और लोगों को नमी वाले मौसम से कुछ राहत मिली। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस माह की 20 तारीख से शुरू होगा, जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास को 20 जुलाई से शुरू करने के लिए हुकूमत की तजवीज को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने आज शिवपुरी में दिफाई साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस प्लांट की तामीर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ अडानी ग्रुप करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी की तारीख में आज एक नया बाब रकम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ये जिला सनती तरक्की, दिफाई साजो सामान की तैयारी और एक खुद कफील भारत के तस्वुर से वाबस्ता हो जाएगा। जनाब सिंधिया ने यह भी कहा कि शिवपुरी के मेहनती नौजवानों के जरिए बनाए गए हथियार और मिसाइल भारतीय फौज को मुस्तहकम करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मगरबी एशिया का अपना दौरा शुरू कर दिया है। वो इस दौरे में कतर, बहरेन, कुवैत और ओमान जाएंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जस्सीम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया, जिसमें बिलखुसूस तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी और अवाम का अवाम से राबता शामिल है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजीर खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने कलीदी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की गरज से नए मौकों की जस्तजू की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय बिरादरी के तहफ्फुज और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मगरबी एशिया तनाजे और उसके असरात के ताल्लुक से अपने जायजों से वाकिफ कराने के लिए उनकी तारीफ की। डॉक्टर जयशंकर इस माह की 13 तारीख को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, जहां वो अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की 2028-29 की मुद्दत के लिए भारत की सरकारी मुहिम का आगाज करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इसके बाद तीसरी भारत यूरोपीय यूनियन तिजारत और टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के अपने हमसबों से बातचीत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक प्लस ने तेल की पैदावार में इस साल अगस्त से 188,000 बैरल रोजाना का इजाफा करने से इत्तेफाक किया है। ये फैसला तेल मार्केट की आलमी सूरतेहाल का जायजा लेने के लिए वर्चुअल वसीले से मुनाकदा एक मीटिंग के बाद किया गया।
आज इस मीटिंग के बाद जारी किए गए बयान में 7 ओपेक प्लस रुकन मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं, कहा है कि इस फैसले का मकसद मार्केट के इस्तेहकाम में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना दो रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के कुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, तुमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: right. All right.
1: Our dear home,

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार

संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है,
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1900

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

रंग दे। फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सोल्यूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।
3: नमस्कार, बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं, यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

उफ, ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया की

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज। इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन शकील बदायूनी रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसर जयपुरी शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
1: इसका सोल्यूशन
0: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैक हेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
1: नेचुरल है।
0: नेचुरल ब्यूटी वॉश।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: अब फिर T20 का वर्ल्ड कप चैंपियन होने जा रहा है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने